एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 जून सन 2026। सुबह के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 6 बजे हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।

सलाउद्दीन अहमद खां से ये हमद अभी आपने सुनी। लीजिए अब सुनिए ये गुरुवाणी, स्वर भाई गुरमे सिंह रागी का।

0: सुखदेव दास की ये रचना अभी आपने सुनी पीयूष और कैलाश अनुजा के स्वर में। इसी कृष्ण भक्ति के साथ आस्था के स्वर कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: आस्था के स्वर।

0: FM बैंड 101.2 MHz पर ये आकाशवाणी खंडवा है। सुबह के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: हम जिस जमीन पर खड़े हैं वह धरती है। धरती हमारा बोझ सहती है, फिर भी हमें नहीं लगता कि वह हमारे बोझ से व्याकुल हो रही है। उसकी सहनशीलता हमारे लिए विचारणीय प्रश्न है। जब हम यह जानते हैं कि थोड़ा सा अधिक भार ढो लेते हैं तो परेशान हो जाते हैं, परंतु धरती क्यों नहीं हमारे भार से दबती? जबकि धरती की छाती पर पेड़ पौधे और फसलें लहलाती हैं, बड़े बड़े पर्वत और नदियां बल खाती लहराती हैं, फिर भी धरती सबका पोषण करती है। एक मनुष्य ही है कि वह धरती की अनमोल धरोहर को उजाड़ता चलता है। मनुष्य का स्वार्थ नदियों की स्वच्छंदता पर अपने अरमानों का बांध बांधकर उसके नीर का दोहन करता है। नदियां सूखती है तो लगता है मानो हमारी सभ्यता की स्रोत वाहिनी सूख रही है। नदियों का जीवन वर्षा जल पर निर्भर होता है और हमारा जीवन नदियों के कलकल स्वर पर। पृथ्वी का यह सारा पर्यावरण हमारी समझदारी का द्योतक है। पंच तत्वों का यह जगत और पांच तत्वों का मानव शरीर एक दूसरे के पूरक हैं। पांच तत्वों में एक भी तत्व शरीर में अथवा पर्यावरण में कम हो जाता है तो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पर्यावरण में विद्यमान

0: मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश जीवन के पंच घटक हैं। मिट्टी है तो वृक्ष है, वृक्ष है तो वर्षा है, और वर्षा है तो सर्वत्र खुशहाली है। हमें प्यास लगे और जल न प्राप्त हो तो हम जल को दोष लगा देते हैं, किंतु जब हम वृक्षों को काटते हैं तो वह मूक वृक्ष किससे कहने जाएगा। वह भूमि पर खड़ा और हरियाला इसीलिए है क्योंकि उसे वर्षा का अभिनंदन करना है। उसे मानव की पीड़ा का ज्ञान है। मानव बुद्धिमान होकर भी प्रकृति के उपहारों को ठुकराता है। ईश्वर ने मनुष्य को मधुर वाणी दी है, किंतु वह वाणी पर संयम न रख शोर को आमंत्रण देता है। मधुर संगीत सुनने हेतु उसे कान प्रदान किए हैं, किंतु वह ध्वनि विस्तारकों का उपयोग कर ध्वनि प्रदूषण का शिकार हो जाता है। वैज्ञानिक आविष्कार सुविधा व जीवन सुधार के लिए हैं, परंतु मनुष्य इनके उपयोग से अनेक संकटों में फंसता जाता है। विकास व प्रगति बेहतर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। विकास रुक जाए, प्रगति गतिहीन हो जाए तो जीवन का आनंद भी समाप्त हो जाता है। औद्योगिक विकास मनुष्य का अंतिम सुख नहीं है, किंतु विकास के धुएं से प्रदूषित होता जीवन उसकी अंतिम श्वास का परिणाम हो सकती है। श्रम से सिंचित खेत धन्य धान से हमारी संपन्नता में वृद्धि करते हैं, तो हमारी छोटी सी स्वार्थ की कुल्हाड़ी वनों को वृक्षों के संसार से मुक्त कर देती है। वनों का वृक्ष विहीन होना धरती को मरुस्थल में बदल देना है। वृक्षों को देख बादल मचलते हैं तो बादलों में छुपा जल झमझम कर धरती की प्यास को बुझाता है। सूर्य की किरणें वृक्षों को स्पर्श कर उनकी श्वास श्वास में उमंग भरती है तो वृक्ष हमें प्राण वायु का उपहार देते हैं। आज हमारे बीच प्राण वायु की कमी का एहसास हो रहा है। शहरों में आबादी का बढ़ना वायु तथा ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता जा रहा है। मनुष्य ने अपना स्तर तो सुधारा है, किंतु अपने आसपास के पर्यावरण को वह अनदेखा करता जा रहा है। पर्यावरण को अनदेखा करने का परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। स्वच्छता और प्राकृतिक सौंदर्य जीवन को सुखी बनाता है। हमारे स्वार्थों ने प्रकृति को अनेक चुनौतियों से चोट पहुंचाई है, किंतु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति से प्रतिद्वंदिता करना अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारना होगा। अच्छा हो हम सावधान हो जाएं, प्रकृति को संवारने का उपक्रम करें। आज हम फलदार वृक्ष रोपेंगे तो आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग करेगी। आज हम वृक्ष काटेंगे और रोपेंगे नहीं तो आने वाले समाज के लिए हम क्या दे जाएंगे। वृक्ष हत्या, पशु हत्या या जीव हत्या जीवन का सबसे बड़ा पाप है। पाप करने से इहलोक व परलोक दोनों ही बिगड़ते हैं। जब हम इहलोक से ही बिगड़ जा रहे हैं तो जब ईश्वर के दरबार में हम पहुंचेंगे तब हमें सुधार का मार्ग कौन बताएगा। हमें ही बताना है कि पर्यावरण की सुरक्षा जीवन की सुरक्षा से कहीं अधिक आवश्यक है। पर्यावरण स्वच्छ होगा तो मानव शुद्ध वायु, स्वच्छ जल और शुद्ध भोजन प्राप्त कर सकेगा। अशुद्धता जीवन की सुखमय अवस्था नहीं है। अशुद्ध विचार भी मन को विकृत करता है। प्रातःकाल हम संकल्प करके शुद्ध सात्विक भाव से काम पर जाते हैं तो सारा दिन हमारा अच्छा व्यतीत होता है। दुखी मन से गलत विचार धारण कर घर से निकलते हैं तो काम में मन नहीं लगता और इच्छा के विपरीत ही काम होते हैं। अतः अच्छा क्या है और बुरा क्या, इसका ध्यान रखना काम करने के पहले आवश्यक है। हम यह सोचें कि पड़ोसी का आंगन फूलों से भर जाए और हमारा आंगन हरियाली से, तो यह तभी संभव होगा जब हम आंगन में पौधे लगाएंगे। पड़ोसी बाग लगाता है तो उसे उजाड़ने का कार्य हमारा नहीं है, बल्कि उस बाग की सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। किंतु अब उल्टा हो रहा है। लोग अपने घर का कूड़ा दूसरों के आंगन में डालने के अभ्यस्त हो चले हैं, किंतु ऐसे लोग अपने लिए ही गड्ढा खोदते हैं, क्योंकि ऐसा करके वे सुखी नहीं रहते। आवश्यक है सभी लोग सभी का ध्यान रखें, पर्यावरण को स्वच्छ व सुंदर बनाने हेतु स्वयं स्वच्छ, स्वस्थ व सुंदर बने रहें।
1: पर्यावरण संरक्षण, ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरितमानस गान।

जगत विजयी वीर हिला तक नहीं सके, उसे खंडित करने के लिए गुरु विश्वामित्र का आदेश पाकर श्री राम उठ खड़े हुए। इधर लक्ष्मण ने अग्रज को धनुष की ओर ताकते देखकर अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाकर दिक्पालों, कच्छप तथा शेषनाग और वराह को सावधान होकर पृथ्वी को दबाए रहने का आदेश दिया ताकि वो हिलने ना पाए। श्रीराम धनुष के निकट पहुंचे। सबका संदेह और अज्ञान, अभिमानी तथा दुष्ट राजाओं का अभिमान, परशुराम के गर्व की क्रूरता, देवताओं की कातरता, सीता जी की सोच, राजा जनक का संशय, सभी मानो शिव जी के धनुष रूपी जलयान पर आकर सवार हो गए। लगा वो राम की भुजाओं के बल का सहारा पाकर भव सागर पार कर जाना चाहते हैं। श्री राम ने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और बड़ी सहजता से धनुष को उठा लिया। उसे उठाते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा कि एक भयंकर नाद के साथ वो दो खंडों में टूटकर पृथ्वी पर आ गिरा।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, गायक कलाकार भूपिंदर सिंह। हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। सुबह के 6:46 और 38 सेकंड हुए हैं। अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा, वाचक स्वर स्मिता बरोले।
1: भाई बहनों हरी राम राम। आज की कृषि चर्चा को विषय छे मृदा क्षरण की रोकथाम हेतु सस्य क्रियान, वाचक स्वर स्मिता बरोले। लगातार बढ़ती जनसंख्या

0: शहरीकरण, औद्योगिकीकरण न जलवायु परिवर्तन का कारण वैश्विक स्तर पर उपजाऊ भूमि लगातार खराब होती जा रही। नई स्थिति में आवश्यक हुई जायज की तत्काल प्रभाव से भूमि एवं पर्यावरण संरक्षित कृषि पद्धति न अपनायो जाए न कई सस्य क्रिया न छे जेका से मिट्टी को क्षरण रोकियो जा सकत, जेमा जैविक खेती, समन्वित खेती, जल प्रबंधन, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, संरक्षण कृषि द्वारा ई संभव हुई सकज। एका साथज कृषि वानिकी द्वारा भी मिट्टी को क्षरण रोकना मा मिट्टी ख स्वस्थ बनाए रखनो को एक कारागार उपाय छे। वृक्ष भूमि की ऊपरी परत ख धूप बारिश का प्रभाव से बचावज न पेड़ की जड़ न भूमि की गहराई तक मिट्टी ख बांधज अरु क्षरण ख रोकज। वृक्ष भूमि न मा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी बढ़ावज। जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन ये विधि द्वारा भी मिट्टी को क्षरण रोकियो जाई सकज। वर्षा जल का संरक्षित करनु, अपवाह का रोकनु, वर्षा जल को सावधानी पूर्वक निपटारो करनु ये सभी जल संरक्षण का उपाय छे। न जल प्रबंधन का लेना मेड़ बनाउनु, ग्रेडेड बंड, कंटूर बेड, बेंच टेरेस, हाफ मून टेरेस, घास वाला जल मार्ग अरु तालाब बनाउनु छे। एका अलावा अंतः फसल भी एक विधि छे। अधिक दूरी वाली फसल का बीच में अंतः फसल ख उगई न मिट्टी क्षरण ख कम कियो जाई सकज। एका साथ साथ पर्यावरण का भी संरक्षित करियो जाई सकज। अंत फसल जल धारण क्षमता बढ़ाना का साथ सूक्ष्म जीव की संख्या ख भी बढ़ाव। गहरी जोड़ वाली दलहनी फसल नख अंत फसल का रूप में अधिक उपयोगी मान्यो जाए। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन अरु जैविक खेती रासायनिक कार्बनिक एवं जैविक उर्वरक नख समन्वित करीना एक तरह से रासायनिक खाद को प्रयोग कम करियो जा सकज। वहां दूसरी ओर मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ख बढ़ायो जा सकज। एका अलावा जैविक खेती मृदा स्वास्थ्य ख बनाए रखना का लेना ई महत्वपूर्ण उपाय छे। सातज फसल चक्र कार्बनिक न जैविक खाद फसल विविधीकरण ख अपनायो जा सकज। समन्वित कृषि प्रणाली ई विधि में फसल चक्र फसल विविधीकरण कम जुताई फसल अवशेष प्रबंधन पशुपालन पर कार्य करियो जाए। एका परिणाम स्वरूप मिट्टी वनस्पति न पशु न का बीच में एक सामंजस्य स्थापित करियो जाए। विविधीकरण भूमि प्रबंधन का लेना विशेष रूप से महत्वपूर्ण विकल्प छे। एकज फसल ख बार बार उगावण से मिट्टी को स्वास्थ्य खराब हुई जाए। एक स्थान पर फसल विविधीकरण अंत फसल चक्र न दलहनी फसल का समावेश मिट्टी का क्षरण ख रोकियो जा सकज। एकज स्थान पर धान गेहूं लगावण से मिट्टी की गुणवत्ता खराब हुई जाए। एक स्थान पर मक्का ज्वार सरसों या दलहनी फसल लगाणु चाहिए। संरक्षण कृषि का तीन स्तंभ छे जुताई फसल अवशेष प्रबंधन न फसल विविधीकरण पर निर्भर रहे। ई विधिना द्वारा मिट्टी को क्षरण आसानी से रोकियो जा सकज। एक अलावा किसान भाई खेत की मिट्टी का समतल करी सकज जेका से जो पानी छे वो आसानी से बही जाएगा न सातज जो मजबूत मेड़बंदी छे वो भी किसान भाई करी सकज। बरसात का दिन में खेत की जो मेड़बंदी छे वो मजबूती सी करनू चाहिए ताकि खेत सी पानी बाहर न बही सका न मिट्टी को कटाव रुकी सका। एक अलावा रेतीली भूमि का जीवांश न खाद में मिलाणु चाहिए। रेतीली भूमि हल्की होए न हल्की मिट्टी का साथ जल्दी भई जाए अतः रेतीली भूमि में जीवांश पदार्थ मिलाणु चाहिए ताकि मिट्टी का कण आपस में बंधे रहे न मिट्टी पानी का साथ नहीं बही सका। एक साथज वनस्पति उगाणु किसान भाई वह भूमि जेक पर फसल या पौधा नहीं उगाया जाता ही वर्षा का पानी का साथ वो बही जाए तो ऐसी जगह पर पेड़ पौधा लगाई देना चाहे तो ये विधि न अपनाई न किसान भाई मिट्टी को क्षरण रोकी सके। तो भाई बहनों ये तो थी आज की कृषि चर्चा। राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, वाचक स्वर स्मिता बरोले का। सुबह के 6:51 हुए हैं, लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद सुबह 7 बजे विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनिए विश्व पर्यावरण दिवस पर वार्ता। वार्ताकार हैं श्रीमती तनुजा जोशी। 7:20 पर आज होगी एक कहानी। आज की कहानी है ठंडी छांव। वाचक स्वर और कहानीकार नफीसा लोखंडवाला।

0: कहानी।
1: 5 जून है बेहद खास, क्योंकि है विश्व पर्यावरण दिवस और माह का पहला शुक्रवार हम पेश करेंगे एक कहानी।
2: सच कहूं, अगर वो पौधे ना होते तो शायद मैं भी ना बचती। मैं अपने पौधों से बातें कर अपना सारा सुख दुख बांट लिया करती। हाँ सचमुच, मुझे हमेशा लगता था पौधे भी बोलते हैं।
1: जरूर सुनिएगा 7:20 पर 5 जून शुक्रवार
0: एक कहानी।
3: एक कहानी के बाद प्रसारित किया जाएगा सुनहरे पल। 8:15 और 5:30 पर आप सुन सकते हैं निमाड़ी लोक संगीत।

आप अपने फरमाइशी फिल्मी गीत सुनेंगे कार्यक्रम आपके मीत ये गीत में सुबह 8:30 पर। 9 बजे से राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। 10 बजे आकाशवाणी भोपाल से हम अनुप्रसारित करेंगे जिले की चिट्ठी। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का उमंग कार्यक्रम होगा सुबह 10:05 पर। 10:35 पर नारी जगत कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा विश्व पर्यावरण दिवस और जलवायु, और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज है मिसाल में अर्पणा जैन से मीनू जैन की बातचीत।

शाम 6 बजे युववाणी का आज का क्रम होगा गीतों भरी कहानी। फिल्म संगीत का लुत्फ लीजिएगा शाम 6:30 बजे से। 7:21 पर होगा कार्यक्रम खेती गृहस्थी। रात 8 बजे हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के संबंध में विभिन्न विषयों पर NSD आकाशवाणी द्वारा एक विशेष श्रृंखला का प्रसारण, महिला सशक्तिकरण। आकाशवाणी दिल्ली से 9:15 पर अनुप्रसारित करेंगे स्पॉटलाइट और 9:30 से विविध भारती सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

0: तो ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।
1: एक कहानी।
2: 5 जून है बेहद खास, क्योंकि है विश्व पर्यावरण दिवस और माह का पहला शुक्रवार हम पेश करेंगे एक कहानी।
3: सच कहूं, अगर वो पौधे ना होते तो शायद मैं भी ना बचती। मैं अपने पौधों से बातें कर अपना सारा सुख दुख बांट लिया करती। हाँ सचमुच, मुझे हमेशा लगता था पौधे भी बोलते हैं।
2: जरूर सुनिएगा 7:20 पर 5 जून शुक्रवार
1: एक कहानी।
4: आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर।

0: ताज़ा खबर में लीजिए सुनिए आज प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियां। नगरीय निकाय और पंचायतों की मतदाता सूची पुनरीक्षण का संशोधित कार्यक्रम जारी। अब प्रारूप मतदाता सूची में दावे आपत्ति 15 जून तक किए जा सकते हैं। आगामी 12 से 14 जून तक जनपद और नगरीय निकाय स्तर पर जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को चिन्हित कर उनका पंजीयन कराया जाएगा। विश्व क्लब फुट दिवस के अवसर पर खंडवा के मेडिकल कॉलेज सह चिकित्सालय में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्लब फुट से ग्रसित बच्चों का उपचार किया गया। जिला चिकित्सालय खंडवा में प्रत्येक बुधवार को क्लब फुट क्लिनिक संचालित किया जा रहा है। शासकीय ITI खंडवा में कल यानी गुरुवार को युवा संगम रोजगार और स्वरोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 265 आवेदकों का चयन कर उन्हें ऑफर लेटर प्रदान किए गए। अब खबर खेल जगत से। भारत ने सेफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबला शनिवार को बांग्लादेश के साथ होगा। अब एक नजर मौसम के हाल पर। कल दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। समाचार संकलन शिखा दुबे का।
1: आज की ताज़ा खबर।

0: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 7 बजने वाले हैं। अब प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, आज है 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस। आज के विशेष कार्यक्रम में लीजिए सुनिए वार्ताकार श्रीमती तनुजा जोशी से इसी विषय पर ये वार्ता।
1: सभी श्रोता मित्रों को तनुजा जोशी का नमस्कार। साथियों, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 में की गई थी और उसकी शुरुआत के बाद पहली बार 1973 में यह दिवस एकमात्र पृथ्वी नारे के रूप में मनाया गया और आज 2026 में पर्यावरण दिवस की थीम है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए और हमारे भविष्य के लिए। यह थीम जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए प्रकृति की भूमिका को जोर देती है। साथियों, आयोजन की शुरुआत इस बार मेजबान बाकू अज़रबैजान गणराज्य द्वारा की जा रही है। आइए अब जानते हैं कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। यह हमारे चारों ओर मौजूद उन सभी प्राकृतिक और जैविक कारकों का समूह है जो जीवन को प्रभावित करते हैं। हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव और मानव द्वारा निर्मित परिस्थितियाँ और सामाजिक परिवेश, ये सब पर्यावरण का हिस्सा हैं। वर्तमान

में हमारा पर्यावरण विभिन्न प्रकार के प्रदूषण का शिकार हुआ है। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और वायु प्रदूषण। जी हाँ, भौतिक संसाधनों का अधिक उपयोग, वनों की कटाई, ये सब जवाबदार हैं हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए। हमें आगे बढ़कर इन सब कारकों को रोकना होगा और हमारे पर्यावरण को फिर से हरा भरा बनाने का प्रयास करना होगा। आइए जानते हैं कि वायु प्रदूषण किस प्रकार से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। वायु प्रदूषण में मुख्य रूप से ओजोन परत में छिद्र हुए हैं, उसका कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप जानते हैं कि वायुयान से निकलने वाली जो गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो

पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। वायु प्रदूषण में मुख्य रूप से ओजोन परत में छिद्र हुए हैं, उसका कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप जानते हैं कि वायुयान से निकलने वाली जो गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। ओजोन परत एक छतरी के रूप में पृथ्वी से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है और इस ओजोन परत में छिद्र होने के कारण सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर डायरेक्ट आती हैं और उसके कारण विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियां हो रही हैं। इसे रोकना होगा और जो एरोसॉल हैं उससे निकलने वाली गैस भी हमारे वायुमंडल को नुकसान पहुंचा रही है। आइए अब जानते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसें आती हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन गैस शामिल हैं। ये गैस जो रहती हैं ये सूर्य से आने वाले अवरक्त प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता रखती हैं और सूर्य से आने वाला जो अवरक्त प्रकाश है वो पृथ्वी पर डायरेक्ट ना आते हुए इन गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और ये गैसें पृथ्वी के तापमान को स्थिर बनाए रखती हैं और 15 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रहता है और इस प्रकार का जो प्रभाव होता है वह कहलाता है प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव। हम देख रहे हैं कि पृथ्वी का तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ना को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है और इसका मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन जलाना, वनों की कटाई, कृषि परिवहन, औद्योगिक उत्पादन और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य प्रदूषकों का बढ़ता स्तर, यही ग्रीन हाउस प्रभाव के बढ़ने का कारण है और इसके कारण ये गैसें पृथ्वी के बढ़ते तापमान का कारण बनती हैं। ये गैसें सूर्य प्रकाश की अवरक्त किरणों को, मैंने पहले भी बताया था कि ये अवशोषित कर लेती हैं और अवशोषण के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है जो कि हम आज देख रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और इससे ध्रुवों के पिघलने की संभावना बनी रहेगी और साथ में समुद्र का जल स्तर भी बढ़ जाएगा और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना रहती है और गर्म स्थानों पर सूखा हो सकता है। पर्यावरण संतुलन क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। पृथ्वी पर मौजूद जैविक घटक जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी मैंने पहले भी बताया था आएंगे इसमें, और अजैविक घटक जैसे मिट्टी, जल, वायु आएंगे इसमें, ये घटकों का पूर्ण रूप से सामंजस्य स्थापित करना है। जब पर्यावरण के सभी घटक एक प्राकृतिक चक्र में काम करते हैं तब इसे पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहा जाता है और यह संतुलित रहता है। हम छोटे से छोटे जीवों और बड़े जीवों को विलुप्त हो रहे हैं, जो उन्हें अपन बचाएं, उनकी रक्षा करें। सरकार इस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही है पर हमारी भी इस स्तर पर कुछ जवाबदारी है, तभी हमारी खाद्य श्रृंखला संतुलित होगी और इससे हमारा पारिस्थितिक तंत्र भी मजबूत होगा। पर्यावरण संरक्षण यानी पर्यावरण का बचाव। प्राकृतिक संसाधन, वन, जल, खनिज और वन्य जीव की रक्षा करना और उनका बुद्धिमानी से उपयोग करना, यही पर्यावरण संरक्षण है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है प्रदूषण को कम करना है ताकि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए वातावरण को सुरक्षित रख सके। हम अपने पर्यावरण को बचाना चाहते हैं तो हमें वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना होगा, जल और ऊर्जा बिजली की बचत करें और सीमित संसाधनों का उपयोग करें, प्रदूषण

0: नियंत्रण करें, प्लास्टिक का या पॉलीथीन का उपयोग बिल्कुल बंद कर दें, कचरे का सही प्रबंधन करें, रिसाइकलिंग करें, नवीनीकरण ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे विकल्पों को अपनाना होगा, और पर्यावरण संरक्षण ही पर्यावरण संतुलन की कुंजी है, ये बात याद रखनी होगी। दोनों का आपस में एक दूसरे से संबंध है, प्रकृति की रक्षा करके ही हम मानव जाति के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं।
1: हम प्राकृतिक आपदाओं को रोकना चाहते हैं तो एक कदम हमें भी आगे बढ़ाना होगा। परिवहन या यातायात के साधनों का सीमित उपयोग करें और साथ ही साथ एक पहल करें कि हम विश्व पर्यावरण दिवस के दिन एक पौधा, भले ही वो गमले में लगाएं, जरूर लगाएं और उस पौधे को जीवित बनाए रखें। यह मेरी आपसे विनती है, अनुरोध है। और साथ ही हम अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूकता बनाए रखें और आने वाली पीढ़ी की रक्षा के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए आप अपने प्रयास अपने स्तर पर जरूर करें। यही मेरा आपसे अनुरोध है और इसी अनुरोध के साथ एक कदम हरियाली की ओर इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः धन्यवाद।
2: विश्व पर्यावरण दिवस, ये वार्ता अभी आपने सुनी श्रीमती तनुजा जोशी से। विशेष कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही समय में हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर, कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश फोरम की बैठक आज। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिए निर्देश, समय पर पूरा हो मेट्रो रेल परियोजनाओं का काम। और भाजपा ने प्रदेश के दो और कांग्रेस ने एक राज्यसभा सीट के लिए प्रत्याशी घोषित किए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सबसे पहले हजीरा जाएंगे और औद्योगिक तथा अवसंरचना परियोजना की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरे का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात कर रहे हैं इज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार

0: सरकार के प्रयासों के बारे में। पेश है एक रिपोर्ट।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18,00,000 करोड़ रूपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार।
0: प्रदेश आज इंदौर के एक निजी होटल में भारत, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश फोरम 2026 की मेजबानी करेगा। ये फोरम मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। इस फोरम में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के 15 देशों के वरिष्ठ राजनयिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये फोरम भारत और लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियन क्षेत्र के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को सुदृढ़ करने तथा मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश के प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा,
2: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: इंदौर में 9 जून से प्रारंभ होने वाले अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश शासन की कृषि विभाग के सचिव निशांत वरमड़े इंदौर पहुंचे और आयोजन से जुड़े विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। श्री वरमड़े ने होटल शेरिटन, मैरिट होटल और ग्रामीण हाट बाजार सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल संचालन के प्रथम चरण के कार्य पूरा होने के बाद परियोजना के आगामी चरणों के कार्य समय सीमा में पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में भोपाल और इंदौर के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजधानी भोपाल और प्रमुख व्यावसायिक केंद्र इंदौर में मेट्रो रेल यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग का आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाए। दोनों नगरों की मेट्रो रेल परियोजना के सभी चरणों के संपूर्ण कार्यों में तेजी से पूरा किया जा रहा है। समग्र प्रगति की दृष्टि से दोनों परियोजनाओं के 2/3 कार्य पूरे हो चुके हैं। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और प्रदेश सचिव रजनीश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया है। इन सीटों के लिए नामांकन जमा करने की तिथि 8 जून है। जरूरी हुआ तो 18 जून को मतदान कराया जाएगा। राज्यपाल वंगूभाई पटेल ने

कल लोक भवन में लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण और आयुष विभाग के साथ चर्चा करते हुए विश्व सिकल सेल दिवस के तारतम्य में सिकल सेल उन्मूलन गतिविधियों को सघनता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज विश्व पर्यावरण दिवस पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में 8 श्रेणियों में 11 राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उक्त पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, सतत विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली औद्योगिक इकाइयों, शैक्षणिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और व्यक्तियों को वर्ष 2024-25 के लिए दिए जाएंगे। आज पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। यह हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी। इस दिन का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में पहली बार नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं को नाम जोड़ने, कटवाने और नाम संशोधन के लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है। इस सुविधा का लाभ लेते हुए कुल 8,317 आवेदकों ने ऑनलाइन आवेदन किया। इन सभी आवेदनों पर नियम के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले के सभी विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालयों पर 12 से 14 जून तक जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। आगर मालवा जिले में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान और स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान चलाया जाएगा। डिंडौरी में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। इंदौर में शासकीय सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने की मुहिम में खुड़ैल तहसील के ग्राम गारी पिपलिया में देव धर्मराज मंदिर की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। सिंगरौली कलेक्टर की अध्यक्षता में कल आपदा प्रबंधन कार्य की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने पंचायत विभाग और जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी खंडवा है। सुबह के 7:21 हुए हैं। अब प्रस्तुत है एक कहानी। वाचक स्वर और कहानीकार नफीसा लोखंडवाला। और आज की कहानी है ठंडी छांव। तो लीजिए सुनिए एक कहानी।
1: एक कहानी।
2: नमिता, ओ नमिता, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मुझे मेरे घर के चौक से मेरे पति की आवाज सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। अरे वाह, गुलाब के पौधे। मैं खुशी से दौड़ते हुए उनके पास गई। लाल, पीले, नारंगी रंग के गुलाब के पौधे उनके हाथ में थे। मेरे पति कभी मुझे गुलदस्ता नहीं देते थे, वो हमेशा मेरे लिए पौधे ही लाते थे। कहते थे जो 4 दिन में सूख जाए वो भी कोई तोहफा हुआ। खैर, अब इस बात को बीते एक अरसा हो चुका है। मेरे पति के गुजर जाने के बाद मुझे सबसे पहले घर की दीवारों से आवाज बदलती हुई सुनाई दी थी। पहले यही घर शाम को हंसता था। रसोई से तड़के की खुशबू आती थी। हर शाम पूरे दिन के काम के बाद मेरे पति और मैं साथ बैठकर खामोशी से रेडियो पर पुराने गाने सुनते हुए चाय पीते थे। फिर एक दिन सब रुक गया, इतना अचानक कि मुझे कई दिनों तक यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। कोई आदमी हंसता हुआ घर से निकले और वापस ही ना लौटे। उस रात पहली बार मुझे सन्नाटे से डर लगा था, मगर डर से बड़ी चीज जिम्मेदारी होती है।

मेरे पास रोने की मोहलत नहीं थी। दो बच्चे थे, अंकिता और अमित। अंकिता 14 साल की थी और अमित 11 साल का। घर, पानी, बिजली के बिल थे, स्कूल की फीस थी, राशन का खर्चा था, कर्जा था और एक सिलाई मशीन थी जो बस किसी तरह सांस ले रही थी। वो अक्सर कहते थे, तुम्हारे हाथ में हुनर है नमिता, कपड़े नहीं, तुम लोगों की पहचान सिल देती हो। मैंने अपनी सिलाई के सहारे जिंदगी काटनी शुरू की। उनके जाने के बाद मेरा यही हुनर अब मेरा घर चलाने का जरिया बन गया। सुबह 5 बजे उठती थी मैं, पूजा करने से मेरे दिन की शुरुआत करती और शाम तक कामों की फहरिस्त निपटे ना निपटे मैं छत पर अपने पौधों के पास जा पहुंचती। मेरी छत पर इतने गमले थे कि लोग मजाक में उसे छोटा जंगल कहते थे, मगर उन्हें क्या पता यही जंगल मुझे जिंदा रखे हुए था। सच कहूं, अगर वो पौधे ना होते तो शायद मैं भी ना बचती। मैं अपने पौधों से बातें कर अपना सारा सुख दुख बांट लिया करती। हाँ, सचमुच मुझे हमेशा लगता था पौधे भी बोलते हैं और शायद जवाब भी देते हैं। मुझे पता चल जाता था कौन सा पौधा नाराज है, किसे धूप कम लग रही है और किसे खाद देनी है। जब मैं बहुत थक जाती तो तुलसी के पास बैठ जाती, जब गुस्सा आता था तो मिट्टी खोदती और जब डर लगता तब अपने पौधों में लगे फूलों की खुशबू से मन को शांत कर लेती। मेरा एक उसूल था, अब भी है। मैं हर बार बारिश में गमले में एक नीम का पौधा लगाती, उसकी देखरेख कर साल भर में उसे थोड़ा बड़ा कर देती और फिर कहीं अच्छी सी जमीन देख या अपने किसी परिचित के आंगन में उसे रोप के आ जाती। नीम मुझे हमेशा से अपने जैसे लगते थे, कड़वे, अकेले और फिर भी दूसरों को राहत देते हुए। धीरे धीरे मेरा घर मोहल्ले की नर्सरी बन गया। कोई गुमफेरा मांगने आता, कोई मोगरा, कोई एलोवेरा। मैं कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती। जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, नया घर हो या बस यूं ही किसी का मन उदास हो, मैं पौधा तोहफे में दे देती। अमित चिढ़ जाता, माँ तुम हर किसी को फ्री में पौधे बांट देती हो। मैं हंस देती, पौधे बेचने की चीज थोड़ी ना होती है बेटा। वो चुप हो जाता, मगर उसकी आंखों में शिकायत रह जाती। शायद उसे यही लगता था कि मैं उससे ज्यादा पौधों से प्यार करती हूँ। और सच कहूँ, कई बार करती भी थी, क्योंकि पौधे कभी शिकायत नहीं करते। समय के साथ साथ बच्चों की ज़रूरतें बढ़ती गईं और मेरे घुटने घिसते गए। शहर में जहाँ कहीं पेड़ काटे जाते मैं पहुँच जाती बिल्डरों से लड़ने के लिए। मैं अब तक नहीं समझ पाई थी कि विज्ञापनों में करोड़ों रुपये खर्च कर देने वाले लोग पेड़ों की विस्थापना पर थोड़े से रुपये क्यों नहीं खर्च कर पाते। अच्छी बात यह थी कि इन सब में धीरे धीरे मेरे जैसे कुछ और लोग मिल गए मुझे। कोई स्कूल में टीचर था, कोई कपड़े की दुकान चलाता था, कोई घर संभालने वाली औरत थी। हम सब में एक चीज कॉमन थी, पेड़ों के लिए मोहब्बत। इस सिलसिले में हम सभी का पौधों को लेने देने के लिए एक दूसरे के घर आना जाना होता रहता था। हम सब बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। हम पौधों पर चर्चा करते, चाय पीते, कभी मिट्टी बदलते, कभी बीज बोते। तभी एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि पूरे शहर में 20 नीम के पेड़ लगाऊंगी और इस तरह शुरू हुआ हमारा नीम अभियान। लोगों ने मजाक उड़ाया, अपने घर का खर्चा चलता नहीं, शहर बचाने निकली है। मगर मैं रुकने वालों में से नहीं थी। मैंने जगह चुनी, कहीं मंदिर के पास, कहीं खेत में, कहीं स्कूल के सामने। मैं चाहती थी उन्हें पानी भी मिलता रहे और कोई जानवर उन्हें नुकसान भी ना पहुंचाए। मैंने हर पेड़ अपने साथियों के साथ मिलकर खुद लगाया। उसके बाद मेरी जिंदगी का एक हिस्सा उन पेड़ों की खबर रखने में बीतने लगा। कौन सा पेड़ कितना बड़ा हुआ, किसकी पत्तियां पीली पड़ रही है, कहाँ खाद डालनी है, मुझे सब याद रहा। अंकिता बड़ी हो गई, उसे एनिमेशन में

0: नौकरी मिल गई। उसकी शादी हैदराबाद में हो गई। अमित इंजीनियर बन गया। मुझे लगा अब जिंदगी थोड़ी आसान होगी, मगर बच्चों के बड़े होने के साथ एक अजीब दूरी भी आ जाती है। अमित अब मुझे समझना बिल्कुल बंद कर चुका था। उसे लगता था मैं पुराने जमाने की औरत हूँ जो पौधों में जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। पर जिस दिन उसकी पुणे में नौकरी लगी, उसने पहली बार मुझे गले लगा लिया और कहा, माँ अब ये सब छोड़ दो। क्या? मैंने पूछा। ये पौधे, ये समाज, ये सेवा, ये पेड़ बचाने का ड्रामा, अब आराम करो माँ। मुझे उसके ड्रामा शब्द ने भीतर तक चोट पहुंचाई। मैंने कुछ नहीं कहा। पुणे शिफ्ट होने का वक्त नजदीक आ रहा था। घर पैक हो रहा था, मजदूर सामान उठा रहे थे। तभी अमित चिढ़कर बोला, इतने गमले कौन ले जाएगा माँ, ट्रांसपोर्ट वाले अलग से पैसे मांग रहे हैं। मैंने पहली बार साफ कहा, बाकी सामान छोड़ दूंगी, ये नहीं। माँ ये सिर्फ पौधे ही तो है। मैं चुप रही। फिर धीरे से कहा, मैं दूंगी पैसे। अमित पहली बार चुप होकर रह गया और उस दिन पौधे भी हमारे साथ पुणे आ गए। धीरे धीरे वहां भी लोग मुझे पहचानने लगे। किसी का गुलाब सूखता तो मुझे बुलाते, किसी की तुलसी मुरझा जाती तो मैं चली जाती। लोग मजाक में कहते, नमिता जी पौधों की डॉक्टर है। मेरे प्रकृति के प्रति योगदान को देखते हुए मुझे कई सम्मानों से भी नवाजा गया। सर्टिफिकेट्स, अखबारों में मेरे फोटो, तालियां। मगर सच कहूँ, मुझे उससे ज़्यादा खुशी तब होती थी जब किसी सूखे पौधे में नई पत्ती निकल आती। धीरे धीरे वहाँ भी जिंदगी बस गई, मगर अपने शहर खंडवा की मिट्टी की खुशबू कभी पीछा नहीं छोड़ती। 10 साल बाद जब पुराने घर का सौदा तय हुआ, तो मुझे और अमित को वापस खंडवा आना पड़ा। हम बस से आ रहे थे, मई का महीना था। ऐसी गर्म हवा कि तवे से उट्टी लग रही थी। तभी अचानक खंडवा से थोड़ी दूरी पर ही हमारी बस का टायर पंचर हो गया। सभी लोग जल्दी जल्दी उतर कर छाव ढूंढने लगे। सामने एक बड़ा नीम का पेड़ था, उसके नीचे चाय वाला अपनी दुकान लगाए बैठा था। कुछ आदमी हंसते बतियाते चाय पी रहे थे। बच्चों ने रस्सी का झूला बांध रखा था और शोर मचा रहे थे। मैं और अमित भी उसी ठंडी छाव में जाकर खड़े हो गए। जैसे ही मैंने पेड़ को ध्यान से देखा, मेरे भीतर कुछ कांपा। मैंने आसपास नज़र दौड़ाई, सड़क, मोड़, पास का पुराना हैंडपम्प। मैं अचानक पहचान गई, वही पेड़ था, मेरा लगाया हुआ नीम। मेरे हाथ अपने आप उसके तने पर चले गए। खुरदुरी छाल को छूते ही जाने क्यों आंखें भर आई। 10 साल पहले मेरे कांधे जितना था, आज उसकी छाव में पूरा रास्ता ठंडा हो रहा था। एक पल को मुझे लगा जैसे कोई अपना बरसों बाद गले मिल गया हो। मैं चुपचाप उसे देखती रही। उसकी शाखाओं पर चिड़िया चहक रही थी। राह चलते लोग चैन की सांस ले रहे थे। मैंने मन ही मन कहा, देखो तुम बच गए ना। अमित शायद पहली बार मुझे समझ रहा था। उसने धीरे से पूछा, माँ यही है ना वो पेड़। मैंने बस सिर हिला दिया। उसने पेड़ की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। उसने पहली बार उस पेड़ को वैसे छुआ जैसे मैं चाहती थी, सम्मान से, मोहब्बत से।
1: एक कहानी।
2: अभी आप सुन रहे थे ठंडी छांव, वाचक स्वर और कहानीकार नफीसा लोखंडवाला। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। सुबह के 7:33 हुए हैं। अब प्रस्तुत है

सुनहरी पल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत इस्तकबाल। आज आपके साथ है आपके रेडियो दोस्त फिरदौस। सभी को सलाम, नमस्ते।

सतीश भाटिया का संगीतबद्ध किया, भारत व्यास का लिखा ये गीत अभी आपने सुना मुकेश की आवाज में। फिल्म थी बूंद जो बन गए मोती। लीजिए अब सुनिए मन की आंखें फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आवाज मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था मन की आंखें।
1: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
2: कुछ सोच के बोला होगा तुमने,
1: सोच कर ही बोला है कि सुनते रहे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा, प्यार हो जाएगा।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: प्रकृति के सानिध्य में फिल्माए गए बहुत ही खूबसूरत और सदाबहार फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आज के सुनहरे पल कार्यक्रम में। इसी कड़ी में लीजिए सुनिए साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने, संगीत से सजाया रवि ने और फिल्म है आज और कल।

राहुल देव बर्मन का संगीतबद्ध किया मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत अभी आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म है अभिलाषा और इसी गीत के साथ कार्यक्रम आ सुनहरे पल आप समाप्त करने की अपनी रेडियो दोस्त फिरदौस को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचार प्रभात कुछ ही समय में हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जन कल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी

0: उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज PCPIR और सरिगाम GIDC में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा

0: चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
1: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के

0: निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
2: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा

0: ना हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है। सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है। क्या हम सुन रहे हैं? पहले मौसम बदलता था, अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया, कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी खंडवा है। सुबह के 8:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है निमाड़ी लोकगीत। आज कलाकार हैं लखनलाल हिरवे और साथी।

0: अभी आप सुन रहे थे लखनलाल हिरवे और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके मीत ये गीत।
1: आपके मीत ये गीत।
0: आपके मीत ये गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत इस्तकबाल। आज आपके साथ ही आपकी रेडियो दोस्त फिरदौस। सभी को सलाम, नमस्ते।

कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वर में अभी आपने सुना देव कोहली का लिखा गीत, संगीत अनु मलिक का था और फिल्म थी जुड़वा। और इस गीत को सुनना चाहा आप सभी ने सनावत से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, मिश्रा गोल्डन, दीपक, सचिन कटारिया, कृष्णा, विराज, अर्णव, कृतिका, काव्यांशी और प्रभा कटारिया। मोटका माफी से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मन, मानस और कनिका पटेल। मऊनाथ भंजन से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। श्री गंगानगर से मेहर अरोड़ा, कीर्ति, भूमिका, ममता अरोड़ा। गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, कुमारी साक्षी, अच्छेलाल राय, बुल्की और फलना झा। चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी। खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव सैनी, ईशान और कार्तिक सैनी। ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराडे, वनिता गंगराडे, वामिका गंगराडे। ग्राम जामली कला से माणक चंद राठौर, पुष्पा राठौर, प्रियांशी राठौर। खंडवा से अब्दुल हमीद खलीफा, हबीब सलमानी, सफीक सलमानी, जावेद खलीफा। पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, कैसरुद्दीन। खंडवा से ममता

0: मारकंडे और संजय मारकंडे, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, बरकाकाना से अफजल ताज, शाहीन, सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, अफजल, इब्राहिम, बीड़ से किशन सपकाल, आशा सपकाल, साईराज, सोनिया और विशाल सपकाल, खंडवा से राधेश्याम यादव, प्रभा यादव, शालिनी, कामेश और भारती यादव, बड़वा से भारती कुशवाहा, मनीष कुशवाहा, पार्थ और अड़वी कुशवाहा।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

साधना सरगम की आवाज में अभी आप सुन रहे हैं विश्वात्मा फिल्म का गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत विजू शाह ने दिया। इस गीत को सुनना चाहा आप सभी श्रोताओं ने बागबारा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा सेन, कौशल सेन, गंडे पंडरिया से पवन कुमार, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन, नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाड़कर, श्वेता, सुमित और ध्वनि गवाड़कर, नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी शाह, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति, राधे गुप्ता, दीपक, अंकु और राघव गुप्ता, बोरीखुर्द जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत जगुताई, साक्षीताई, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, स्वामी देशमुख, प्रणाली और सानवी देशमुख, भाटापारा से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, आनंद राठौर, गिरिजा राठौर, लोकेश जोशी, पायल जोशी, सावन नायक, बबला यादव, अंकिता जोशी और वैदेही जोशी, नरगोड़ा से कीर्तन पुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी, जोगेश पुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा और तुलसी, खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनवती पंचोलिया, निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, रहीमुन्ना, दानिश, आसिफ शेख, नरवेल से पीएस नभाकर, निर्मला नभाकर, विशाल नभाकर, सनावत से दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, योगेश और मुस्कान मालाकार। इसी गीत के लिए हमें कुछ पत्र भी मिले हैं। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक, मीका बिरक, कवर कॉलोनी बढ़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली, वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलगमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और शादाब खत्री, गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता पूजा, विक्की स्वाति, प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे, ग्राम

रतनपुर तहसील जिरन्या जिला खरगोन के भागीरथ नायक, जितेंद्र नायक, सुभाष नायक, रविन्द्र, शिवानी, अश्विनी, हर्षराज, अरविंद, आदित्य, गुनगुन और इनका समस्त परिवार।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

आकाशवाणी खंडवा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने मोताला से विजय सुरलकर, रतन माला, आरती गौरी, ओम कुमार सुरलकर, मलोड से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ, सायना और निवान शर्मा, वारणा शाहपुर से, कोल्हापुर से विजय चौहान, इंदूरकर, तेजस्विनी चौहान, अंकिता, अनिकेत चौहान, महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, प्रिंस इशरत अकरम, वसीम, रुबीना वसीम, आरिज, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, अरहान बाबू, हमजा बाबू, शाजिया शाहीन, नाजिया नूरी शेख, बच्चू शेख और चीना शेख ने।

जगराव से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, धनोरी, तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, आलिया, आयान बाबू, सनावत से मोहम्मद सूफियान, हासिम, मोहम्मद इसहाक, बब्बू और डब्बू, देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश, कमलेश, कन्नूलाल, रजक, मुरली क्षत्रिय, राजकोट से जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी, पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़के, धर्मपुरी से मूसा जी खत्री, ईशा जी खत्री, जाकिर खत्री, भाटापारा से हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल साहू, चंपा साहू, टुलाते घेरा बेगूसराय से इस्माइल आज़ाद, नन्हे बाबू, अदीपा अफसरी, कमर जहां, शाह आलम, भाई वली आलम, छोटी बलिया से नूर आयशा अहमद बागवान, दुखना रानी, जूही इकबाल, सदफ अहमद फूल वाली। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का ये आखिरी गीत। और इसे सुनना चाहते हैं आप सभी। खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, फाल्गुनी जोशी, करजत मुंबई से अहमद मोगा, सुरेश मोगा, अजीत मोगा, दिल्ली से अहमद हुसैन, सलमा हसन, गुलाब हसन, खंडवा से राजेंद्र कटारी, अनीता कटारी, उदय उज्जवल और मितांश कटारी, वीरमगाम सिटी से राकेश पॉल, हेमा पॉल, डुमराव से असमा अंसारी, वलीउल्ला अंसारी, दुखना अंसारी और जूही परी, मालियान सरधना से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, जीवियम जैन, मेरठ से आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, सहारनपुर से कौशल्या जोशी, सोनाली, आशु अहमद और अहमद कपूर, जालंधर से रोशन जहां, नुसरत जहां, मन्नत जहां, चंद्रनगर से अजीता जाटव, ग्राम बठेना पाटन से परमेश्वर साहू, राजपत्ती काजल, पूर्वी हेजल, राजेश साहू, रेशमा साहू, निम्नाबाद जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह, जतिंदर कौर, गुरप्रीत कौर, लवप्रीत और करमजीत कौर।

समीर का लिखा गीत उदित नारायण की आवाज में अभी आप सुन रहे हैं फिल्म सिर्फ तुम से, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी उम्मीद ये गीत समाप्त करने की आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आपके मीत ये गीत।
1: अभी कार्यक्रम आपके मीत ये गीत प्रसारित किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। अब राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे।

इस ब्रेक के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। और चित्रलोक में आगे बढ़ते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू की आवाज़ों में समीर का लिखा और नदीम श्रवण के बनाई धुन पर ये गीत। फिल्म का नाम है दिल है तुम्हारा।

श्रोताओं, आज है अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड IUU फिशिंग डे। हर साल ये 5 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2017 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी और पहला IUU दिवस 5 जून 2018 को मनाया गया था। इस महत्वपूर्ण दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई थी और पोर्ट स्टेट मेजर्स एग्रीमेंट PSMA। यह दिवस PSMA की भी वर्षगांठ का प्रतीक है, जो अवैध मछली पकड़ने से निपटने के लिए दुनिया की पहली बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है ना, अवैध मछली पकड़ने और इससे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान से दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है, बढ़ाना है।

फिशिंग से महासागरों में जैव विविधता, समुद्री संसाधनों और उन मछुआरों की आजीविका को भी भारी खतरा होता है श्रोताओं, जो कि नियमों का पालन करते हैं।

अमिताभ भट्टाचार्य के बोल प्रीतम की बनाई धुन पर अमित मिश्रा और शिल्पा राव की आवाजों में ए दिल है मुश्किल फिल्म का ये गीत। और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं समीर का लिखा गीत प्रीति पिंकी और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में मुझे कुछ कहना है फिल्म से।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

श्रोताओं, अंतराल के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आप सभी का फिर से स्वागत है। श्रोताओं, आज 4 बजे शाम को पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा गीतों भरी कहानी। कहानी का शीर्षक है नजरिया। वाचन स्वर नेहा शर्मा का है, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। सुनना नहीं भूलिएगा। और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं इश्क विश्क फिल्म का ये गीत, अलका याग्निक कुमार सानू की आवाजों में। समीर ने इसे लिखा है, अनु मलिक ने संगीत से सजाया है।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आप मुझे अच्छे लगने लगी। इस फिल्म का गीत अलका याग्निक और अभिजीत के युगल स्वरों में, इब्राहिम अश्क की शब्द रचना है, राजेश रोशन की बनाई तर्ज।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे आप मुझे अच्छे लगने लगे अलका याग्निक और अभिजीत की युगल आवाजों में। और अब आपको कार्यक्रम चित्रलोक का आखिरी गीत सुनवाने जा रहे हैं आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से श्रेया घोषाल सोना मोहपात्रा की आवाजें कुमार का लिखा गीत विशाल शेखर का संगीत। इससे पहले आपको बता दें कि आज सुबह 9:30 पर और रात को पुनः 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार केंद्रित रहेगा अभिनेत्री सोनम कपूर पर। सुनना नहीं भूलिएगा।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

सोनम कपूर, जिनका पूरा नाम है सोनम कपूर आहूजा, 9 जून 1985 को मुंबई में जन्मी बॉलीवुड के झकास हीरो

0: My name is Lakhan, my name is Lakhan, sajnon ka sajan, mera naam hai Lakhan.
1: तो चलिए सोनम कपूर की इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत करते हैं। उनकी डेब्यू फिल्म थी सांवरिया, जो आई साल 2007 में। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में उनके साथ थे रणवीर कपूर। फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल न किया हो, लेकिन सोनम की मासूमियत ने सबके दिलों में अपना घर कर लिया।

इसके बाद सोनम ने दिल्ली सिक्स में काम किया, जहां मसक कली गाने ने तो जैसे हर गली मोहल्ले में धूम मचा दी थी। और इसी के साथ सोनम ने दिखा दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर की दुनिया में ही नहीं, बल्कि एक कामयाब अभिनेत्री का हुनर भी रखती हैं।

अब बात करते हैं साल 2010 की, जब आई उनकी एक बेहद स्टाइलिश फिल्म आयशा। इस फिल्म को सोनम ने खुद प्रोड्यूस किया और इस फिल्म ने उन्हें फैशन आइकन बना दिया।

बाद उन्होंने रोमांटिक और अभिनय शैली के तमाम अलग अलग फन को बारीकी से पर्दे पर उतारा। ये फिल्में थीं आई हेट लव स्टोरीज, थैंक यू और मौसम।

वैसे अगर हम देखें तो सोनम कपूर की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म है रांझना। रांझना की जोया ने हमें रुलाया, हंसाया और दिखाया कि सोनम कपूर एक सीरियस कलाकार भी हैं। धनुष के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया।

इसके बाद आई खूबसूरत, एक हल्की फुल्की दिल को छू जाने वाली फिल्म। इस फिल्म में सोनम का क्यूट और चुलबुला अंदाज सभी को भा गया।

फिर आई राशि प्रोडक्शंस की फिल्म प्रेम रतन धन पायो। यहाँ सलमान खान के साथ सोनम ने स्क्रीन शेयर की। भव्यता, संगीत और पारिवारिक भावनाओं से भरपूर इस फिल्म में सोनम की सादगी ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया।

भाग मिल्खा भाग में सोनम कपूर ने बीरो का किरदार निभाया, मिल्खा सिंह की पहली प्रेमिका, जो उसकी युवा उम्र की मासूमियत और भावनात्मक संघर्षों का अहम हिस्सा बनती हैं। ये भूमिका भले ही स्क्रीन पर सीमित समय के लिए थी, लेकिन इसके महत्व को बिल्कुल भी कम आका नहीं जा सकता। सोनम ने इस फिल्म में अभिनय के लिए सिर्फ 11 रुपए की प्रतीकात्मक राशि ली, न कोई फीस, न कोई स्टारडम की मांग। उनका ये फैसला इस बात का प्रमाण है कि सोनम केवल एक कमर्शियल एक्टर नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और जुनूनी कलाकार भी हैं, जो सिनेमा को उसके शुद्ध रूप में समझती और निभाती हैं। बीरो के किरदार में सोनम ने पंजाब की परंपराओं, संस्कृति और भावनाओं को बेहद सादगी और सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा। उनका अभिनय न केवल कहानी में गहराई जोड़ता है, बल्कि दर्शकों को ये महसूस भी कराता है कि अभिनय सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि समर्पण और संवेदना का भी नाम है। इस भूमिका के जरिए सोनम कपूर ने ये साबित किया कि जब कहानी दिल को छू जाए, तो कलाकार अपनी सीमाओं से परे जाकर सिर्फ कला के लिए काम करता है, बिना किसी भव्यता की अपेक्षा के।

आई फिल्म संजू, जहां रणबीर कपूर के साथ उन्होंने निभाया रूबी का खूबसूरत किरदार। ये रोल भी छोटा था, लेकिन फिल्म की इमोशनल गहराई को बढ़ाता है।

इसके बाद फिल्म मिर्जा आई। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत की वीर बेटी मिर्जा भनोट को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। सोनम ने इस किरदार को जिस संवेदना, साहस और सादगी के साथ निभाया, उसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। उन्होंने मिर्जा की निडरता, मानवीय संवेदनाएं और बलिदान को इस तरह पर्दे पर उतारा कि वो किरदार अभिनय से कहीं आगे जाकर एक जीवंत अनुभव बन गया। इस फिल्म में सोनम ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं है बल्कि एक गंभीर और समर्पित कलाकार भी हैं, जो सच्ची कहानियों को आत्मा से जी सकती हैं। मिर्जा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, स्पेशल मेंशन सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और प्रशंसा मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा में उनका स्थान सिर्फ एक स्टार के रूप में नहीं बल्कि एक सशक्त कलाकार के रूप में भी है।

जैसी संवेदनशील फिल्म के बाद सोनम कपूर ने वीरे दी वेडिंग जैसी मॉडर्न बोल्ड और फ्रेश कहानी के जरिए अपनी अभिनय रेंज का एक अलग ही रूप दर्शाया। इस फिल्म में उन्होंने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया जो आज की पीढ़ी की सोच और संघर्षों को ईमानदारी से सामने लाती है।

बाद 2018 में वो दिल्ली के उद्यमी आनंद आहूजा की शरीक हयात बनी, जो उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनकी शादी भी उतनी ही सरल, खूबसूरत और रियल थी जितना उनका व्यक्तित्व। आज सोनम कपूर एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक सोशल आइकन भी हैं। वो अक्सर महिलाओं के हक, फैशन और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखती हैं। वो अब एक बेटी की माँ भी बनी हैं, जिसका नाम है वायु, और इस नए फेज में भी वो उतनी ही ग्रेसफुल लगती हैं, उतनी ही खूबसूरत लगती हैं।

कपूर एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेती हैं। महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े टैबू हों, LGBTQ+ समुदाय की स्वीकार्यता या मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय, सोनम हर बार खुलकर अपनी बात रखती हैं।

उन्होंने पैडमैन और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे फिल्मों में ऐसे मुद्दों को उठाया जिन पर बॉलीवुड अक्सर चुप्पी साध लेता है।

इसके अलावा सोनम जानवरों के अधिकारों की भी मुखर समर्थक हैं। वे पेटा की सदस्य रहीं और कई बार उन्होंने फर और चमड़े के उपयोग के खिलाफ अभियान भी चलाया। सोनम को पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर जैसे खिताब से भी नवाजा जा चुका है। उनके लिए सच्ची सुंदरता सिर्फ पहनावे में नहीं बल्कि संवेदनशीलता और करुणा में भी है। सोनम कपूर को उनके अभिनय और सामाजिक योगदान के लिए कई बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। फिल्म निर्जा में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मेंशन मिला। साथ ही फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड आईफा और जी सिने अवार्ड्स में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब उन्होंने हासिल किया। उन्हें रांझणा, सावरिया और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों के लिए भी फिल्म फेयर में नामांकन मिला। फैशन और स्टाइल के क्षेत्र की जहां तक बात है उसमें भी वे लगातार मोस्ट स्टाइलिश वुमेन और फैशन आइकन ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स जीतती रही हैं।

दोस्तों, ये थी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर के फिल्मी सफर की दास्तान। एक स्टाइलिश, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और संवेदनशील एक्ट्रेस। हम उम्मीद करते हैं कि सोनम आगे भी हमें ऐसे ही दिलचस्प किरदारों में दिखती रहेंगी।

0: जो केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर पर। स्वर संगीता श्रीवास्तव का, शोध आलेख और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 10 बजने वाले हैं। जिले की चिट्ठी अब हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।
2: भोपाल है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
3: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है खंडवा जिले की चिट्ठी। आलेख हीरा लाल लोंगरे, वाचन स्वर दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने निमाड़ंचल को बड़ी सौगात देते हुए 4,415 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत एनएच 347 पी के हिवारखेड़ी रोशनी आशापुर रूधी मार्ग को 2 लेन और देशगांव जुलवानिया मार्ग को 4 लेन में अपग्रेड किया जाएगा। परियोजना से खंडवा बैतूल खरगोन बड़वानी जिलों में यातायात सुगम होगा, क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति भी मिलेगी। प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने हाल ही में वनग्राम आवलिया में वन विभाग और L&T कंपनी के संयुक्त तत्वाधान में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूर्व कालीभीत परिक्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी वीरेंद्र सिंह अचालिया ने युवाओं से अपील करते वे कहा है कि वन क्षेत्रों में रहने वाले अधिक से अधिक युवा कार्यक्रम का लाभ उठाएं। युवा कार्यक्रम के तहत वन क्षेत्रों के 18 से 35 साल के युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। डॉ. शाह ने कहा कि सरकार युवाओं को और स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत खंडवा जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। नगर निगम खंडवा ने 20,490 कंटूर ट्रेंच बनाकर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि जिले ने ग्रामीण क्षेत्रों में 4,22,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण कर देश में 5वां स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानून को आज खंडवा जिले के दौरे पर रहेंगे। वे खालवा और खंडवा में मानवाधिकार से जुड़े मामलों की समीक्षा करेंगे तथा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। खंडवा में आयोजित जिला विकास समन्वय तथा निगरानी समिति दिशा की बैठक में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने अधिकारियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने किसानों को उर्वरक वितरण के ई टोकन सिस्टम की जानकारी देने और पेयजल योजनाओं के बेहतर संचालन पर विशेष जोर दिया है। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने गत दिनों खालवा विकासखंड के ग्राम रोशनी में 1,36,00,000 रुपए लागत के इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर का लोकार्पण किया। इस परियोजना से 160 आदिवासी महिलाओं को मछली पालन, पशुपालन, बतख पालन और फल सब्जी उत्पादन के माध्यम से रोजगार मिलेगा। कृषि विभाग ने किसानों से खरीफ फसलों की बुआई के लिए प्रमाणित और गुणवत्ता युक्त बीजों का उपयोग करने की अपील की है। विभाग द्वारा खाद और बीज की गुणवत्ता की लगातार निगरानी की जा रही है और नमूनों की जाँच भी कराई जा रही है। योग दिवस 21 जून को जिले भर में मनाया जाएगा। जिला मुख्यालय सहित सभी विकासखंडों और नगरीय निकायों में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। खंडवा में सिंहस्थ 2028 के तैयारियों के तहत पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पुलिस कंट्रोल रूम में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक अगम जैन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारेगण की उपस्थिति में 60 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रथम बैच को भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, आधुनिक तकनीकों के उपयोग संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। ये प्रशिक्षण जिले के सभी अधिकारी कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से प्रदान किया जाएगा। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत आयोजित कार्यशाला में किसानों को जैविक प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य सुधार और कृषि आधारित उद्यमिता की जानकारी दी गई है। वहीं श्रम विभाग ने असंगठित श्रमिकों से 13 जून तक अनिवार्य रूप से EKYC पूरी कराने की अपील की है। उधर पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती पर माणिक के स्मारक वाचनालय में संगोष्ठी और सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। खंडवा जिले में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण,

विविधता, स्वच्छता, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीणों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत नगर निगम द्वारा झीलोद्यान और नमो वन क्षेत्र में विशेष वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों द्वारा तैयार सीड बॉल के उपयोग की भी तैयारी की जा रही है। मछलियों के प्रजनन काल को देखते हुए मध्यप्रदेश में 16 जून से 15 अगस्त तक नदियों और उनसे जुड़े जलाशयों में मत्स्याखेट पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के

0: अभी आपने सुनी खंडवा जिले की चिट्ठी, आलेख हीरालाल लोंगरे का, वाचिका दीपा सिंह। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा था।
1: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी खंडवा है। सुबह के 10:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
3: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
3: और डोंडी दुहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
3: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
2: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शैडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
3: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
2: जी,
3: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
2: जी,
3: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
2: जी,
3: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
2: श्रोताओं, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है, मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
3: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
2: क्या बात है!
3: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
2: क्या बात है! श्रोता, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कॉमिक गाँव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
3: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना

0: पड़ता है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
1: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
0: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है। यहाँ आज भी लोग पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं।
1: जी।
0: इस डाकघर की स्थापना 5 नवंबर 1983 को हुई थी।
1: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है। यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
0: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
0: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है।
2: नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: शांत शांत,
1: आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
3: हाँ हाँ महाराज, महाराज बताइए, हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर। हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
4: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
5: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।

0: जी महाराज।
1: अब बहुत कृपा।
2: महाराज की जय हो।
3: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
4: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
5: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
4: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
5: महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
4: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
5: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़ कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़ कर थे।
4: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
5: धन्यवाद महाराज। अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
6: भाई, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
7: हुआ? मुझे भी नकली मिला।
6: क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली?
7: नकली
6: कैसे हो गया? अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया, सभी ने बोला कि नकली है।
8: महाराज की जय।
4: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
5: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो हम पूछ लें। महाराज
4: कहिए। मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
5: जी धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं महाराज।
4: क्या? और कोई शंका?
5: जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
4: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
9: महाराज की
10: जय।
9: महाराज की
10: जय।
9: महाराज की
10: जय।
4: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
11: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वय

0: प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
2: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलाड़ू मैं चल चलू।

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का

ये प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

0: चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का उमंग।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 10:35 होने वाले हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी जगत।

अपने मनपसंद कार्यक्रम नारी जगत में और मैं हूँ आपकी सखी मीनू जैन। सखियों, आज है 5 जून और 5 जून को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। सखियों, इस साल ऐसा नहीं लग रहा कि गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है और ये सब सुपर अल नीनो की वजह से हो रहा है। इसलिए पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें पर्यावरण की रक्षा करनी होगी, क्योंकि पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। शुद्ध हवा, स्वच्छ पानी, पेड़ पौधे, नदियाँ, जंगल और जीव जंतु, ये सभी मिलकर हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अगर पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। आज आधुनिकता और विकास की दौड़ में हम प्रकृति को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। पेड़ों की कटाई, प्लास्टिक का ज्यादा उपयोग, जल और वायु प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। इसका परिणाम हमें बढ़ती गर्मी, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और अनेक बीमारियों के रूप में देखने को मिल रहा है। अब हम देख ही रहे हैं सखियों, पहले गर्मी, सर्दी, बरसात के मौसम फिक्स थे, लेकिन अब कभी भी बारिश आ जाती है। इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और प्रकृति की रक्षा के लिए प्रेरित करना है। यह दिवस हमें ये संदेश देता है कि हम समय रहते जाग जाएं और अपनी प्रकृति को बचाएं। बस कुछ छोटे छोटे उपाय करके हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पानी की बचत करके, प्लास्टिक का उपयोग कम करके, बिजली की बचत करके, साथ ही पेट्रोल डीजल की भी बचत करके हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए सखियों कि पृथ्वी केवल मनुष्यों की नहीं बल्कि सभी जीवों की है। अगर हम पर्यावरण का ध्यान नहीं रखेंगे तो आने वाला समय बहुत कठिन हो सकता है, क्योंकि सखियों, पेड़ पौधे हैं जीवन का आधार, इन्हें बचाना हम सबका है अधिकार।

0: सखियों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सभी से जुड़ा हुआ है, खाद्य सुरक्षा, यानी हमारे भोजन का सुरक्षित और पौष्टिक होना। इसी उद्देश्य से हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। सखियों, इस वर्ष की थीम है समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। ये थीम हमें याद दिलाती है कि सुरक्षित भोजन केवल हमारी आवश्यकता ही नहीं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा का आधार भी है। सखियों, हमारे घर की रसोई केवल भोजन बनाने का स्थान नहीं है, बल्कि परिवार के स्वास्थ्य की नींव भी है। घर की महिलाएं भोजन की खरीदारी से लेकर उसे सुरक्षित रखने, पकाने और परोसने तक हर चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए खाद्य सुरक्षा की शुरुआत अक्सर घर की रसोई से ही होती है। सखियों, हम महिलाएं अगर बाजार से खाद्य पदार्थ खरीदते समय उनकी गुणवत्ता, पैकिंग, निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि की जांच करें, तो मिलावटी और खराब खाद्य पदार्थों से परिवार को बचाया जा सकता है। भोजन बनाते समय स्वच्छता का ध्यान रखना, फल सब्जियों को अच्छी तरह धोना और साफ पानी का उपयोग करना भी खाद्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज बाजार में कई खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायतें सामने आती है, इसलिए बहुत सस्ते और बिना भरोसे वाले उत्पादों को खरीदने से बचना चाहिए। अपने बच्चों को भी सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के महत्व के बारे में सिखाएं। जब बच्चे स्वस्थ भोजन और अच्छे खानपान की आदतें सीखते हैं तो वे जीवन भर स्वस्थ रहते हैं। आज विज्ञान और तकनीक की सहायता से खाद्य सुरक्षा को और मजबूत बनाया जा रहा है। विभिन्न संस्थाएं खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करती है और लोगों को सुरक्षित भोजन के प्रति जागरूक बनाती है, क्योंकि स्वस्थ भोजन ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: सखियों, आज माह का पहला शुक्रवार है और आज क्रम होता है मिसाल का। तो आज मिसाल क्रम में हमने बात की है श्रीमती अर्पणा जैन से, तो सुनते हैं मिसाल क्रम।

0: सखियों आप सुन रही हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मिसाल, जहां हम बात करते हैं ऐसी सखी से जिनकी मेहनत और हौसला दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला है जिन्होंने छोटे से काम से शुरुआत की। उनके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आए, आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। तो आइए स्वागत करते हैं हमारी मेहमान सखी श्रीमती अर्पणा जैन का। तो नमस्ते अर्पणा जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अर्पणा जी, सबसे पहले आप हमारी सखियों को अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ से हैं, आपके परिवार में कौन कौन है।
1: मैं इंदौर से हूँ, वैसे मेरा मायका इंदौर का है और मेरे परिवार में यहाँ ससुराल में पति, बेटा, बेटी और दामाद और नाती है मेरा।
0: अर्पणा जी, सबसे पहले आपने साड़ी में फॉल पिको का काम शुरू किया था, तो ये फैसला आपने कैसे लिया?
1: मेरे घर की परिस्थिति कमज़ोर थी, मैं शादी होकर आई जब उसके साल भर बाद, तो फिर उस परिस्थिति को कुछ तो निपटाने के लिए मुझे घर का खर्च करने के लिए, पति का सहयोग करने के लिए मुझे फॉल पिको का काम सबसे पहले दिखा कि यही करा जाए, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले फॉल पिको का काम शुरू किया है। उसके बाद फिर फॉल पिको के काम कम से कम मैंने 10 साल किया है।
0: तो शुरुआत में आपके पास कितने साधन थे और आपने ये काम कहाँ से शुरू किया?
1: शुरुआत में तो मैं घर पे ही लोग फॉल पिको का देने आते थे, बाकी मैं दुकानदारों से लाके भी करती थी फॉल पिको का काम, तो वो 2 रुपए से स्टार्ट करा था मैंने कि 2 रुपए में फॉल लगा के देती थी मैं पहले। उसके बाद धीरे धीरे वो काम मेरा बढ़ गया।
0: हाँ, जैसे पीको के लिए तो अपने पास मशीन चाहिए होती है।
1: हाँ, पिको की मशीन मैंने खरीद ली थी, वो भी मैंने किश्त में ली थी। मैंने प्रधानमंत्री वाला लोन लेके और उससे मैंने स्टार्ट किया था।
0: अच्छा,
1: उसी के समय से मैंने फिर अंडर गारमेंट्स और इस टाइप से थोड़ी सी छोटी सी दुकान चालू करी थी।
0: जी अर्पणा जी, और जब आपने काम शुरू किया तब आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा?
1: उसके लिए मुझे बहुत परेशानी शुरू में हुई, क्योंकि इस काम के लिए पूरा दिन रात तक काम करना पड़ता था, फिर घर के भी पूरा परिवार था तो उनका भी पूरा सब काम करना पड़ता था अपने को, तो उसमें मुझे मुश्किलें बहुत आई। फिर लेने जाओ देने जाओ फॉल पिको का काम करने के लिए दुकानदारों के यहाँ, तो इसमें मुझे मुश्किलें बहुत आई शुरू में। तो
0: क्या कभी ऐसा समय आया जब लगा कि आपको ये काम छोड़ देना चाहिए या इसके साथ कोई दूसरा काम भी करना चाहिए?
1: एक समय ऐसा भी आया था कि इस 2 रुपए के फॉल पिको में मेरे घर का खर्चे में परेशानी हो रही थी, तब मुझे थोड़ा सा लगा कि कुछ और भी काम किया जाए। जब मैंने फिर धीरे से इंदौर में एक व्यापारी से बात करके प्लेन साड़ियों का काम चालू करा था, उसके बाद धीरे धीरे मेरा काम जमने लग गया था प्लेन साड़ियों का, क्योंकि खंडवा में प्लेन साड़ियाँ बहुत मुश्किलों से मिलती थी। मेरे पास ही स्टार्टिंग से सबसे शुरू में प्लेन का काम चालू किया मैंने।
0: साड़ियों का काम करते समय आपको क्या क्या अनुभव मिले?
1: साड़ियों के काम से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला, उससे मेरा परिवार भी बहुत बढ़िया रहा, मतलब खर्चे में मुझे कोई मुश्किल नहीं आई, बहुत बढ़िया रहा। साड़ियों का काम मेरे बहुत कॉटन की साड़ियाँ वगैरह मैं सेल करती थी सुपर नेट की, तो वो माल मेरा खंडवा में किसी के यहाँ शायद ही मिलता होगा, मैं इस टाइप का माल खरीद के लाती थी, तो मेरा काम तो बहुत बढ़िया चलने लग गया था।
0: इससे आपके परिवार और आसपास के लोगों को आपको कितना सहयोग मिला इससे?
1: इसमें मेरे सास का और मेरे पति का और मेरे माता पिता का सबसे ज़्यादा सपोर्ट है मुझे इस काम में, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी सास का सपोर्ट मिला है मुझे, जो भी शुरू से आखिरी तक में हर काम में मेरी सास का और पति का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था मुझे। मेरे दोनों बच्चे बेटे बेटी का भी बहुत सपोर्ट रहा, मेरी बेटी का भी मेन ज़्यादा था, वो हर काम में मेरी हेल्प करती थी बहुत ज़्यादा।
0: वैसे भी बेटियां हेल्पफुल ही रहती हैं और मम्मी का उनको दया भी आती है उनको देख के।
1: ये बात सही है बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा बेटी तो अभी तक चलता है उसका मेरा, वो अभी तक बहुत ज्यादा सपोर्टर है अपनी।
0: अच्छा अर्पणा जी, आपने टिफिन सर्विस का काम भी शुरू किया है, तो ये फैसला आपने कैसे लिया?
1: ये फैसला मेरा साड़ी दुकान का बंद करने के बाद, लॉकडाउन लगने से मेरी साड़ी दुकान में मुझे कम से कम 3 लाख का नुकसान हो गया।
0: अच्छा,
1: मेरा लॉकडाउन के टाइम माल आया था और लॉकडाउन लग गया,

0: 3 साढ़े 3 लाख का मुझे नुकसान हुआ। उसके बाद मैंने साड़ी दुकान, मेरी सास की प्रॉब्लम आ रही थी घर में, क्योंकि सास बोले मुझे अकेले नहीं छोड़ के जाओ दुकान पे, तो फिर मैंने लॉकडाउन से टिफिन का चालू कर दिया था, टिफिन सेंटर।
1: और आज आपकी टिफिन सर्विस कैसे चल रही है और कितने लोगों तक आपका खाना पहुंचता है?
0: बहुत लोगों तक मेरा खाना जाता है, रेगुलर मेरे 12-15 टिफिन रेगुलर चल रहे हैं दोनों टाइम के मिला के। खाना भी लोगों को बहुत पसंद आता है मेरा, यही
1: खाना तो आपका बहुत सही में बहुत टेस्टी है, क्योंकि हमने भी खाया हुआ है आपके हाथ का खाना।
0: वही, क्योंकि खाना टिफिन तो बहुत अच्छे से अभी मेरा काम चल रहा है टिफिन का तो।
1: अर्पणा जी, इतने संघर्ष के बाद आज जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं तो आपको कैसा महसूस होता है?
0: पीछे मुड़ के देखने के बाद लगता है कि आज का जीवन मेरा ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है, कि मेरे जो भी काम कर रही हूँ, नाश्ता है, टिफिन है, सब में मेरे को हर व्यक्ति की सक्सेसफुली हर व्यक्ति बोलता है कि बहुत ही बढ़िया काम है तुम्हारा ये, और मुझे इसमें सक्सेस मिल रहा है हर काम, नाश्ते में, खाने में, दोनों में मेरा बढ़िया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा पहला था उससे तो ये मुझे ज्यादा बेस्ट लगा है।
1: और इसमें कहीं जाना भी नहीं रहता, अपने को बाहर अपने घर से ही काम
0: करना है। अपने हिसाब
1: करना
0: से मेरा समय सेट कर सकती हूँ कि मुझे कहीं जाना है तो मैं उसको आगे पीछे भी करके कर सकती हूँ। सारी दुकान और पहले के जो काम थे उसमें मुझे शॉप में पूरे टाइम देना पड़ता था, और इस समय अब ये है कि मेरा मैं थोड़ा सा बाहर भी जा पाती हूँ और काम भी हो जाता है मेरा, नाश्ते का और उसका और खाने का दोनों काम हो सकते हैं मेरे इसमें।
1: अर्पणा जी, जो महिलाएं घर से ही अपना छोटा काम शुरू करना चाहती हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: घर से भी करें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि घर से और ज़्यादा बेटर काम होता है। घर से काम करने पे आप अपने परिवार को भी देख पाते हैं, बच्चों को भी देख पाते हैं और काम भी अच्छे से हो जाता है। आप छोटा सा काम बिना पूंजी से भी स्टार्ट करेंगे तो भी हो जाएगा, मैंने भी बिना पूंजी से ही स्टार्ट किया था काम को, तो घर से करेंगे तो बेटर रहेगा इस काम को करने से।
1: बिल्कुल अर्पणा जी, तो सुना सकी हो आपने अर्पणा जी की कहानी, सच में वो हम सब महिलाओं के लिए एक मिसाल है। अर्पणा जी, आपने अपने कीमती समय से हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका भी, क्योंकि आपने मुझे इस कार्यक्रम में, मिसाल कार्यक्रम में मुझे शामिल करने के योग्य समझा, उसके लिए मैं फिर से आपको धन्यवाद देती हूँ।
1: सखियों, अभी हमने मिसाल क्रम में अर्पणा जैन से मीनू जैन की बातचीत सुनी, जिसे आपने भी जरूर पसंद किया होगा। सखियों, आज शुक्रवार है, यानी टिप्स बताने का दिन। सखियों, केले हम सभी खाते हैं और इसके फायदों को भी जानते हैं, लेकिन इसका छिलका फेंक देते हैं, पर इसके भी बहुत फायदे हैं। सखियों, केले के छिलके में साइट्रिक एसिड होता है, जो दांतों के पीले दाग से छुटकारा पाने में मदद करता है। छिलके को अंदर की ओर से दांतों पर हल्के हाथ से रगड़ें, 1 से 2 मिनट के बाद ब्रश कर लें, इससे दांत साफ भी होंगे और चमक भी बढ़ेगी। सखियों, केले का छिलका मुहासों को ठीक करने का एक शानदार तरीका है। पहले चेहरे को धोकर सुखा लें, फिर मुहासों वाली जगह पर छिलके के अंदरूनी भाग से मसाज करें, लगभग 15 से 20 मिनट बाद चेहरा धो लें। सखियों, मच्छर या किसी कीड़े के काटने से बहुत ज़्यादा खुजली होने पर केले का छिलका रगड़ लें, खुजली ठीक हो जाएगी। तो देखा सखियों, केले के छिलके के कितने फायदे हैं, आप भी इन्हें ज़रूर आजमा कर देखना। और अब बारी है गीत सुनने की, तो सुनते हैं ये मस्ती भरा गीत।

इसी गीत के साथ सखियों, आज के नारी जगत कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो रहा है, तो कार्यक्रम को संपन्न करने की अपनी सखी मीनू को दे इजाजत। नमस्कार।

0: अभी नारी जगत कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा था एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी खंडवा है। दिन के 11 बजे हैं। अब राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
1: की सुरीली धड़कन

रंग तरंग कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राजकुमार रिजवी की आवाज से। कलाम है बशीर बद्र का।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे ये गजल। कलाम था जिगर मुरादाबादी का। विविध भारती से यह है कार्यक्रम रंग तरंग।

भीड़ फिल्म का ये सोहर आप सुन रहे थे। रोमी के स्वर में शकील आजमी के बोल थे, अनुराग साइकिया का संगीत था। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं गीत, गजलें, कव्वालियां और नॉन फिल्म एल्बम के कुछ गीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के

0: तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना भी काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मिताली सिंह की आवाज थी, एल्बम का नाम था नशे मन। विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। राजेश रेड्डी की गजल पंकज उधास की आवाज में, एल्बम का नाम नबील।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती
2: आकाशवाणी समाचार के साथ, मैं लवलीन निगम।

0: भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है।
1: After a detailed assessment,
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
3: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4-लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपात

0: परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। घरेलू शेयर बाजार में संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 121 अंक के उछाल के साथ 74,461 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम की शुरुआत मोहम्मद रफी की आवाज से, साहिर लुधियानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म मन की आंखें।

ममता फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन। ये दूसरा आदमी फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हैं।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अरे सुनो।
1: हाँ?
0: सावधान रहना।
1: क्यों, क्या हुआ? कोई चोर डाकू आगे हैं क्या?
0: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
1: अच्छा,
0: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
1: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ! आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
0: क्लास लगाने की क्या जरूरत है?
1: तो?
0: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
1: अच्छा,
0: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
1: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
0: क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे।
2: सखी सहेली।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

कामजोर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में इंडीवर के बोल थे। डाक फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: डाक फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। इस कार्यक्रम का स्वरूप तो आपको पता ही चल चुका है, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए हम संक्षेप में बता देते हैं। वैसे ये जो इबारत लिखी जाती है, आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मजा ही इस बात में है कि गानों की आपकी हमारी लिस्ट मैच कर जाए। मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं, तो फेसबुक पोस्ट पर आप बता सकते हैं, क्या पता वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाए। तो फिर ध्यान से पढ़ लीजिए कविता। वैसे बहुत सारे श्रोताओं ने पढ़ ली है और लिखा भी है कि आज की इबारत में तो कविता है। भाई, कविता थोड़ी कठिन है, मुश्किल हो रहा है अंदाज़ा लगाना, तो यही तो बात है। पहेली अगर बड़ी आसानी से समझ में आ जाए तो वो पहेली ही क्या। तो चलिए हम वो इबारत पढ़ देते हैं कविता की शक्ल में। वो थी पहाड़ों वाली लड़की, चीड़ और देवदार की छांव में पली, बुरांश के फूलों सी दहकती, किसी खूबसूरत झरने सी चंचल। पेड़ पौधों और जंगलों के बीच वो हिरनी सी भरती कुलाचे, पगडंडियों पर उसके पांव पड़ते तो धरती के आंचल में एक मधुर कंपन जाग उठता। खुली वादियों में चलते हुए वो देखती एक ख्वाब, नीले अंबर के पार वो देखती तो बारिश की बूंदें जैसे प्रेम की माला पिरोती। प्यार के राग पर वो गुनगुनाती, जहां बादलों के पंखों पर बैठकर मन उड़ने लगता। वो आसमान की ओर निहारती, कहीं दूर बादलों की आंख छलक पड़ती। बारिश उतरती पहाड़ों की देह पर तो झरने नदी का हाथ थामे गुनगुनाने लगते कोई खूबसूरत गीत। हवा उसकी जुल्फों को सहला कर गाती कोई सुरीला नगमा, और जब उसकी जुल्फें पवन के संग थिरक उठती तो घाटियों में गूंजता प्रेम का दर्द भरा राग। उसकी आंखों में उतर कर रच देती सिंदूरी कविताएं, वो फूलों से नहीं उनकी खुशबू से प्रेम करती थी। नदियों से नहीं उनके सफर से, और आकाश से नहीं उसकी असीम उम्मीदों से, उसके दिल में अजब सा संसार था। एक पूरा जंगल सांस लेता था उसके दिल में, नदियों का संगीत, पहाड़ों की चुप्पी। वो थी पहाड़ों वाली लड़की, जिसकी हंसी में झरनों की कलकल थी, जिसकी आंखों में बादलों की नमी थी। अब भाई, बहुत सारे शब्द मिल गए आपको, तो आज तो ऐसे लगता है कि शब्दों कि माला पिरोई जाएगी और ढेर सारे शब्द होंगे, उसमें मुझे ही मुश्किल पड़ जाएगी कि कौन सा वाला गाना सुनवाएं, कौन सा वाला नहीं। चलिए फिलहाल ये गाना सुनिए और देखिए कि इसमें कौन सा शब्द आया है। गीतकार संगीतकार का नाम भी आपको बताना है। फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म, मोहम्मद रफी की आवाज़।

तो भाई ये गाना आपने सुना, फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गीतकार, संगीतकार का नाम हमने पूछा था, कुछ श्रोताओं ने जवाब दिया है मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार ओपी नैयर। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियाँ आई हैं और ज़्यादातर श्रोता ये कह रहे हैं कि बहुत दिनों बाद ममता जी इस कार्यक्रम में आई हैं, पहली बार आई हैं और कहाँ गायब थी। भाई गायब तो कहाँ थे, हम तो ऑन एयर होते थे और आपसे गुफ्तगू होती थी, अभी हाल में सजीव प्रसारण आपने देखा हिमानी जी के साथ, गायब कहीं नहीं थे, बस थोड़ी सी मसरूफियत हो जाती है तो कुछ प्रोग्राम छोड़कर कुछ नए प्रोग्राम करने पड़ जाते हैं। बहरहाल चलिए ये टिप्पणी हम पढ़कर सुनाते हैं। हमारी एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज की इबारत एक खूबसूरत कविता है, तो मैंने सोचा मैं भी एक कविता रच देती हूँ, साझा कर देती हूँ। इन्होंने आगे लिखा है कि बहुत पहले पढ़ी थी, मुझे याद नहीं इसके रचयिता कौन है। भरे जंगलों के बीचों बीच न कोई आया गया जहाँ, चलो हम दोनों चले वहाँ, जहाँ दिन भर महुआ पर झूले, रात को चू पड़ते हैं फूल, जहाँ दिन भर महुआ पर झूल, रात को चू पड़ते हैं फूल, बांस के झुरमुट में चुपचाप जहाँ सोए नदियों के कूल, भरे जंगलों के बीचों बीच न कोई आया गया जहाँ, चलो हम दोनों चले वहाँ, विहग मृग का हो जहाँ निवास, जहाँ अपने धरती आकाश। कविता आगे भी इन्होंने लिखी, काफ़ी लंबी है और बहुत सारे श्रोताओं की चूँकि टिप्पणियाँ आ रही तो हम चाहते हैं कि आप संक्षेप में लिखें ताकि बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणी शामिल हो सके। एक श्रोता ने लिखा है कि आज इबारत रूपी कविता बहुत पसंद आई, पर्यावरण दिवस की झलक दिख रही है, आपको नमस्कार। एक श्रोता ने लिखा है कि हर पंक्ति गुनगुनाते हुए बता रही है आज के सुंदर सुहाने सफ़र में एक खूबसूरत लड़की, पहाड़ देवदार के बगीचे में बहार के झरना, नदी चलता नीले नंबर अंबर, चांद जवाए हमको तरसाए, बारिश देह पर पड़ते टिप टिप बरसा पानी, वगैरह वगैरह बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। मतलब इतने सारे गानों के बोल लिख डाले हैं कि अब हमें मुश्किल पड़ रही है कि पूरा कैसे पढ़ें। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की काव्य रूपी इबारत विश्व पर्यावरण दिवस के लिए है। इबारत में काल्पनिक पहाड़न युति का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरी गई है। बहुत सारे श्रोताओं ने ये अंदाज़ा लगा लिया है कि इसमें कहीं प्रकृति की छटा भी है, लेकिन कहीं उन जो वो लड़की है ख्वाबों वाली, पहाड़ों वाली लड़की, उसके साथ जो शब्द हैं उन शब्दों पर गाने लिए गए हैं और उस इबारत से आपके मन में जो कविता आ रही है वो भी आप लिखिए और आपके जहन में जो गाने आ रहे हैं वो भी सुझाइए, हो सकता है आपका गाना हम शामिल कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गुमराह फिल्म का गाना सुनवाते हैं, तो बताइए कि इस कविता से कौन सा वाला शब्द इसमें शामिल है। हाँ, पिछले गाने में शाम शब्द आया था जो हमने चुना था, वो हम आपको बता रहे हैं। तो गुमराह फिल्म के गाने में इस कविता से कौन सा शब्द आ रहा है और साथ में आपको बूझना है कि कौन है दो कलाकार जो खूबसूरत वादियों में गा रहे हैं ये गाना।

ताकत नहीं है। कोच्ची में चारों तरफ पेड़ झूम झूम कर बादलों का स्वागत कर रहे हैं। सचमुच यहाँ हम मुंबई में कोई पौधा रोपते हैं तो बस 2 महीने या मुश्किल से 3 महीने बाद वो मुरझाने लगता है, क्योंकि मिट्टी हमें सही नहीं मिल पाती है। फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं। माली काका को बुलाते हैं और पौधे नए लगवाते हैं, उनसे मिट्टी नई बदलवाते हैं। तो क्या आप भी ऐसा कुछ करते हैं? अगर करते हैं तो ज़रूर बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत प्रकृति से जुड़ी, सुंदर नज़ारे, पहाड़, पौधे, नदी, झरने, खुली वादियाँ, आसमान, बादल, बरसात, फूल, धरती, जंगल, पशु पक्षी, प्रेम गीत, प्रेम का दर्द, सुबह की पहली किरण, शाम की सिंदूरी, वातावरण वाली आवाज, मीठी आवाज। तो आपने गाने कौन से बताए? गाने तो बताए नहीं, गाने भी तो बताते चलिए। जैसे अभी हमने जो गाना सुनवाया गुमराह फिल्म का, हवाएं थी और फिजाएं थी, और इसके प्यार था, प्यार शब्द भी आया है इस कविता में। तो अब जो अगला गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, जरा उसमें ढूंढिए कि कविता में कौन सा शब्द आया था, वो कविता और गाना मैच हो रहा है कि नहीं। आज और कल फिल्म का नाम है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गीतकार और संगीतकार का नाम आपको पूछना है।

0: ये फिजाए बुला रही है तुम्हें।
1: आज और कल फिल्म का गाना था मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार थे रवि। बहुत आसान सवाल था और सभी श्रोताओं ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती के सुरीले सफ़र में जहां एक पहाड़ी लड़की वादियों में घूमती, झरनों में नहाती, फूलों की घाटी में समा जाती है, उसके गीत उन वादियों में गूंज रहे हैं, वो एक प्रेमी की

दो दुनी चार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था स्वर किसका है, संगीत किसका है, गीत किसका है। किशोर कुमार की आवाज़, गुलजार के बोल, हेमंत कुमार का संगीत है। और कौन से शब्द के लिए ये गाना सुनवाए ये भी ज़रा बताते चलिए। एक श्रोता ने लिखा है कि इस गीत के गीतकार गुलजार हैं और ये मेरा पसंदीदा गाना है, अभिनेता किशोर कुमार है और बहुत पसंद है ये गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपको देखकर फेसबुक पेज पर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, इतनी बड़ी इबारत उसमें इतना कुछ समाया हुआ है कि इसके लिए एक घंटे का समय बहुत कम पड़ जाएगा। चलो देखते हैं हमारी प्यारी रेडियो सखी कैसे निभाती हैं। प्रोग्राम तो प्यारा होने वाला है क्योंकि एक तो आप और भी बहुत सारी बातें लिखिए भाई, तारीफ के अलावा आप वो बातें लिखिए जो पर्यावरण से जुड़ी हैं। और आप, हमने आपसे पूछा था कि क्या आपने कभी कोई पौधा रोपा है या पौधे की देखभाल आप करते हैं, पेड़ों की देखभाल करते हैं, पर्यावरण के लिए आप निजी स्तर पर क्या कुछ करते हैं। जब हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, नदी के किनारे, समंदर के किनारे जाते हैं तो वहाँ एक खाने पीने की चीज़ें ले जाते हैं और एक दो रैपर वहीं पर फेंक के चले आते हैं। ये नहीं सोचते कि ये जो पानी है, नदी का पानी है, इसमें जाकर वो इकट्ठा हो रहा है। यहाँ तक कि समंदर की लहरों के साथ बहुत सारा कचरा आता है। जब हम मुंबई में किसी बीच पर जाते हैं या किसी भी समंदर के किनारे कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ पर जब पैरों में पॉलीथीन अटकता है तो कितना बुरा लगता है ना। तो बस ऐसे ही सोचिए कि वो जो पानी है समंदर या नदी का, उन्हें भी बुरा लगता होगा। तो साफ़ सफाई का ख्याल भी रखें। फ़िलहाल सुने ये गाना।

0: दिल्ली का ठग फिल्म का गाना, आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाजें, एसएच बिहारी के बोल, रवि का संगीत। अब बहुत सारे श्रोताओं ने यही बात लिखी है, अब गानों के बोल भी आए हैं श्रोताओं की ओर से, और ज़्यादातर श्रोताओं ने ये बात लिखी कि आज प्रकृति की बातें होंगी, आज की इबारत से समझ में आ रहा है। भाई अपने अनुभव साझा कीजिए, पर्यावरण से जुड़े हुए गाने साझा कीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की भीगी भागी सी, वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने पंछी बनूं उड़ती फिरूं ये लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है पर्वत के पीछे चंबेदा गांव, हुस्न पहाड़ों का, और भी गानों की लंबी फेहरिस्त भेजी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपने बड़ी सुंदर कविता लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि कविता लंबी है लेकिन बड़ी प्यारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि घर को पृथ्वी का मित्र बनाएंगे, जल बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, कचरा कम करेंगे, बच्चों को प्रकृति से जोड़ेंगे, उपभोग की बजाय संतुलन का जीवन अपनाएंगे, क्योंकि अंततः पृथ्वी को बचाना किसी दूरस्थ अभियान का विषय नहीं है। एक श्रोता कहते हैं कि हम चाहे जितनी भौतिक दुनिया में जी लें लेकिन सुकून, शांति, शक्ति और ठहराव हमें प्रकृति के पास जाने पर ही मिलता है। बिल्कुल सही फरमाया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मुझे लगता है कि प्रकृति से बढ़कर सच्चा दोस्त कोई नहीं। ये हमें शुद्ध हवा देती है, ठंडी छांव, सुंदर फूल देती है और जीवन जीने का आधार भी। इसलिए जब भी मैं किसी पेड़ को देखती हूँ तो लगता है कि वो बिना कुछ कहे हमें जीने का तरीका सिखा रहा है। देते रहो, मुस्कुराते रहो, दूसरों के काम आते रहो। पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है सामूहिक रूप से। चलिए अब गीत फिल्म का गीत सुनते हैं, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। अब गीतकार संगीतकार का नाम तो आप बता ही सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि कौन है कलाकार जिन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना। फेनिल झरना है, सुंदर कुदरत के नज़ारे हैं, बताइए कलाकारों के नाम, हीरो हीरोइन।
1: मेरो आ तेरे

0: फिनिल झरने सुंदर कुदरती नज़ारों के बीच गा रहे हैं ये गाना राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा पर्दे पर। हमने ये सवाल आपसे पूछा था और श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया, एक भी गलत जवाब नहीं दिखा। एक श्रोता ने लिखा है कि खेतों को काटकर उस ज़मीन पर मकान बनाए जा रहे हैं जिससे मानव और पशु पक्षी दोनों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है जिससे गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। और बहुत सारे श्रोता अब गानों के बोल लिख रहे हैं शब्द ढूंढ ढूंढ कर। एक श्रोता ने लिखा है कि इसमें तो जुल्फ शब्द भी है लेकिन उसके गाने नहीं लिखे हैं, जुल्फ वाले गाने कौन से, ज़रा वो भी तो बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि धरती का श्रृंगार, पेड़ पौधे, नदी तालाब ही तो हैं, इन्हें बचाने की बजाय इनका दोहन हो रहा है। मेरे दरवाजे पर नीम और जामुन के पेड़ बड़े पेड़ हैं, गांव के 10-20 लोग हमेशा दरवाजे पर आकर बैठते हैं और जो जामुन में फल आते हैं तो हम लोग जामुन खाने तोड़ने के लिए किसी को मना नहीं करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और नीम के पेड़ पर झूले भी तो डलते होंगे, अब सावन जब आएगा, जब सावन के आने पर झूले पड़ेंगे, झूले पर फिर कजरी गाई जाएगी, वो भी आप लिख सकते हैं कि अगर आपके आसपास कोई पेड़ है जिस पेड़ पर झूले डाले जाते हैं, बता सकते हैं आप अपने इर्द गिर्द पर्यावरण से जुड़ी हुई कोई बात। चलिए अब सुनते हैं ये गाना, फिल्म है तेरे घर के सामने, बताइए कौन है इसमें कलाकार।
1: मर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे।
0: गीतकार का नाम भी बताइए जरा, संगीतकार का नाम भी, कौन है हीरो।

तेरे घर के सामने फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी के बोलते सचिन देवबर्मन का संगीत था और तीनों सवाल के जवाब श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही आए हैं। और श्रोताओं ने लिखा है देव आनंद नूतन पर फिल्माया गया था ये गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस के लिए इबारत में काल्पनिक पहाड़ी युवती का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरी गई है, जहां नीले अंबर संग अटखेलियां करती, पर्वतों कलकल करती, अनवरत बहती झरनों संग सुंदर वसुंधरा की खूबसूरती का बखान है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बरसों पहले यहां पेड़ थे फल फूलों से लदे हुए, कई टहनियां थीं जो जिस पर झूले बंधे हुए थे, सबके सब कहां खो गए, लगता है लोग बहुत बड़े हो गए। क्या बात है, ये सवाल तो खुद से ही पूछना चाहिए कि ये सारे पेड़ पौधे कहां हमने कतर दिए, और अगर कट गए वो पेड़ तो हमने लगाए क्यों नहीं। ये सवाल अगर हम खुद से पूछें तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और हरियाली धरती पर कायम रहेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति की गोद में जाना किसे नहीं अच्छा लगता, वो जहाँ पहाड़ हो, जंगल हो, नदी हो, वन्य जीवों की अटखेलियाँ हो, प्रकृति से सुंदर कुछ भी नहीं होता, इसलिए थोड़ा समय निकाल कर प्रकृति के करीब अवश्य जाएं। लेकिन ये जो मोबाइल नाम का यंत्र है ना, इससे दूर जाना पड़ेगा, तब आप प्रकृति की गोद में बैठ सकते हैं। सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल उठाकर देखते हैं कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं है, या फिर खिड़की खोलकर शुद्ध हवा लेते हैं, या फिर अपने गमले में लगे पौधों से बतियाते हैं, या फिर सोचते हैं कि हम भी ज़रा थोड़ी क्यारी में पौधों की संख्या बढ़ा दें। चलिए ये सवाल खुद से पूछिए और अब सुनिए सेहरा फिल्म का ये गाना। किस लिए ये गाना बजाया, कौन सा शब्द है इबारत में, ज़रा ढूंढिए और बताइए हमें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। संगीतकार का नाम जरा बताइए, कौन है संगीतकार?

सेहरा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल, रामलाल का संगीत था। हमने संगीतकार का नाम पूछा था, कुछ श्रोताओं ने गलत बताया है, कुछ श्रोताओं ने सही बताया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि प्रकृति हमें न केवल भौतिक संसाधन देती है बल्कि मानसिक शांति और आरोग्य भी देती है। प्रकृति के साथ संवाद करना हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण मामलों पर विस्तृत दृष्टिपात करने की एक क्षमता प्रदान करता है। हम प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुधा पहाड़ी लड़की का सौंदर्य सादगी, प्राकृतिक परिवेश और संघर्ष का एक जीवंत मिश्रण होता है। इनकी तुलना अक्सर खिलते हुए बुरांश के फूलों, कलकल बहती नदियों और पहाड़ों की स्वच्छ हवाओं से की जाती है। उनके रूप सौंदर्य में कृत्रिमता नहीं बल्कि प्रकृति की सहजता होती है। पर्वतीय बालाओं का पहनावा भी प्रकृति की गोद से जुड़ा हुआ होता है। रंग बिरंगे परिधान जो पहाड़ों के बदलते मौसम के अनुकूल होते हैं, इनका सौंदर्य केवल शारीरिक न होकर बल्कि परिश्रमी और संघर्षशील स्वभाव का प्रतिबिंब होता है। और आपकी इबारत से हमने इस चित्र को महसूस किया। चलिए अब आगे बढ़े और सुने आह फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार संगीतकार का नाम जरा बताइए और साथ में ये भी बताइए कि किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, और इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अपनी उदासी और अपना दर्द हम जोड़ लेते हैं गानों के साथ, रेडियो के साथ, विविध भारती के साथ। बहुत सारे श्रोता ये कहते हैं।

फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज़, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन थी। और ये हमने आपसे सवाल भी पूछा था और साथ में हमने कलाकारों के नाम भी पूछे थे कि इन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, राज कपूर और नरगिस। श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज जो गाने हमें समझ में आए हैं आपकी इबारत से, वो है झूमे रे नीला अंबर, झूमे रे धरती और बारिश की बूंदें बरसने लगी, ये गाना, और नील गगन की छाँव में पंछी बन उड़ जाता है। और एक गाना है, एक सुनहरी शाम थी, आओ प्यार करें फिल्म का नाम, और प्यासी हिरनी बन बन धाए, ये वाला गाना भी लिखा है, जो बहुत दिनों बाद इसका जिक्र आया है। और भी बहुत सारे गाने लिखे, जिनमें से कुछ गाने हम आपको सुनवा चुके और कुछ गाने हमारे इस प्लेलिस्ट में हैं, लेकिन शायद वो गाने हम सुनवा नहीं पाएंगे क्योंकि एक गाना अभी और बाकी है। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्यावरण दिवस है, हमें गांव, नदियां, नाले सब कुछ स्वस्थ रखना चाहिए, पर्यावरण और पर्यटन दोनों हमें इनका हाथ थाम कर चलना चाहिए, लेकिन आज जहां लोग पर्यटन को जाते हैं वहां के पर्यावरण को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। आज के सुरीले सफ़र में रेडियो सखी ने नदियां, पहाड़ इन सब का जिक्र छेड़ा है। अब देखना सुनना है कि इसमें मनोरंजन कितना होता है और संदेश कितना होता है। तो आप बताइए क्या था, हमें लगता है कि संदेश और मनोरंजन का सम्मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है। सुनिए कि प्रोग्राम का आखिरी गाना।

गाने में हीरो हैं जिन्हें चॉकलेटी हीरो कहा जाता था। नाम बताइए जरा और हीरोइन का नाम भी बताइए। हीरो और हीरोइन का नाम आपको बूझना है।

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गाना था और हमने कलाकारों के नाम पूछे थे, साधना और जॉय मुखर्जी। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थी, राजा मेहदी अली खां के बोल थे और यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना, सुरीला सफ़र। ये सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 31वीं कड़ी।

बंगाल में पद्मा और मेघना इन दो नदियों के संगम पर बसे बारिसाल शहर में कांग्रेस के युवाओं का अधिवेशन 14 और 15 अप्रैल 1906 को आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन के लिए अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, भूपेंद्रनाथ बसु, मोतीलाल घोष और बिपिन चंद्र पाल जैसे अनेक नामी गिरामी नेता आने वाले थे। अश्विनी कुमार दत्त की पहल से इस अधिवेशन में हजारों युवक बड़े उत्साह से शामिल होने के लिए बारिसाल की ओर आ रहे थे। अश्विनी कुमार दत्त कवि भी थे। बारिसाल के इस अधिवेशन के लिए उन्होंने विशेष रूप से एक कविता रची थी। आए रे सब भारतवासी, आए सब मिले, प्रणामी भारत माता चरण।

आओ सब भारतवासी आओ, सब मिलकर भारत माँ के चरणों में शीश नवाओ। आओ आओ मुसलमान भाइयों, आज जाति पाति का कोई झगड़ा नहीं है, मिलकर करें वो कार्य जो सही है। इसी धूल में है श्री राम हमारा और इसी धूल में है अकबर तुम्हारा। बंग भंग विरोधी आंदोलन के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर के लिखे गीत लोग गाने लगे थे।

0: भजे।
1: अपनी एक और कविता में अंतिम पंक्ति में वंदे मातरम शब्दों के साथ वे लिखते हैं, भैया देश का ये क्या हाल, खाक मिट्टी और जौहर होती सब, जौहर है जंजाल, बोलो।

0: अधिवेशन विस्फोटक होगा इसका अंदाजा लगते ही बंगाल के गवर्नर फुलर ने इस अधिवेशन को दबा देने के लिए बड़ी तैयारी शुरू की। सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस निकालने और वंदे मातरम बोलने पर उन्होंने पाबंदी लगा दी। अगर यह पाबंदी तोड़ी गई तो पूरा अधिवेशन रद्द करवा देने की धमकी भी उसने दी। पूरे शहर में एक बड़ी गोरखा पलटन तैनात कर दी। एक दिन पहले ही नियोजित अध्यक्ष अब्दुल रसूल, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, भूपेंद्रनाथ बसु और हिरेंद्रनाथ दत्त नाव से बारिसाल आए। वंदे मातरम पर पाबंदी के कारण प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत शांतिपूर्वक किया।
1: वंदे मातरम पर पाबंदी यानी लड़ाई से पहले ही हाथों से हथियार छीन लेने जैसा था। युवा तो बेहद क्रोधित हो गए, मगर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कानून के जानकार होने के कारण उन्होंने युवकों को शांत किया। स्वयं कृष्ण कुमार मित्र सचिंद्रनाथ बोस भी बहुत नाराज हुए और वे बोले,
0: वंदे मातरम पर पाबंदी है तो हम इस सम्मेलन में भाग ही नहीं लेंगे।
1: अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष तो बोले,
2: मैं तो वंदे मातरम गाऊंगा ही, चाहे इसके लिए सिर कट जाए तो भी चलेगा। इस सिर की कीमत वंदे मातरम से बड़ी नहीं है।
1: बिपिन चंद्र पाल, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर, कवि काली प्रसन्न विशारद आदि मान्यवर भी बारिसाल पहुंच चुके थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अधिवेशन में आए प्रतिनिधियों को समझाया। वे बोले,
3: जुलूस में

0: के लिए सिर कट जाए तो भी चलेगा। इस सिर की कीमत वंदे मातरम से बड़ी नहीं है।
1: बिपिन चंद्रपाल, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर, कवि काली प्रसन्न विशारद आदि मान्यवर भी बारीसाल पहुंच चुके थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अधिवेशन में आए प्रतिनिधियों को समझाया। वे बोले,
2: जुलूस में वंदे मातरम शब्दों पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन सम्मेलन स्थल पर यह पाबंदी नहीं है। सम्मेलन सुचारू रूप से होने के लिए यहाँ के नेताओं ने अगर प्रशासन को वचन दिया है तो हम सभी को उसका पालन करना चाहिए।
3: परंतु ये सब तूफान से पहले की शांति थी। 14 अप्रैल का सूरज निकला और वंदे मातरम के बिल्ले लगाए हुए प्रतिनिधि, हजारों लोग जुलूस के रूप में राय बहादुर की हवेली से सभा स्थल की ओर निकले। माहौल का तनाव कुछ हद तक दूर हुआ। जुलूस में वंदे मातरम शब्दों पर पाबंदी होने के बावजूद यह पाबंदी जानबूझकर तोड़नी है ऐसा सभी ने तय किया था। पुलिस लाठीचार्ज या गोलीबारी करेगी, शायद रक्तपात भी होगा। इसका एहसास होने के उपरांत लोग निडर होकर सड़कों पर उतरे थे।
1: आम लोगों से लेकर लोकप्रिय नेताओं तक सभी एक ही भावना से जुलूस में शामिल हुए। इस अधिवेशन के नियोजित अध्यक्ष बैरिस्टर अब्दुल रसूल सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस जुलूस के आगे पैदल चल रहे थे। जुलूस में युवकों ने उत्साहपूर्वक वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए, मगर पहले से ही जो तय था उसके अनुसार फुल्लर के आदेश पर गोरखा पलटन ने निहत्ते भीड़ पर हमला कर दिया।
3: इस हमले के लिए फुल्लर ने उन्हें 6 फुट लंबी एक मोटी लाठी दी थी। यह रेगुलेशन लाठी अंग्रेजों के बारिसाल में दमन का प्रतीक बन गई। दोपहर 2 बजे यह जुलूस निकला और यह जुलूस ठीक से आगे बढ़ पाता उससे पहले ही जुलूस के पिछले हिस्से की तरफ से फुल्लर की सेना ने हमला कर दिया। बहुत कठोरता से इस लाठी के वार आंदोलनकारियों पर होने लगे। लाठी की मार के साथ वंदे मातरम का घोष और भी बड़ा होता गया। उसके साथ ही मागो जाए जन जीवन चले, यह गीत भी लोग ऊंचे स्वर में गा रहे थे। जीवन चले, मागो जाए।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर हैं। सूरत में वे 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, बिजली और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और 220 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं शाम को दमन में नामो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल और नामो अस्पताल सहित करीब 3,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के लिए 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एयर ट्रंक कंपनी भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करेगी। श्री मोदी ने कहा कि यह देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। उन्होंने कहा कि इससे भारत क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक केंद्र के रूप में और मजबूत होगा तथा रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने पहले समारोह में 66 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है। इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कार स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार कला, विज्ञान, खेल, चिकित्सा और सामाजिक कार्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में विश्व पर्यावरण दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में एक पेड़ मां के नाम 2.0

0: दान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 8 श्रेणियों में 11 राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार भी प्रदान किए गए। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा और रोपे गए पौधों की जियो टैगिंग कर उनकी निगरानी की जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में भी पौधरोपण संगोष्ठी और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा,
1: आज के समय में पर्यावरण को लेकर हमारी सनातन संस्कृति की जो मूल अवधारणा या जीवन पद्धति थी, सृष्टि में हमारे कदम कदम पर हर शास्त्र में विस्तार से इसमें व्याख्या भी कही गई। अगर हम अपने इस चारों तरफ के वातावरण को देखें तो हमारी तो कोई भी पूजा पद्धति संध्या वंदन दीप प्रज्वलन के साथ सूर्योदय देखेंगे तो सूर्य अर्घ्य देने के साथ अगर भगवान को भोग भी लगाएंगे तो तुलसी दल के बिना भोग नहीं लगता है।
0: विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बैतूल में माचना नदी घाट पर केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री दुर्गादास उइके की मौजूदगी में पौधरोपण और जल संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं रायसेन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद पौधरोपण किया गया, जबकि गुना में एनसीसी इकाइयों ने पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली। जबलपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। वहीं सतना के बगहा में जिला स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंदौर में 9 जून से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने कल इंदौर पहुंचकर आयोजन स्थलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां आज भी जारी हैं। झाबुआ में सुबह तेज बारिश हुई, जबकि सीहोर रायसेन और कई अन्य जिलों में भी मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने आज भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के 45 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नीमच मंदसौर श्योपुर सहित 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। केरल में मानसून 4 जून को पहुंच चुका है और प्रदेश में मानसून के 20 से 22 जून तक के बीच दस्तक देने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में मलेरिया निरोधक माह के तहत कल बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है संदेश के साथ एक प्रचार रथ को रवाना किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सदस्य प्रियंका नुंगो ने नर्मदापुरम प्रवास के दौरान विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए दिव्यांगजनों को कौशल विकास प्रशिक्षण तथा बैंक ऋण से जोड़ने के निर्देश दिए। प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग प्रोग्राम 3.0 के आवेदन आमंत्रित किए हैं। इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में स्नातक 18 से 30 वर्ष तक के युवा 16 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा 1 जुलाई को होगी। और प्रदेश में मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित की गई है। इस दौरान प्रदेश की सभी नदियों और जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, उसके उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि छोटे तालाब जिनका किसी नदी से कोई संबंध नहीं है उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे।

0: जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदम द्वीपों पर बहुउद्देश्यीय जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयरट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
1: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2,00,00,000 से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
2: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे यस एंड माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
3: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरणीय संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
4: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं।
5: लोकल फॉर भोपाल है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
6: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामेगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। कार्यक्रम की शुरुआत वासना फिल्म के गाने से। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। साहिल लुधियानवी के बोल।

0: शैलेंद्र का लिखा गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म थी गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ेबो। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी का संगीत था। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज़ थी, साहिर लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था, फिल्म थी ताजमहल। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम ख़त्म होता है। प्रोग्राम का सफ़र आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, जब हम किसी से मिलते या बात करते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में, उसकी सोच के बारे में पता करने के लिए एक छोटी सी मुलाकात ही काफी होती है। वो एक छोटी सी मुलाकात अक्सर ताउम्र के लिए हमें एक प्यारा सा दोस्त दे जाती है। बेपरवाह अल्हड़ सवालों और जवाबों से परे होती है ये मुलाकात। कई बार तो रोज रोज मिलने वालों से वो दिल की बात नहीं हो पाती जो एक छोटी सी मुलाकात से बने दोस्त से हो जाती है। इन छोटी छोटी मुलाकातों से ही रिश्ते उम्र दराज होते हैं। तो हाँ, मुलाकातों का सिलसिला चलते रहना चाहिए और हर मुलाकात के लम्हों की अहमियत को समझना चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी मुलाकातों की यादों से पूरा जीवन खुशबू से भर जाता है। तभी तो हमें भी रहता है ना इस छोटी सी मुलाकात का इंतजार, जो हेलो सहेली के माध्यम से हमें हमारी सखियों से मिलवाती है और दे जाती है यादों में सहेजने वाले ढेर सारे खूबसूरत पल। तो खत्म हुआ इंतजार, देखते हैं कौन और कहां से है आज की हमारी पहली कॉलर।
1: हेलो।
0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: मैं भावना बोल रही हूँ, आदमपुर बिहार से, हरियाणा से।
0: अच्छा, हरियाणा से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैम, मैं घर पे ही अपना बुटीक है मेरा, मैं सिलाई करती हूँ।
0: यानी आपका बढ़िया कपड़ों का है ना?
1: हाँ जी।
0: तो इस समय अच्छा चल रहा है?
1: हाँ जी।
0: आप महिलाओं के कपड़े केवल बनाती हैं या सब मिक्स?
1: हाँ जी, महिलाओं के बनाती हूँ मैम, बच्चों के और महिलाओं के।
0: अरे,
1: सारी गारमेंट्स बनाती हूँ मैम।
0: बहुत अच्छी बात है, आप अपना खुद का काम कर रही हैं। और बताइए, आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहूंगी आज तेरा मेरा साथ है फिल्म का, तेरा मेरा साथ है।
0: बहुत प्यारा गाना है। तो चलिए सुनवाते हैं आपको ये वाला गीत।

0: नमस्ते
1: नमस्ते, कौन बोल रही हैं आप और कहाँ
0: मनका
1: से?
0: सिंह बोल रहे हैं, मनकापुर गोंडा उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं आपसे।
1: जी अच्छा, तो आप बताइए अब कि आप क्या कर रही हैं?
0: मैम हम पढ़ाई तो पूरी कर चुके हैं, आईटीआई कर रहे हैं और मैम घर का काम करते हैं और आपका प्रोग्राम सुनते हैं। रेडियो सुनने का शौक बहुत ज्यादा है।
1: अरे वाह, बहुत ही अच्छा शौक है आपका। और
0: हाँ मैम,
1: तो आप जो पढ़ाई कर रही हैं उसमें आपको अच्छा पूरा इंटरेस्ट आता है, पूरी दिलचस्पी रहती है उसमें?
0: हाँ मैम रहती है, लेकिन इस समय गर्मी ज्यादा हो रहा है मैम, तो कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा, बस घर पे ही अपना तैयारी कर रहे हैं।
1: तो आपको मिल जाता है समय रेडियो सुनने का?
0: मैम मिल जाता है मैम, आज बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे तो आज आके मेरा कॉल लग गया, मेरा इंतजार खत्म हो गया। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके।
1: बधाई हो आपको बहुत ज्यादा, और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और साथ ही रेडियो भी सुनते रहिए। और आप अपने पसंद का कोई गीत बताइए जो आप सुनना चाहती हैं।
0: मैम मूवी का नाम है इज्जत और गाने की बोल है क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फिक्र छिपी रहे।
1: अच्छा, अरे वाह, बड़ी अच्छा गाना है।

0: बधाई हो आपको बहुत ज़्यादा, और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और साथ ही रेडियो भी सुनते रहिए। और आप अपने पसंद का कोई गीत बताइए जो आप सुनना चाहती हैं।
1: मैम मूवी का नाम है इज्जत और गाने की बोल है क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे।
0: अच्छा, अरे वाह, बड़ी अच्छा गाना है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: कौन बोल रहा है?
1: मैं बरगढ़ जिला उड़ीसा से सन प्रभाकर बोल रही हूँ।
0: अरे वाह, उड़ीसा से बोल रही हैं आप, तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: जी मैं तो घर में हूँ, अभी तो शादी नहीं हुई और घर का काम काज करती हूँ और सभी कार्यक्रम सुनती हूँ आकाशवाणी के, सभी केंद्र के कार्यक्रम सुनती हूँ।
0: पढ़ाई आपने करी है? पढ़ाई करती हैं?
1: हाँ, पढ़ाई तो खत्म है, कब से मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है।
0: अच्छा, तो बताइए आपने क्या किया है?
1: मैं 10वीं पास हूँ जी।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी अभी अभी तो हमारे जो सिंगर है सुमन कल्याणपुर जी, उनका निधन हो गया है, तो
0: हाँ।
1: उनकी याद में एक गाना सुनेंगे उनकी आवाज में। तो जो भी उनके जो भी फिल्में हैं, मुझे तो याद नहीं फिल्मों के नाम, तो एक बढ़िया सा गाना उनकी याद में दे दीजिए।
0: बिल्कुल, मैं सुमन कल्याणपुर जी का ही मैं आपको एक गीत सुनवाती हूँ प्यार।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप पहले तो अपना नाम बताइए और फिर अपने शहर का नाम।
1: मैं इंदौर से ललिता मंडली।
0: अच्छा ललिता जी, इंदौर से बोल रही हैं। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं अभी हाउसवाइफ हूँ
0: जी। तो अभी इस समय गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो आप क्या करती हैं गर्मियों से थोड़ा सा राहत पाने के लिए?
1: गर्मियों से राहत पाने के लिए अपने पारंपरिक तरीके, नींबू शरबत।
0: बढ़िया।
1: और दिन में धूप में कौन निकलना।
0: ये तो बहुत अच्छा।
1: ज्यादा जरूरत है धूप में निकलना तो फिर डॉक्टर जाना।
0: हाँ, तो आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में हम पति पत्नी और दो बच्चे हैं मेरे।
0: बच्चे छोटे हैं कि बड़े? बच्चे छोटे हैं आपके?
1: बड़े हो गए।
0: बड़े हैं, चलो तब सही है, परेशान नहीं करते होंगे आपको ज्यादा।
1: आप बड़े हो गए तो ज्यादा परेशान करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, ऐसा है। ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चों के पीछे पीछे भागो और बड़े बच्चों

0: भी पीछे पीछे भागो। जी बिल्कुल। तो
1: आपसे
0: आप
1: बात करके बहुत आनंद आ रहा है मैम, आपसे पहली बार बात हो रही है मेरी।
0: अच्छा जी, तो आप बताइए
1: जी
0: कि आप जैसे कि अपने जो बच्चे हैं उनको आप जो गर्मियों के दिनों में बढ़िया बढ़िया नींबू के शरबत और बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना बना के देती हैं।
1: देती हूँ, एक ऑफिस आता है तो उसको थोड़ा कम समय दे पाते हैं, वो सुबह 9 बजे निकल जाता है
0: अच्छा
1: तो रात को ही आता है 9 बजे।
0: अच्छा अच्छा
1: छोटा वाला रहता है तो हम दोनों माँ बेटे मजे करते हैं घर में।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। क्या नहीं, क्या अच्छा टाइम अपना निकलता होगा आपका। तो आप बताइए
1: जी
0: आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं।
1: मैं अनिल कपूर की फिल्म है कसम, उसका शीर्षक गीत सुनना चाहती हूँ। कसम क्या होती है,
0: ठीक
1: कसम
0: ठीक
1: क्या होती है जो तोड़ी ना जाए, जो छोड़ी ना जाए।
0: चलिए ठीक है, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप बताइए कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से?
1: रेखा वर्मा बोल रही हूँ, मैं उज्जैन से।
0: अच्छा, रेखा जी बोल रही हैं उज्जैन से। तो बताइए रेखा जी, आप क्या करती हैं?
1: मैं मैम हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, एक लड़की है मेरी और एक बेटा है। अभी बेटे की शादी हुई है।
0: अरे वाह, यानी आप भी सासू माँ बन चुकी हैं ना?
1: जी मैम, अभी 2-3 महीने हुए।
0: अरे वाह, तो आप कैसी सासू माँ है, कड़क वाली की अच्छी वाली?
1: नहीं नहीं नहीं
0: नहीं नहीं, आप अच्छी वाली होंगी, आपकी आवाज से मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है दिन में, मतलब अपने लिए जो समय बचता है उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं?
1: मैम हम लोगों को तो घूमना अच्छा लगता है और शाम की टाइम हम रोज घूमने जाते हैं, मेरे साथ वाली फ्रेंड है बराबरी की।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: हम रोज मतलब खाना खाने के बाद हम निकल जाते हैं साथ में घूमने के लिए।
0: चलिए, इतनी अच्छी बात है ना, क्योंकि अपने दोस्त का जब साथ मिल जाता है ना, तो समझिए फिर तो आप थोड़ा वॉक भी हो जाती है इस बहाने आपकी, और आपकी बातें भी हो जाती हैं, तो आपका जो तनाव भी थोड़ा बहुत रहता है ना वो भी खत्म हो जाता है। तो बहुत बहुत ही अच्छा आप करती हैं जो ये वॉक करती हैं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वॉक करती हैं।
1: जी मैम, अच्छा लगता है उनके साथ।

0: और अब थोड़ा टाइम और मिल जाता है, घर पे बहू आ गई तो अब टेंशन फ्री है थोड़े से।
1: बिल्कुल, यानी कि आप किसी सास हैं और आप भी किसी की
0: जी
1: सास
0: हाँ
1: हैं।
0: बिल्कुल
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आपका नाम पहले और अपने शहर का नाम।
1: मैं बोल रही हूँ भगवती सोलंकी, दिल्ली से।
0: दिल्ली से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, यानी आप जो चार दीवारें हैं ना उनको घर बनाती हैं।
1: हाँ जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपकी
1: तो संभालना जरूरी है ना, घर में तो सब बाहर ही जाएंगे तो घर को ही कौन संभालेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना आप चार दीवारों को घर बनाती हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे बेटे, दो बेटे हैं, बहू है, मेरी एक पोती है 6 साल की।
0: अरे वाह, यानी आप सास भी बन चुकी हैं और दादी भी बन चुकी।
1: हाँ जी, दादी भी बन चुकी हूँ
0: जी। तो बताइए आप अपना जो समय रहता है, कोई खाली समय रहता है जो, उसमें आप अपना समय बिताने के लिए क्या करती हैं?
1: सबसे पहले तो मेरा का शौक है म्यूजिक सुनना, तो मेरा रेडियो चालू हो जाता है, रामायण से चालू होता, भूले बिस्री संगीत सविता, भूले बिस्री गीत, ये सारा प्रोग्राम चलता रहता, सुन किचन में चलता रहता, मैं काम करती रहती हूँ।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है ये। संगीत में अगर रुचि है ना आपकी, तो समझिए आपका जीवन बहुत बहुत बहुत शांत है, बहुत अच्छा है।
1: हाँ, और फिर गुनगुनाती भी हूँ और गाने भी सुनती हूँ। फिर मुझे घर का काम करना, साफ सफाई करना मुझे बहुत पसंद है,
0: ये अच्छी चीज है।
1: हाँ, और दूसरा सबसे बड़ा है मुझे पौधे लगाना घर में। मैंने अपने आगे पीछे बालकनी में मैंने पेड़ ही करीब कम से कम 30-35 पेड़ लगाए हुए हैं गमलों में सब में।
0: अरे वाह।
1: सबसे ज्यादा तो मैंने गुड़हल लगाया हुआ, मेरे घर में तुलसी इतनी है कि मेरे से भी बड़ी तुलसी का पेड़ है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए जिस तरीके से पर्यावरण दिवस भी है और आपने इतनी अच्छी बात कही है कि आप पौधे लगा रही हैं, यानी कि सोचिए आप कितना अच्छा कर रही हैं।
1: मेरा पीआर जो है जबलपुर का है
0: जी,
1: तो हाँ जबलपुर में है, तो जबलपुर में भी हम बचपन से इतने पौधे लगा के आए कि अब हम बाद में जाते रहे तो वहाँ पर हमें शरीफा इतना पेड़, अमरूद, शरीफा, सहजन की फलियाँ, इतने पौधे में पेड़ मतलब फल लगते रहे कि मुझे देख के खुशी होती थी। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अपने आसपास हरियाली बना के रखो, जो समय हमारी जीवन देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: गाना सुनूंगी गागू साइड खान का, नाचो तू बंसी बजा। हाँ
0: जी बिल्कुल, सुनवाती हैं आपके पसंद का ये गीत।

सखियों, अब कार्यक्रम हेलो सहेली में हो चला है समय एक अंतराल का, तो मिलते हैं इस अंतराल के बाद।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं यानी कि आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ
0: जी।
1: पूर्णिमा सरगम, अभी तो तेलंगाना में रह रही हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: गाने सुनती रहती हूँ।
0: आप बताइए क्या करती हैं आप?
1: कुछ भी नहीं, अभी तो सिर्फ मेरी बच्ची को संभालती हूँ।
0: कितना छोटा है आपको बच्चा?
1: अभी 2 साल की हुई है।
0: ओहो, इतनी छोटी सी है। तब तो आपको बहुत भाग दौड़ करते रहना पड़ता होगा उसके पीछे।
1: वो ज्यादा नहीं कर पाती पर मैं फिर भी उसके पीछे भागती हूँ।
0: जी बिल्कुल, छोटे बच्चों का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है जी।
1: हाँ, समझदार है, ज्यादा परेशान नहीं करती,
0: यानी अच्छी बच्ची है।
1: हाँ।
0: जी तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है?
1: डांस करना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है।
0: तो आप अपना डांस करती हैं या ऐसी अपने मतलब भी आप छोड़ रखा है इस समय?
1: अभी ये छोटी है इसलिए छोड़ रखा है, बाकी मैं करती ही हूँ। मैं क्लासिकल डांस टीचर भी रह चुकी हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आपने सीखा हुआ यानी कि क्लासिकल?
1: जी, मैंने कथक सीखा हुआ है, भरतनाट्यम भी सीखा हुआ है।
0: अरे अरे वाह, बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मुझे
1: हाँ।
0: ये जो नृत्य की जो कला होती है ना, ये जो आप सीख लेते हैं तो हमको इतना एकदम तरोताजा रखती, कोई परेशानी हमें एकदम आसपास भी नहीं आती, क्योंकि हम इतने ज्यादा उसमें खो जाते हैं ना, सारी परेशानियों का हल हमें अपने संगीत में मिल जाता है। तो
1: बीमारी सही कर दे डांस, बिल्कुल म्यूजिक तो ऐसी चीज
0: जी, एकदम फिट भी रहते हैं उसकी वजह से।
1: हाँ, फिट भी रहते हैं बहुत
0: जी। तो आप बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: मैं कभी कभी मूवी का लता मंगेशकर की आवाज में मेरे घर आई एक नन्ही परी।
0: अच्छा, आपके घर एक नन्ही परी आई है। तो उसको हाँ। सुनाने के लिए हम आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं रत्ना बोल रही हूँ। हाँ, रत्ना सिन्हा।
0: अच्छा रत्ना जी बोल रही हैं, कहाँ से?
1: बाराबंकी से।
0: तो आप थोड़ा बताएंगे अपने बारे में, आप क्या करती हैं?
1: जी मैं ऐसे तो हाउसवाइफ हूँ, मगर मेरा म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट काफी रहा है
0: जी। और वैसे तो हाउसवाइफ क्यों है यार, बड़ी गर्व से कही हाउसवाइफ है क्योंकि हाउसवाइफ का काम बहुत ज्यादा होता है, 24 घंटे का काम होता है
1: बिल्कुल बिना रुके बिना थके
0: बिल्कुल, और काम करती रहती है और सब पूरे फैमिली, पूरा समझ लीजिए सारी फैमिली उनके पर निर्भर होती है,
1: और ऐसा कि पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए
0: बिल्कुल
1: जो है।
0: आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, दो बेटे हैं, बहू है, पोती है।
0: बहुत बढ़िया तब तो आप पोती के साथ खेलते खेलते आपका समय निकल जाता होगा अच्छे से
1: जी जी जी
0: तो बताइए जी, तो आप बताइए, आपको पेड़ पौधों का शौक है?
1: जी बहुत बहुत पेड़ पौधों का शौक है, मतलब सुबह शाम पेड़ पौधों को निहारना, देखना, पानी वानी डालते हैं।
0: अच्छा अच्छा, आपने लगा रखे हैं?
1: हाँ लगा रखे हैं, और चिड़ियों के लिए दाना है, पानी है, ये सब भी।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। गर्मियों के दिन में सोचिए वो चिड़िया पक्षी हैं, उड़ रहे हैं, उनको कहाँ से दाना पानी के लिए आपने उनका इंतजाम किया, बहुत अच्छी बात है ये।
1: और साथ सुबह सुबह बहुत अच्छी
0: वही तो हम जैसे अगर उनको पानी देते हैं या दाना कुछ उनको खाने के लिए रखते हैं ना, तो वो भी तो बदले में हमें अपनी चहचहाट देती हैं, अपनी खुशियां देती हैं ना, तो

0: आती हैं सब
1: बिल्कुल
0: आती हैं सब खेलती
1: जी,
0: हैं तो
1: जब वो चहचहाती हैं तो हमारे आंगन में एकदम खुशियां बिखर जाती हैं, है ना?
0: जी जी जी।
1: तो अब बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: अभिमान फिल्म का गीत है अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी।
1: बहुत अच्छा गीत है ये, और सुनवाते हैं आपको ये आपके पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली
1: जी, तो आप बताइए पहले तो अपना नाम और अपने शहर का नाम।
0: मेरा नाम शीला निको से है।
1: तो आप कहाँ से?
0: मैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट वरोरा महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ।
1: अच्छा, चंद्रपुर से बात कर रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
0: मैं हाउसवाइफ हूँ मैडम।
1: अच्छा,
0: घर में रहती हूँ और दृष्टिहीन हूँ मैं।
1: तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, जो आपको बहुत?
0: गाना सुनना अच्छा लगता है।
1: गाना सुनना अच्छा लगता है आपको? और गाना गाना अच्छा लगता है?
0: हाँ, गाना गाना भी अच्छा लगता है, गाना सुनना भी अच्छा लगता है।
1: तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
0: मुझे जाकवर सिंह ने का वो गाना सुनना है, तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है।
1: तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है। तो आपको सुनवाते हैं जानवर फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली जी, तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं ओडिशा गरम गंजाम जिला से बोल रही हूँ
0: जी। आप अपना नाम बताइए।
1: ममता दास मेरा नाम।
0: अच्छा, तो आप क्या करती हैं ममता जी?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: घर में मैं और मेरा हस्बैंड और मेरी दो बेटियां हैं।
0: अरे वाह, दो बेटी हैं आपकी, तो बड़ी है कि छोटी है?
1: हाँ, बड़ी हो गई है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं नर्सिंग की।
0: अरे वाह,
1: बीएससी नर्सिंग की।
0: बहुत अच्छी बात है, यानी सेवा वाली वो नौकरी कर रही है, वो पढ़ाई कर रही है जिससे कि वो सबकी सेवा कर सके, है ना? जी, तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपका खाली समय होता है? तो
1: मुझे सिलाई आती है, तो मैं कभी खाली नहीं रहती, काम खत्म, घर की काम खत्म होने के बाद सिलाई कर लेती।
0: बहुत अच्छी बात है ये, आप अपना ये अपना जो मनपसंद काम है वो आप करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ना हमें, हम सभी को कोई ना कोई शौक होता है, कोई ना कोई हॉबी होती है, लेकिन क्या है ना, हम उसको पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हम सोचते हैं अरे घर के काम है, ये सब कर लें फिर समय कहाँ मिलता है। लेकिन आपने उस चीज को अच्छे से किया है, तो आप क्या क्या चीजें सिल लेती हैं?
1: ऐसी हो रही है कि आज सखी सहेली पर मेरी फोन लगी। तो जून 5 में मेरी छोटी बेटी की बर्थडे है, जो जून 25 में मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे है।
0: अरे वाह, जून में ही है दोनों बेटियों का बर्थडे।
1: हाँ हाँ, और मेरी बहन की बेटी के जून 4 में है।
0: अच्छा,
1: तो हैप्पी बर्थडे के गीत सुनाई देंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत बर्थडे की, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो खूब आगे बढ़े और आपका नाम रोशन करे। तो आपने बताया कि आप सिलाई कर लेती हैं, तो आप क्या क्या सिलती हैं?
1: सलवार ब्लाउज सब सिलाई कर देती हूँ।
0: अच्छा, सारी चीजें आप सिल लेती हैं। तो आपको बाहर के सिले हुए कपड़े खरीदने अच्छे लगते हैं, बाहर से शॉपिंग करती हैं, या अपने घर में आपको बनाना अच्छा लगता है?
1: मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: सुजाता फिल्म का गीत है ना।
0: सुजाता का कौन सा?
1: हजारों साल।
0: अच्छा ठीक है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको पसंद का ये गीत।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर फिर से एक बार 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब आप दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी ना कभी तो कामयाब होते ही हैं, और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल नहीं लगाइए और अपनी सखियों को भी अवसर दीजिए अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक का और संपादन में हमारी सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े, और साथ ही विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज।

0: एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर. ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी.
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने.
0: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है. और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं.
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का। आप आ गए? मुझे तो पता ही नहीं चला, भावना ने रसोई घर से निकलते हुए संदीप से कहा। अभी आया हूँ बस, माँ ने दरवाजा खोला। पता है तुम्हें, घंटी बजाने ही वाला था कि माँ ने दरवाजा खोल दिया, संदीप ने कहा। हाँ, खाना खिला दिया उन्हें, कह रही थी कि आप आओगे तो साथ में बैठकर खाएंगे, पर मैंने आपका ही नाम लेकर कह दिया कि उन्होंने कहा है कि माँ को जल्दी खाना खिला दिया करो, माँ के लिए लेट खाना खाना ठीक नहीं। मैंने खाना खाकर घूमने का और कह दिया, इसीलिए गई हैं, शायद थोड़ा नाराज होकर। तुमने अच्छा किया भावना, ऐसी नाराजगी सर आंखों पर, शुगर में जल्दी खाना घूमना फिरना जरूरी है, और माँ इस मामले में बेहद लापरवाह है। तुमसे नाराज होती हैं तो मैं ही कह दिया करूंगा। नाराजगी में क्या कहकर गई है पता है? कह रही थी जो हुक्म, अब तो जैसा आप कहेंगी वैसा ही करना पड़ेगा, भावना ने हंसते हुए कहा, और फिर नाटकीय अंदाज में कहने लगी, सोचो जरा क्या क्या सुनना पड़ता है हमें। खैर, कैसा रहा आज का दिन? भावना ने संदीप को पानी देते हुए पूछा। रोज की तरह ही था, बहरहाल मेरा एक सरप्राइज फेल हो गया। सोचा था इस बार तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे, शादी को 2 साल हो गए पर तुम्हें कोई सरप्राइज ही नहीं दे पाया। एक पेमेंट मिलने की उम्मीद थी पर वो अब अगले महीने के लिए टल गई, और अगले ही हफ्ते तो तुम्हारा बर्थडे है। पता नहीं क्यों जो सोचता हूँ हो ही नहीं पाता, सैलरी में तो घर का खर्च ही मुश्किल से निकल पाता है, और तुम्हें ज़्यादा खुशी नहीं दे पा रहा, क्या करूँ। संदीप ने गहरी सांस ली। अरे ऐसा क्यों कहते हो आप? आप इतना सोचते हो वही काफी है, मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। आपको तो याद भी था, कई सारे पतियों को तो अपनी पत्नी के जन्मदिन तक याद नहीं रहते। याद है वो दीपेश जी, अपनी पत्नी से ही पूछ बैठे तुम्हारा जन्मदिन कब पड़ता है, भावना हंसकर कहने लगी। बर्थडे फिर मन जाएगा, आपका साथ है तो सब बढ़िया है।

सब बढ़िया तो है भावना, लेकिन इस मन का क्या करें? तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा अगला बर्थडे बेस्ट होगा। मम्मी ने बताया था तुम्हें चंदेरी साड़ी लेने की बहुत इच्छा है। देखता हूँ बजट में बिठाते हैं, बर्थडे में ना सही बाद में ही सही, समझो वही तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा रहा। क्या कहा? भावना ने आश्चर्य से कहा। मम्मी जी ने बताया कि मुझे चंदेरी साड़ी लेनी है। आपको पता है मैंने जिक्र किया नहीं और मम्मी ने पहले ही कह दिया कि दीदी के लिए चंदेरी साड़ी लेनी है सबसे पहले। मम्मी जी के लिए तो हर चीज पहले उनकी बेटी के लिए आएगी फिर बहू के लिए। बहू दिन भर उनका ध्यान रखे पर उनका मन तो अपनी बेटी में ही लगा रहता है। और तो और आजकल तो उनकी एक नई सहेली बन गई है, पड़ोस में नई किराएदार आई है ना मुक्ता, उससे आजकल मम्मी जी की खूब पट रही है। 2 दिन से लगातार आ रही है और जब आती है तो मम्मी जी अपने

0: सीट में बिठाते हैं बर्थडे में ना सही, बाद में ही सही। समझो वही तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा रहा। क्या कहा? भावना ने आश्चर्य से कहा। मम्मी जी ने बताया कि मुझे चंदेरी साड़ी लेनी है। आपको पता है मैंने जिक्र किया नहीं और मम्मी ने पहले ही कह दिया कि दीदी के लिए चंदेरी साड़ी लेनी है सबसे पहले। मम्मी जी के लिए तो हर चीज पहले उनकी बेटी के लिए आएगी, फिर बहू के लिए। बहू दिन भर उनका ध्यान रखे पर उनका मन तो अपनी बेटी में ही लगा रहता है। और तो और आजकल तो उनकी एक नई सहेली बन गई है, पड़ोस में नई किराएदार आई है ना मुक्ता, उससे आजकल मम्मी जी की खूब पट रही है। दो दिन से लगातार आ रही है और जब आती है तो मम्मी जी अपने कमरे के गेट भी बंद कर लेती हैं। कल मैं चाय लेकर पहुंची तो जाने क्या बात कर रही थी, मुझे देखकर बिल्कुल चुप हो गई, जैसे मेरी बुराई कर रही हो। और मैं पहुंच गई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। भावना अब छोड़ो ये बात, लगता है माँ आ गई, मैं दरवाजा खोलता हूँ, तुम खाना लगाओ। लो मैं तो टहल कर आ भी गई और यहाँ खाना भी नहीं लगा मेज पर, और कोई हमसे कहता है कि खाना जल्दी खाया करो आप, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बेटा मैं बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत तो तुम दोनों को भी होनी चाहिए, माँ ने थोड़ा डांटते हुए कहा। हाँ माँ आप सही कह रही हो, आगे से ध्यान रखेंगे, संदीप ने बात को संभालते हुए कहा और भावना से चुप रहने का इशारा किया। भावना को मम्मी जी की ये बातें ताने जैसी चुभ गई और उसके मन का रेडियो ये गीत गाने लगा।
1: सासु जी तूने

भावना और संदीप खाना खाने लगे। माँ अपने कमरे में सोने चली गई थी। भावना का मूड खराब हो चुका था। संदीप को पूरा एहसास था कि ज्वालामुखी फटने ही वाला है। वो तैयार था। देखा आपने क्या गलत कहा था मैंने? उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही तो कहा था ना। फिर भी कितना सुना दिया मुझे। इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी कोई कदर नहीं मेरी। अरे वो भी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कह रही थी, और तुमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो मुझे कह रही थी भावना, संदीप ने बचाव में कहा। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, वो अक्सर ऐसा ही करती हैं। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मेरी कमियां ही बताती रहती हैं, और दीदी की हर जगह तारीफ। मुझे तो लगता है मुक्ता से भी मेरी बुराई ही करती होंगी। भावना ऐसा क्यों सोचती हो? नजरिया बदलो अपना। नजरिया बदलने से कई बार पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तुम्हें क्यों लगता है कि माँ तुम्हारी बुराई ही करती हैं? तुम माँ को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से बाहर तो निकलो, तुम्हें बेहतर लगेगा। घर में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही रहती हैं, अब इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? माँ भी तो तुम्हारा ध्यान रखती हैं, बस उनके तरीके थोड़ा अलग हैं। अब सोचो तुम्हारी मम्मी भी तो तुमसे कितना प्यार करती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती। तुम परीक्षा की तैयारी कर सको इसलिए तो माँ तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देती हैं, और इस पर थोड़ा बहुत डांट भी देती हैं तो टाल दिया करो, संदीप ने समझाते हुए कहा। मुझे पता था आप यही कहोगे, हमेशा की तरह। आजकल तो मम्मी जी अपनी सहेली के साथ व्यस्त रहती हैं, तो पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पढ़ाई कैसे हो? तो पढ़ाई होगी भी कैसे, पूरा ध्यान तो तुम्हारा माँ पर ही लगा रहता है। हाँ मुझे जो लगा कह दिया, भावना गुस्से में बोली। अच्छा अच्छा तुम नाराज मत हो मेरी प्रिय, तुम गलत सोचती हो। सही सोच रखो, जब तुम्हारी मम्मी घर पर कहती हैं कि पहले मेरी बेटी के लिए ये चीज़ आएगी, तब तो तुम खुश होती हो, और माँ वो बात कहें तो बुरी लगती हैं। मेरी मम्मी की बात तो आप ही ना करें, वो ऐसी नहीं है। वो तो मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखती हैं, पलकों पर बिठाती हैं उन्हें। ऐसा तुम्हें लगता है, थोड़ी बहुत बातें तो उनकी भी होती ही होंगी। छोड़िए इस बात को, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, ये तो मन की बात है। प्यार तो दिल तक पहुंच ही जाता है, अगर उनके मन में मेरे लिए स्नेह होगा तो पहुंचेगा। भावना आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक दिन जरूर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था। बस समय रहते तुम्हें एहसास हो जाए।

अगले दिन भावना ने अपने मूड को ठीक किया। नया दिन, नई शुरुआत। मम्मी जी को चाय नाश्ता दिया। संदीप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुका था। सब्जी अक्सर मम्मी जी ही बनाया करती थी, रसोई में भावना का पूरा साथ देती, लेकिन आज सुबह से ही उन्होंने मना कर दिया था। भावना, जो मन हो वो सब्जी बना लेना, मैं नहीं बना रही। और नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। और तो और, आज तो पूजा भी उन्होंने जल्दी जल्दी कर ली थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। मम्मी जी अपने कमरे से तेजी से आई, जैसे वो इस आने वाले का इंतजार ही कर रही थी। दरवाजा खोला, भावना ने देखा मुक्ता। लो, आज तो ये सुबह से ही आ गई। दोनों अंदर कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। भावना का सिर चकरा गया। ऐसी भी क्या बात, मम्मी जी का पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा, इतनी गपशप की लालसा। हे राम, ये मम्मी जी को जाने क्या होता जा रहा है। उस दिन शाम की चाय पीकर ही मुक्ता अपने घर गई। देर शाम जब संदीप घर आया तो समझ गया कि आज भी भावना का मूड कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। जैसे ही उन्हें एकांत मिला, उसने भावना से पूछ लिया, अब आज क्या हो गया। आज तो मुक्ता सुबह से ही घर आ गई थी, शायद मम्मी जी ने ही बुलाया था, और शाम की चाय पीकर ही घर गई। आज भी मम्मी जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। दोपहर के समय तो खाना खाने के बाद मैं और मम्मी जी रोज रेडियो पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनते हैं। तुम्हें पता है, मम्मी जी का साथ देते देते मुझे भी रेडियो सुनने की आदत हो गई है। रेडियो सुनते सुनते मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। पर आज तो वो सखी सहेली सुनने भी नहीं आई। मैंने उन्हें बुलाया, फिर भी नहीं आई। कहा रात में सुन लूंगी या फिर कल सुनेंगे। तुम मुझे पहले बताओ, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है, मुक्ता का आना या माँ का तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना, या सखी सहेली उनके साथ नहीं सुन पाना। संदीप ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। सब कुछ, मम्मी जी ने ऐसा अब तक कुछ नहीं किया। हम एक दूसरे पर कितना ही नाराज हों, पर हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। तुम्हें कहीं मुक्ता से जलन तो नहीं हो रही है, संदीप ने चुटकी ली। मेरी जीवन संगिनी, ओ मेरी अर्धांगिनी, अपने दिल को बड़ा करो, संदीप ने नाटकीय अंदाज में कहा। और माँ से नहीं, मम्मी जी से कहो, जाइए मम्मी जी, जी लीजिए अपनी जिंदगी। और फिर थोड़ा संजीदा होकर कहने लगा, वैसे माँ के प्रति तुम्हारा ये स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैं कोई उनके दुश्मन थोड़े ही हूँ, आखिर उन्होंने मुझे आपको जो दिया है। वाकई में, संदीप ने प्यार भरे अंदाज में कहा, और दोनों खिलखिला पड़े।

Thank you.

अगले दिन रोज की ही तरह संदीप ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी जी कुछ शांत सी थीं, अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थीं। भावना को उनकी शांति चुभ रही थी। वह कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात निकलवाती, पर मम्मी जी हाँ हूँ सा छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती। फिर वही शांति। दोपहर के बाद मम्मी जी के फोन की घंटी बजी और वो फोन लेकर अंदर चली गई। जब बाहर आई तो भावना ने कौतूहल से पूछा, क्या दीदी का फोन था? पर मम्मी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। भावना को बड़ा बुरा लगा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? खैर अब मैं भी इन पर ध्यान नहीं दूंगी, अपना काम कर दिया, बाकी उन्हें जो करना है करें। मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करूं जिससे मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर इन्हें मेरी कदर होगी। और भावना ने ये सोचकर अपने सारे काम निपटा कर पढ़ाई करने बैठ गई। अगले कुछ दिन घर का माहौल ऐसा ही रहा। दिन गुजरे और वो खास दिन आ गया। आज भावना का जन्मदिन है। माँ ने सुबह सुबह भावना के बेडरूम का गेट खटखटाया। भावना जाओ दरवाजा खोलो, लगता है माँ आई है तुम्हें विश करने। इतने सुबह कौन विश करता है, बर्थडे के दिन भी चैन से सो नहीं सकते, भावना ने खींचते हुए कहा। संदीप ने नींद में ही कहा, तुम्हें पता है ना माँ हमें यूं ही सुबह सुबह चाय पिलाकर विश करती हैं। देखना तुम्हारे लिए स्पेशल वाली चाय भी लाई होंगी, मैंने कहा तो था तुमसे माँ हम में फर्क नहीं करती। ठीक है मम्मी जी के श्रवण कुमार, खोलती हूँ दरवाजा, भावना ने उठकर दरवाजा खोला। अरे मम्मी जी आप इतनी सुबह, हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो। मैंने सोचा रोज तुम चाय पिलाती हो तो आज तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं चाय पिला दूं तुम्हें। ये लो गर्मा गर्म चाय, संजू के लिए नहीं बनाई, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है। भावना ने मुस्कुराकर चाय की प्याली अपने हाथ में लेकर टेबल पर रख दी और मम्मी जी ने भावना को प्यार से गले लगा लिया। फिर उन्हें भावना थोड़ी असहज लगी तो वो कहने लगी, अरे बेटा माफ करना, तुम्हें विश करने की उत्सुकता में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तुम्हें बहुत जल्दी जगा दिया। ठीक है तुम आराम करो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो उठ ही गई थी, आशीर्वाद दीजिए। और भावना ने ये कहकर उनके पैर छू लिए। मम्मी जी ने आशीर्वाद दिया।

माँ, मेरे स्पेशल वाली चाय कहाँ है? बस भावना को पिला दी, संदीप ने माँ को छेड़ते हुए कहा। वो तुम्हारे जन्मदिन पर मिलेगी, माँ ने हंसते हुए जवाब दिया। इतने में भावना चाय और नाश्ता लेकर आ गई। मम्मी जी, वाकई आपकी स्पेशल वाली चाय का कोई जवाब ही नहीं, और संदीप को देखकर बोली, लीजिए आप ये चाय पीजिए। पारिवारिक खुशनुमा वातावरण में सबने मिलकर चाय नाश्ता किया। भावना आज खुश थी, एक तो जन्मदिन की खुशी और उस पर मम्मी जी का प्यार भरा बर्ताव, जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। मन ही मन सोच रही थी, बस आज दिन भर मम्मी जी ऐसी ही प्रेम वर्षा करती रहें और वो मुक्ता ना आए, बस मन गया मेरा जन्मदिन। इससे ज्यादा की मुझे उम्मीद भी नहीं है, यही बहुत है। संदीप को छुट्टी नहीं मिल पाई थी, सो वो ऑफिस के लिए चला गया। इधर भावना अपने कामों में लग गई, पर मम्मी जी का ध्यान दरवाजे की घंटी पर ही लगा था। और दोपहर ढलते दरवाजे की घंटी बजी। भावना कुछ काम कर रही थी, सो उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी कोई है दरवाजे पर, क्या आप देख लेंगी? लेकिन मम्मी जी जानबूझकर अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब भावना को गुस्सा आना लाजमी था। मन ही मन बुदबुदाई, काम कर रही हूँ पर नहीं कि दरवाजा भी मैं ही खोलूं, बाकी सब तो बहुत बिजी हैं। उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो चुका था। एक फूलों का गुलदस्ता और एक पार्सल, दोनों साथ में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी दूर से उसे ताक रही थी। भावना बेहद खुश थी, खुशी खुशी मम्मी जी को बताया, मम्मी जी देखिए इन्होंने तो इतना बढ़िया सरप्राइज दिया है, सुंदर फूलों का गुलदस्ता और ये गिफ्ट पार्सल, शायद इसीलिए आज ऑफिस चले गए हैं कि ये सरप्राइज दे सकें। बढ़िया है बेटा, गिफ्ट तो देखो क्या है। हाँ मम्मी जी, और उसने गिफ्ट को खोला और वो लगभग उछल पड़ी। चंदेरी की साड़ी, मम्मी जी याद है आपको, हम उस दिन देख रहे थे तो यही साड़ी मैंने ऑनलाइन पसंद की थी, इन्हें कैसे पता चला? उफ, मुझे ये साड़ी इतनी पसंद आई थी और उन्होंने पता नहीं कैसे पर मुझे मेरे बर्थडे पर ही ये गिफ्ट कर दी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ मम्मी जी, कितनी बातें बना रहे थे कि इस महीने नहीं हो पाएगा, बजट नहीं है, और देखिए। माँ भी उसकी खुशी देखकर खुश हो रही थी। भावना साड़ी लपेट कर नाच ही रही थी और उसके मन के रेडियो पर एक बार फिर से गीत बज रहा था। वो गीत था ये।

भावना बेसब्री से संदीप के आने का इंतजार कर रही थी। उसने वही चंदेरी की साड़ी पहन भी ली थी, उसे मैचिंग ब्लाउज भी मिल ही गया था। संदीप को आने में थोड़ी देर ही हो रही थी और घंटी बजी। भावना दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए। संदीप अपने ही बचाव में कहने लगा, अरे भावना, वो तुम्हारे लिए केक लेने लगा तो थोड़ी देर हो गई। भावना मुस्कुराकर देख रही थी। भावना, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कब खरीदी थी? अब आप ज्यादा मत बनो, आपने ही तो आज कमाल कर दिया। मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन बर्थडे है, फूलों का गुलदस्ता, चंदेरी की मेरी पसंदीदा साड़ी, और आप कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। संदीप हैरान था, कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर घंटी बजी।

भावना ने दरवाजा खोला, सामने मुक्ता थी। मुक्ता को देखकर यूं तो उसे खुशी नहीं होती थी, पर आज तो वो यूं ही बहुत खुश थी। हैप्पी बर्थडे भाभी, कैसी लगी साड़ी? आंटी ने खूब मेहनत करवाई, इतनी शॉपिंग साइट्स देखी तब जाकर ये साड़ी मिली। आंटी को आपको यही गिफ्ट करनी थी। भाभी बहुत लकी हो आप, आंटी को आपकी पसंद ना इतनी पता है, मैं तो हैरान ही हो गई। वैसे साड़ी आपको पसंद तो आई ना? मम्मी जी की ओर देखकर मुक्ता कहने लगी, आंटी देखिए रंग तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऑर्डर किया था। भाभी वैसे गुलदस्ता कैसा लगा? वो मेरा आइडिया था, बस मैंने उसमें पीले फूल भी जोड़ने के लिए कहा था। खैर आंटी जी अब तो आप खुश है ना? भाभी आप जो एग्जाम दे रही हो उसमें अव्वल आओ, आंटी को तो आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, वो कह रही थी आप अगले साल सरकारी अफसर बन जाओगी। कह रही थी मेरी भावना तो ऑनलाइन का काम चुटकियों में कर लेती है, पर उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देना था इसलिए मुझसे हाथ मिलाना पड़ा। इतने में मुक्ता के फोन की घंटी बजने लगी और वो बाहर चली गई। मम्मी जी ने हंसते हुए कहा, कितना बोलती है ये लड़की, बस एक बार शुरू हो जाए। लेकिन अच्छी है, उसी से तो ऑर्डर करवाया, मुझे क्या आता है। भावना अब तुम मुझे सिखा देना। साड़ी पसंद आई? वही वाली है ना जो तुमने पसंद की थी? भावना अवाक होकर मम्मी जी को देख रही थी। मम्मी जी ये सरप्राइज आपका था, तो आपने बताया क्यों नहीं? और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर मम्मी जी से लिपट गई। उसे बीते दिनों की सारी बातें अब एक अलग नजरिए से दिख रही थी। क्या फर्क पड़ता है बेटा, संजू ने दिया या मैंने, बात तो तुम्हारे चेहरे की खुशी से है। तुम्हारी खुशी कम तो नहीं हो गई ना कि सरप्राइज मैंने दिया है? मम्मी जी ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं माँ, मेरी खुशी तो कई गुना बढ़ गई। माँ आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसीलिए आपकी मुक्ता से सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थी और ये मैं समझ ही नहीं पाई। फिर संदीप को देखकर कहने लगी, माँ ने मेरे लिए सब किया। और फिर कस कर मम्मी जी से लिपट गई। संदीप की भी आंखें भर आईं। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटा तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। माँ आज तक आपने मुझे तो सरप्राइज नहीं दिया, संदीप ने छेड़ते हुए कहा। फिर भावुक होकर कहने लगा, पर माँ ये साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने पैसे? अरे तुम जो मुझे पैसे देते हो वो ही पड़े थे, मेरा अपना क्या खर्च है, एक प्रीति है एक भावना है, और मैं, मुझे तो आप भूल ही जाओ, बस ये दोनों बेटियां ही हैं आपकी। अरे मेरे बेटे, अब प्रीति के लिए चंदेरी साड़ी लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसे भी तो दिलानी है ना। भावना ने शरारत भरी नजरों से संदीप को देखा और सब खिलखिला पड़े। मुक्ता भी आ गई और फिर भावना ने केक काटा और सबने गीत गाया।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, हर दिन पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगा है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी मुस्कान सब दिल में घर कर गई हैं। अब हर दुआ में तुम्हारा नाम शामिल होता है, शायद यही तो प्यार है। जब किसी एक इंसान में पूरी दुनिया दिखाई देने लगे और मुझे मेरी पूरी दुनिया तुम में नजर आने लगी है।

हर मुलाकात के बाद कुछ नए अल्फाज चुन लाता है, जैसे दिल की धड़कनों को सुरों में पिरोकर कोई गीत बना रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, मानो हर धुन में सिर्फ अपनी महबूबा का ही चेहरा दिखता हो। कभी चांद की बात करता है, कभी बारिश की, पर असल में हर गीत उसी के नाम लिखा होता है। वो आशिक अपनी मोहब्बत को शब्दों और सुरों में सजाकर हर रोज एक नया नगमा लेकर आता है। जलते

अब राहें अलग नहीं रही, जिंदगी के हर मोड़ पर हमारे कदम साथ चलेंगे। खुशियों की धूप हो या मुश्किलों की छांव, हम एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते रहेंगे, हर परिस्थिति में, हर पड़ाव पर। अब ये सफर सिर्फ मैं का नहीं, हम का होगा, समय चाहे जैसा भी हो। साथ निभाने का ये वादा अब हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई बन चुका है।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। तुम चाहे जितनी बेरुखी कर लो, चाहे हर बात में हमें दर्द ही क्यों ना मिले, फिर भी इस दिल की धड़कनों पर बस तुम्हारा ही नाम रहेगा। हम शिकायत भी करेंगे तो तुम ही से, और दुआ भी मांगेंगे तो तुम्हारे लिए, क्योंकि इश्क ने हमें ऐसा बना दिया है कि जुल्म तुम्हारे होंगे, फिर भी गीत तुम्हारे ही गाए जाएंगे।

अब और कितना रूठोगे तुम? देखो मैं हार गई हूँ, अपने सारे गिले अपनी सारी जिद तुम्हारे कदमों में रख दी है। चलो अब मान भी जाओ, तुम्हारी खामोशी अब दिल को तकलीफ देने लगी है। आओ फिर से वैसे ही बातें करें जैसे कभी हमारे बीच दूरियां हुआ ही नहीं करती थी।

अज समझे।

¿Qué es

कि अब दुनिया की कोई बात दिल को छूती ही नहीं। ना दिन अपने लगते हैं, ना रात में सुकून मिलता है। हर तरफ बस तेरा ही नाम, तेरा ही एहसास बसा रहता है। तेरी आंखों में ऐसे डूबे कि अपना वजूद तक भूल बैठे हैं। अब हाल ये है कि तेरे प्यार में हम सारा आलम खो बैठे हैं।

0: FM 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं, आपको सुनवाते हैं फूलचंद गुर्जर और साथियों के गाए पारंपरिक निमाड़ी लोकगीत।
1: बोलो गणपति महाराज की जय। तो गौर

0: ईछे निमाड की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: तो राम नाम ले तेरो और सकल पाप कटी जा।

श्रोताओ, आपने सुने पारंपरिक निमाड़ी लोकगीत कलाकार फूलचंद्र गुर्जर और उनके साथी एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी खंडवा। आइए अब सुनते हैं युववाणी कार्यक्रम।

हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सृष्टि यादव। स्वीकार कीजिएगा हमारा नमस्कार। दोस्तों, आज है माह का पहला शुक्रवार और हमारा आज का क्रम यानी शीर्ष गीतों भरी कहानी हम शुरू करें उससे पहले आपको बता देते हैं आज के सामान्य ज्ञान के दोनों प्रश्न। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, ऐतिहासिक बृहदेश्वर मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? और दोस्तों, हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, लोअर कोपीली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे हमेशा की तरह कार्यक्रम के अंत में। तब तक आनंद लीजिएगा युववाणी का अपने रेडियो सेट पर। दोस्तों, जब हम सुबह उठते हैं या शाम में टहलने निकलते हैं तो हमें ताजी हवा चाहिए होती है, पीने के लिए साफ पानी चाहिए है। लेकिन आज हमारे चारों तरफ यदि कुछ फैला है तो वो है प्रदूषण। आधुनिकता की दौड़ में हम तकनीकी रूप से तो आगे बढ़ रहे हैं पर प्राकृतिक रूप से खोखले हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, बढ़ता प्रदूषण, वनों की कटाई, ग्लोबल वार्मिंग आज हमारी चिंता का विषय है। पर दोस्तों, इसमें योगदान देने वाले भी हम ही हैं कहीं ना कहीं। हम हर साल आज यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, बड़ी शान से पौधे भी लगाते हैं, पर उसका सार तब निकल के आता है जब हम उसकी देखभाल करें, सही मायने में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करें। बूंद बूंद मिल के बने सागर, ये तो आपने सुना ही होगा। ठीक वैसे ही हमारी छोटी छोटी आदतें बदल कर हम पर्यावरण को बचाने में योगदान दे सकते हैं। तो क्यों ना प्लास्टिक बैग को कपड़े की थैली से रिप्लेस कर दें? जल है तो कल है, ये बात हम जानते भी हैं और समझते भी हैं, फिर भी हम ही पानी वेस्ट करते हैं। वक्त है कि हम भाषण से ज्यादा अब एक्शन पे ध्यान दें, तो शायद हमें ऑक्सीजन खरीदने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, बड़े बदलाव छोटे प्रयासों से शुरू होते हैं, तो आइए हम संकल्प लें कि हम पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और धरती को हरा भरा,

आज की कहानी है मीनल और नीम के पेड़ की। मीनल एक पढ़ी लिखी युवती है, उसे अपनी बुद्धि पर विश्वास है, लेकिन अड़ियलपने के कारण कभी कभार सबसे उलझ जाती है। आज सुबह से वह खुश थी और बालकनी में बैठी किताब पढ़ रही थी, तभी उस पर धूप की किरण पड़ती है। थोड़ा कुर्सी को सरका कर बैठ जाती है और गाना गुनगुनाने लगती है।

पेड़ से धूप फिर झांकती है। उठकर पेड़ तरफ देखते हुए माँ से बोलती है, ये पेड़ की टहनी फिर से बड़ी हो गई, पूरा ग्रीन प्लास्टिक का शेड हिलने लगा। इतने में माँ बोलती है, जाने दे बेटा, बार बार ये कब तक चलेगा, अब तो पेड़ को कटवा कर ही रहूंगी। माँ कहती है, बेटा पर तुझे तो ये पेड़ पसंद है ना। मीनल बोलती है, मुझे इस पेड़ में सिर्फ तोते के झुंड का बैठना ही पसंद है।

चिड़चिड़ी मीनल बुलवाती है लकड़हारे को। आशीष भैया, ये पेड़ देख रहे हो, इसे काटना है। आशीष बोलता है, पर दीदी ये तो छायादार है, सिर्फ टहनी छाट देते हैं। और फिर दीदी ये पेड़ पुराना नजर आता है, बहुत मेहनत लगेगी, हमसे ना हो पाएगा। मीनल कहती है, भैया मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी, पर आप इसे काटो। आशीष कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ काटना शुरू करता ही है कि पेड़ कटने की आवाज़ पड़ती है पड़ोसी चौरे जी के कान में। चौरे जी तौलिया लपेटे नहाने जा रहे थे। बाहर आवाज़ सुनकर चप्पल पहनकर निकलते हैं कि हड़बड़ाहट में पैर मुड़ जाता है। पत्नी कहती है, अरे कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? चौरे जी कहते हुए निकलते हैं कि आ रहा हूँ, तुम अपना काम करो। पड़ोस में पहुँच कर लकड़हारे का हाथ पकड़ते हुए बोले, ये क्या कर रहे हो, किसके कहने पर? आशीष बोला, साहब पेड़ काट रहा हूँ, मैडम ने बोला है। मीनल तुम बेवकूफ हो गई हो क्या, पेड़ क्यों कटवा रही हो? चौरे जी बोल पड़ते हैं। मीनल गुस्साते हुए चौरे जी से बोलती है कि अंकल आप बड़े हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ, पर आप मुझे बेवकूफ़ कैसे कह सकते हैं? चौरे जी बोले, तुम बेवकूफ़ी भरा काम करोगी तो और क्या कहेंगे? मीनल चौंकते हुए पूछती है, कैसी बेवकूफ़ी? अरे छाह के लिए प्लास्टिक का पतरा लगवा रही हो, लेकिन जो पेड़ प्राकृतिक रूप से और दूसरे कई सारे फायदे के साथ तुम्हें छाया दे रहा है, उसे ही कटवा रही हो। मीनल को अपनी गलती का आभास तो हो गया था, लेकिन स्वीकार करने की हिम्मत नहीं हो रही थी।

मीनल की माँ बाहर आते हुए कहती है, ठीक किया भाई साहब, ये मेरी तो कोई बात मानती नहीं है, आपने रोका, बहुत अच्छा किया। इतने में आशीष बोला, मैडम पैसे? कैसे पैसे, पेड़ तो कटा ही नहीं। इतने में चौरे जी बोले, बच्चू पेड़ काटना और कटवाना दोनों ही अपराध है, तुझे तो मैंने बचा लिया। अब मीनल की माँ मीनल से बोली, सुन लिया तूने, तू भी अपराध ही कर रही थी। भाभी जी आपको नहीं पता, आपसे पहले ये घर जिनका था वो आज भी यहाँ से निकलते हुए इस पेड़ और इस घर पर एक निगाह ज़रूर डालते हैं, और उनकी आँखों में इस पेड़ और इस आंगन से जुड़ी बहुत सी स्मृतियाँ दिखाई देती है।

अब मीनल का गुस्सा शांत हो चुका था और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। अब पेड़ पर बैठे पक्षी, उसकी हवा उसे अच्छी लगने लगी, लेकिन अड़ियल स्वभाव के कारण मानने को तैयार नहीं हो रही थी। तभी चौरे जी बोलते हैं,

आशीष भाई, तू कुल्हाड़ी रख। भाभी जी, इसे चाय पिलाकर विदा कीजिए और बिटिया के लिए एक ठंडी लस्सी पेश कीजिए, माथा इसका ठंडा रहेगा जरा। इस पर सभी हंस पड़ते हैं और पीछे खड़ा नीम का पेड़ भी अपने ही अंदाज मुस्कुरा रहा होता है।

दोस्तों, अभी जो हमने कहानी सुनी उसमें हमने जाना पर्यावरण के महत्व के बारे में, और आज विश्व पर्यावरण दिवस है तो चलते चलते आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की एक कविता सुनाते हैं जो पर्यावरण पर ही है। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं, खिले फूल फल चिड़िया बोले प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। लेकिन एक इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझसे अपना भाई। आज सभ्यता वहशी बनकर पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। इसीलिए कह रहा हूँ, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियाओं को रोने देना और उनकी डालों को मत छिनने देना। वाकई सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की ये कविता हमें पर्यावरण के महत्व को समझाती है और दर्शाती है, साथ ही ये संदेश भी देती है कि हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना चाहिए और हमेशा इसमें योगदान भी देना चाहिए। और दोस्तों, अब चलते चलते आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी जान लेते हैं, पर उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको आज का क्रम कैसा लगा, हमें पत्रों व ईमेल के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अब आपको प्रश्नों के उत्तर बता देते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न था, ऐतिहासिक बृहदेश्वर मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है तंजौर शहर तमिलनाडु में। और हमारा आज का दूसरा प्रश्न था, लोअर कोपीली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उत्तर है असम। इसी के साथ दोस्तों, अब कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति दें आपकी दोस्त सृष्टि यादव को। नमस्कार।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम FM 101.2 MHz पर। हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सभी को विद्याधर मूले का नमस्कार। कार्यक्रम का ये पहला नगमा है बंदिश फिल्म से। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं आनंद बख्शी का लिखा गाना, जिसे संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने।

वो ना रहे। बदलते रिश्ते फिल्म का यह गाना है मोहम्मद रफी की आवाज में। अनजान का गीत संगीत एक बार फिर लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।

रफ़ी साहब की आवाज़ का जादू एक बार फिर तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। बहुत मशहूर गाना है, आप तो ऐसे न थे फिल्म का, आइए सुनते हैं ये गीत। कलाम निदा फाजली साहब का है, संगीत उषा खन्ना का।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: उषा खन्ना की एक और संगीत रचना श्रोताओं आपको सुनवाने जा रहे हैं। दादा फिल्म का ये गीत यशुदास की आवाज में है। ये गीत कुलवंत जानी का है, आइए सुनें।

0: FM एंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रोग्राम्स का खजाना।
1: तुम आए तो आया मुझे यार, गली में अचानक निकला।
0: तो सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंड।

0: रहे हैं आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण।
1: हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा।
0: तो फिर सुनते रहे निमाड़ की सुरीली धड़कन।
1: मेरी आश की अब तुम ही हो।
2: और अब प्रोग्राम का आखिरी गाना आप तक पहुंचा रहे हैं, ये भूपेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाज में हसन कमाल की रचना है, संगीत बप्पी लहरी का। फिल्म का नाम बताते हैं, एतबार।

0: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, विद्याधर मुले के साथ आप सुन रहे थे कुछ पुराने फिल्मी गाने। उम्मीद है कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। ये प्रसारण आपकी सेवा में FM 101.2 MHz पर आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से हो रहा है। शाम के 7 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य के विकास को गति मिलेगी और लोगों का जीवन बेहतर होगा। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
2: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमरीका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक रही है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से जबरन कब्जा कर रखा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% रहने का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी।

0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस की पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत को SU-57 लड़ाकू विमान कार्यक्रम में शामिल करना चाहता है। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी खंडवा से।
2: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुं सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
4: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
5: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूं और कहाँ दूं।
4: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
5: क्यों?
4: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
5: वो कैसे?
4: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
5: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
4: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
5: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
4: आप कब आ रहे हैं?
5: आकाशवाणी खंडवा आरोप।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रहना
0: और
2: आकाशवाणी खंडवा सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन।

0: सात सुरों की सरगम
1: सा पा मा गा मा गा रे गा रे सा नी सा नी रे गा सा।
0: ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
2: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
3: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
2: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
3: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
4: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
5: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
6: हम बने हैं साथी निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा की। ट्यून कीजिए एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ या डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सुनते रहिए

0: FM 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी खंडवा। शाम के 7:10 होने को हैं। आइए आपको सुनवाते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और ₹7,000 का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: लगवाने के लिए बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में 18,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने वन मंत्री भूपेंद्र यादव का लेख साझा किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुर्गन ने आकाशवाणी परिसर में पौधा लगाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में किया एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ। और इंदौर में 9 जून से होगा अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन, तैयारियां अंतिम चरण में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर सूरत पहुंचे श्री मोदी ने कहा कि गुजरात ने नवीकरणीय ऊर्जा में कई साल पहले ही बड़े कदम उठा लिए थे और देश का पहला सौर ऊर्जा पार्क भी यहीं के पाटन जिले में लगाया गया था।
2: दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारण का गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था।
1: सूरत के बाद श्री मोदी दमन भी जाएंगे जहां करीब 2,970 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य और विमानन क्षेत्र की परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। इसके अलावा वे लक्षद्वीप के लिए कई अहम समुद्री परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया। इस लेख में श्री यादव ने पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जनभागीदारी की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुर्गन ने नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया। इस मौके पर उन्होंने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में विश्व पर्यावरण दिवस के राज्यस्तरीय समारोह में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 8 श्रेणियों में 11 राज्यस्तरीय पर्यावरण पुरस्कार भी प्रदान किए गए। ये अभियान 30 सितंबर तक चलेगा और रोपे गए पौधों की जियो टैगिंग कर उनकी निगरानी की जाएगी। डॉक्टर यादव ने भोपाल स्थित अपेक्स बैंक परिसर में हरित सहकार अभियान की भी शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कोलारस की चीनी फैक्ट्री को दोबारा चालू करने और किसानों को एमएसपी से अधिक दाम दिलाने का ऐलान भी किया।
3: हॉर्टिकल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्री और बाकी लोग भी सहकारिता के माध्यम से किसानों की समृद्धि का मार्ग खोज रहे हैं। ऐसे में जब हमारी सरकार आगे बढ़ रही तो कोलारस में शकर की फैक्ट्री क्यों नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगेगी और चलेगी भी सही, एक नहीं दो दो लगाएंगे। आप गन्ना भी लगाओ और अब तो पार्वती काली सिंह चंबल के माध्यम से उधर का क्षेत्र और हरा भरा होने वाला है। लगातार हमारी सरकार किसान समृद्धि के लिए काम कर रही है।
1: वहीं विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बैतूल में केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके की मौजूदगी में माचना नदी के घाट पर पौधरोपण और जल संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो झाबुआ में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में वन विभाग परिसर में वृहद पौधरोपण किया गया। वहीं बुरहानपुर के शाहपुर में नगर परिषद ने 2,000 से अधिक पौधे लगाए, जबकि रायसेन में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। नीमच में विधायक दिलीप सिंह परिहार ने ग्रामीणों से खेतों की मेड़ों पर पौधे लगाने की अपील की। गुना में एनसीसी ने जागरूकता रैली निकाली और सिंहवासा तालाब परिसर में जिला प्रशासन ने पौधरोपण किया। जबलपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान बताए गए। वहीं देवास, अशोकनगर, इंदौर, शिवपुरी और धार में भी जिला प्रशासन की अगुवाई में पौधरोपण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज

0: भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने पहले समारोह में 66 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है। इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कार स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है और अगले महीने की 31 तारीख तक आवेदन किए जा सकते हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अगरतला के ऐतिहासिक पुष्पबंता पैलेस को हेरिटेज होटल में बदलने की परियोजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह और पूर्व राजघराने के सदस्य प्रद्योत विक्रम माणिक्य भी मौजूद रहे। इस परियोजना से त्रिपुरा और पूरे पूर्वोत्तर में पर्यटन को नई गति मिलेगी। बुजुर्गों के अधिकारों और सम्मान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 जून को प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ जन दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए सामाजिक न्याय विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। वृद्धाश्रमों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर रैली, नुक्कड़ नाटक, स्वास्थ्य शिविर और सम्मान समारोह जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। युवाओं और बुजुर्गों के बीच संवाद बढ़ाने के लिए अंतरपीढ़ी संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। डिंडौरी के पाटनगढ़ गांव के गोंडी चित्रकारों की कला अब अमेजन ई कारीगर प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया भर तक पहुंचेगी। इसके लिए आजीविका ग्राम संगठन और डॉट्स एंड डैशेस संस्था के बीच एमओयू साइन किया गया है। गांव के 157 परिवार सीधे इस कला से जुड़े हैं, जिसमें 85 महिला और 72 पुरुष कलाकार शामिल हैं। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि इस कला को जीआई टैग दिलाने के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। भोपाल में बाल कल्याण समिति के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए 13 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों के 134 प्रतिभागी 4 बैचों में हिस्सा लेंगे। प्रशिक्षण में किशोर न्याय अधिनियम, मिशन वात्सल योजना और संकटग्रस्त बच्चों की पहचान जैसे विषयों पर व्यावहारिक जानकारी दी जा रही है। रायसेन जिले के सेमरी गांव की बेटी अंजना यादव ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। आज उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से समत्व भवन में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस अद्भुत उपलब्धि के लिए अंजना को बधाई दी और उनके हौसले की तारीफ की। इंदौर में 9 जून से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने कल इंदौर पहुंचकर आयोजन स्थलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। इस सम्मेलन में इंदौर को वैश्विक स्तर पर अपनी कृषि और नवाचार उपलब्धियां प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। प्रदेश में मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित की गई है। इस दौरान प्रदेश की सभी नदियों और उनसे जुड़े जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि ऐसे छोटे तालाब जिनका किसी नदी से संबंध नहीं है, उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में मलेरिया निरोधक माह के अंतर्गत जिला चिकित्सालय परिसर में जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी द्वारा 2 दिवसीय पंडित कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन 6 और 7 जून को देवास में किया जाएगा। अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवी ने आज जिले में खाद वितरण व्यवस्था, ई टोकन प्रणाली और जैविक खेती को बढ़ावा देने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। आगरमालवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने वृद्धाश्रम में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और झाबुआ में 7 जून को समान नागरिक संहिता पर उच्च स्तरीय समिति की जन परामर्श बैठक का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में 18,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने वन मंत्री भूपेंद्र यादव का लेख साझा किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरगन ने आकाशवाणी परिसर में लगाया पौधा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल में किया एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ और इंदौर में 9 जून से होगा अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन, तैयारियां अंतिम चरण में। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आप सुनी रहे आज निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
2: आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। किसान श्रोता सुने अपना कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

कार्यक्रम सुनने वाला सभी भाई बहनों को स्वागत छे। आज कार्यक्रम में आपका साथ छे आपकी बहन मनीषा चौबे। तो स्वीकार करो हरी राम राम। भाई बहन हो, आज छे विश्व पर्यावरण दिवस। एक ही तो आप सबको बधाई हो, क्योंकि पर्यावरण काई छे? पर्यावरण कई तरह का पेड़ पौधा, अपना आसपास का जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, नदी, पहाड़, झील, झरना, ई सब पर्यावरण छे। भवन हो, हजारों लाखों वर्ष में भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र में विकसित कई प्रकार का पेड़ न वनस्पति का समूह क जेका में असंख्य सूक्ष्म सी लैकन विशाल पशु पक्षी न जंतु निवास करज, ओक वन कयो जाज। मनुष्य पेड़ को समूह तो लगाई सकज, पण वन नहीं। वन प्रकृति द्वारा हजारों वर्ष में तैयार हो। वन सी हमक लकड़ी, फल, फूल, औषधि, वनोपज, प्राणवायु, ऑक्सीजन न कई उपयोगी वस्तु न प्राप्त हो। वन नसी वन में बहुत सा जंगली पशु भी रह। अगर हम ई वन न क जंगल न क छोटो करी देवांगा तो ई पशु जंगली पशु कहाँ रहेगा? ये आपने सोचो। वन की कमी से वर्षा प्रभावित हुई रही, जेका से भूजल स्तर में कमी आई रही, नरु सूखा की स्थिति उत्पन्न हो। वन का काटना से जंगली जंतु का आवास में भी कमी आई। एका कारण वो गांव का आसपास आई कन खेत न पालतू पशु न को नुकसान पहुंचाना लगी गया। हम अधिक से अधिक पेड़ लगावा, न वृक्षारोपण करा, न अपना पर्यावरण का बचावा। हम ये तो रात दिन कमान कि भाई वो पशु जंगली जानवर हमारे यहाँ आई गयो, खेत से घर न आई गयो, गांव न आई गयो, लेकिन ओको कारण भी हम छे। क्योंकि उनका जंगल हम काटी रहेल छे, वृक्ष कटी रहेल छे, तो फिर वो पशु कहाँ रहेगा? एक हम एक बार सोचा, जैसी जैसी जनसंख्या में वृद्धि हुई रही, न सभ्यता को विकास होतो जा रो, तो मनुष्य की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही, न साथज जीवन शैली में भी परिवर्तन होतो गयो। गांव से कस्बा न शहर बनता जा रहा, बड़ी बड़ी इमारत न मकान न बनावना कले लकड़ी कागज, न बड़ा बड़ा सोफा सेट न कुर्सी न फर्नीचर बनावना का लेन भी वन न काट्यो जा रो, जेका सी हमारा पर्यावरण की व्यवस्था चरम रही गई। ईंधन का लेन वृक्ष काटी कन लकड़ी को प्रयोग करने लग्या, कल कारखाना बनावण में भी न भवन क न वन न काट्यो गए। सिंचाई करना बिजली बनाना का लेन भी बड़ा बड़ा बांध बनाया गया, जेका में लाखों एकड़ वन नष्ट हुई गया।

वंशी होना वाला भोज्य पदार्थ फल औषधि जड़ी बूटी ये सब कम होने लगी गया। आप जानो कि वृक्ष की जड़ भूमि को बांधी कर न रखा जेका से भूमि को कटाव नहीं होता है। एकासी भाई बहन हो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगावा न हमारा पर्यावरण को हरो भरो रखा ने एका लैंड सबको जागरूक भी करा क्योंकि पेड़ पौधा वृक्षारोपण जितो होएगा बारिश उतरी ज्यादा होएगा। बारिश कम क्यों हो रही है क्योंकि पेड़ पौधा जमीन में पानी रह नहीं रहे हैं बाष्पीकरण से उड़ी जाए। न बढ़ता शहरीकरण का कारण न अनियंत्रित वन की कटाई होने से पर्यावरण असंतुलित हुई गयो। कल कारखाना न वाहन से निकलने वाला धुआं सी वायु प्रदूषण में भी वृद्धि हुई ने कासी कैंसर न स्वास्थ्य संबंधी रोग में बढ़ोतरी हुई। शहरीकरण न वन का अभाव का कारण कार्बन डाइऑक्साइड न विषैली गैस न की मात्रा में बढ़ोतरी होने से पर्यावरण को तापक्रम बढ़ी गयो। एकासी कई पेड़ पौधा न जंतु विलुप्त होने की कगार पर छे। मानसून भी प्रभावित हुई रोज कहीं अल्पवृष्टि तो कहीं अतिवृष्टि। एकासी गांव शहर न भूमि को बड़ो भाग जलमग्न हो जाए न राष्ट्र कभी क्षति हो। शहर की गंदगी नदी नाला तालाब में मिलना सी वो भी दूषित हुई रहा न बीमारी न फैली रही। तो भाई बहन हो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करा हम ये बात जाना कि हमारा लेन हमारा पर्यावरण का लेन वृक्ष बहुत जरूरी छे। तो हम अपना पर्यावरण का बने का न रखा ओक खराब नहीं होना देवा न हर एक व्यक्ति यो कोशिश कर कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा हर 5 जून का नहीं 5 जून का साथ में पूरा साल भर कहीं भी जावा कहीं यात्रा करा कहीं घूमा जंगल वन न जावा तो जो फल हम खावा ओकी गुटली न ऐसी जगह पर फेंका कि वो वृक्ष बनी का न तैयार हो जाए। तो आज से आपका योज करनो छे ने योज जागरूकता बढ़ानो कि हम क हमारा पर्यावरण की रक्षा करनो। अब चला एक निमाड़ी लोकगीत सुनी लेवा जेक गायोज मेवाराम नायक।

0: कार्यक्रम संबंधित सामान्य ज्ञान को प्रश्न। तो आज को हमारो प्रश्न छे कि हरी खाद का लें कौन सी फसल प्रयोग में ली जाए। इन प्रश्न को उत्तर हम कार्यक्रम का अंत में जरूर देवांगा। तब तक आप कार्यक्रम सुनो न आनंद लियो। भाई बहन होन, रसोई सी खेत तक मिट्टी की सेहत बचाना का देसी फार्मूला अपनावा, यानी रासायनिक खाद को उपयोग, यूरिया को अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी की बिगड़ती सेहत का लय करना। हमारा शासन एक योजना, एक अभियान चले रोज अभियान को नाव छे खेत बचाओ अभियान। कृषि वैज्ञानिक न को मानो छे कि समाधान खेत का साथ घर मत छे। रसोई से निकलने वाला जैविक कचरा, गोबर नारु फसल अवशेष का सही उपयोग करी कन खाली रासायनिक खाद पर निर्भरता कम की जा सकत, बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी वापस लाई जा सकत। किसान भाई ने कहा सबसे पहले उर्वरक न को संतुलित उपयोग की आदत विकसित करना होगा। फसल का लेन नाइट्रोजन, फास्फोरस नारु पोटास का अनुपात एक आदर्श अनुपात 4:2:1 मान्यो गए तो वो हम माना। यदि किसान भाई इन अनुपात में उर्वरक को उपयोग कर तो मिट्टी पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा, नारु उत्पादन भी संतुलित रहेगा। वर्तमान में मालवा निमाड़ सहित कई क्षेत्र में किसान भाई द्वारा अधिकांश क्षेत्र में यूरिया को उपयोग जरूरत से कहीं अधिक हो रोज एकासी मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी भी बढ़ी रही। विशेषज्ञ को कहना छे कि जैव उर्वरक को उपयोग अभी भी बहुत कम छे, जबकि ई मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीवन की संख्या बढ़ावज नारो लंबा समय तक भूमि की उत्पादकता बनाए रखज। फेबिनहोन किसान का रासायनिक खाद का साथ जैव उर्वरक को उपयोग बढ़ावनो चाहिए, न गोबर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करे। अगर जैव किसान भाई ने का पास पशुधन छे वो गोबर के संयंत्र स्थापित कर न दोहरो लाभ ले सकज। एक अरु घरेलू ईंधन मिलेगा न दूसरी तरफ संयंत्र से निकलने वाली स्लरी उच्च गुणवत्ता की जैविक खाद का रूप में खेत में उपयोग की जा सकेगा। एकासे रासायनिक उर्वरक न की आवश्यकता कम होगा, नारु मिट्टी की संरचना भी बेहतर होगा। भाई बहनों जैविक खाद, गोबर, गैस नारु नाडेप विधि से सुधरी सकज मिट्टी की सेहत, ये कृषि वैज्ञानिक ने न आसान उपाय बताया। न रसोई से निकलने वाला जैविक कचरो, गोबर नारु फसल अवशेष का सही उपयोग करी कर न रासायनिक खाद पर निर्भरता हम कम करी सकान। न नाडेप विधि से घर को कचरो से हम खाद बनाई सकान। कसो पत्ती, खरपतवार, फसल अवशेष, सब्जी नारु फल का छिलका, ये सब जैविक कचरा सी नाडेप विधि का माध्यम सी आसानी से खाद तैयार की जा सकन। इन विधि में ईट न की टंकी या नाद में जैविक सामग्री भरी करना, ओका में थोड़ी मात्रा में गोबर नानु पानी मिलाया जाए न कुछ महीना में ये उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद में बदली जाए। न शासन भी एक तरह की खाद इकाई पर अनुदान उपलब्ध करा रही छे। तो भाई बहन होन हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करा रासायनिक खाद के उपयोग का बजाय जैविक खाद को उपयोग ज्यादा से ज्यादा करा। ये तो थी आपसे हमारी बातचीत। न अब चलान कार्यक्रम में आगे बढ़ाएं, न जानी लेवान आज की बात पर्यावरण संरक्षण पर जानकारी दे रही प्रियंका अत्रे।
1: आप सभी को नमस्कार। सुमन वाटिका सभी लगाई विविध भांति करी जतन बनाई, लता ललित बहु जात सुहाई फूल ही सदा पसंद की नाई। अर्थात अयोध्या नगरी में सभी ने सुमन वाटिकाएं, लताएं आदि लगाई। इनमें सभी शब्द को बड़ा महत्व दिया गया है, अर्थात रोपण सभी को करना चाहिए, चाहे उसका आकार प्रकार जैसा भी हो। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है, यह हमें शुद्ध हवा, पानी और भोजन देता है। पेड़ पौधे और जंगल पृथ्वी के फेफड़े हैं जो पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। प्रकृति के संरक्षण से न केवल हमारा स्वास्थ्य अच्छा

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: अब कार्यक्रम पूछे लेवा आपसी

रहता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और सुंदर दुनिया भी सुनिश्चित होती है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, हवा, पानी, मिट्टी, इन सभी से मिलकर ही तो हमारे पर्यावरण का निर्माण होता है। पर्यावरण के प्रति सकारात्मक सोच और अच्छी बातें हमें प्रकृति के करीब लाती है। थॉमस फुलर के अनुसार जो वृक्ष रोपता है वह अपने अलावा दूसरों से भी प्रेम करता है। पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए हम छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं, जैसे अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करें, जिससे वातावरण में शुद्धता आएगी और उनको बढ़ता देखकर मन में खुशी व आनंद का अनुभव प्राप्त होता है। जल संरक्षण के माध्यम से पानी को व्यर्थ ना बहाएं। घरों में जब भोजन तैयार किया जाता है तो उस भोजन की तैयारी में जब दाल चावल सब्जी फलों को धोया जाता है तो जो जल प्राप्त होता है उसे इकट्ठा करके पेड़ पौधों में हम डाल सकते हैं। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार जल पीने के लिए लें, अनावश्यक जल व्यर्थ न करें। अनावश्यक खाली कमरों में पंखे व लाइट चालू न रखें, क्योंकि बिजली जल से ही तो तैयार होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने पृथ्वी का आधार ही जंगल और जल को माना है। हमारी संस्कृति में हमारे पर्व व त्यौहार कहीं ना कहीं हमें पर्यावरण से जोड़ते हैं व प्यार करना सिखाते हैं, जैसे तुलसी विवाह, वट सावित्री पूर्णिमा, आंवला नवमी, गंगा दशहरा, नर्मदा जयंती आदि। तुलसी विवाह में भगवान शालिग्राम जी के साथ तुलसी माता का विवाह होता है। यह तो आध्यात्मिक महत्व है, इसके अलावा औषधीय गुण भी है। सर्दी एवं बुखार में इनकी पत्तियों का काढ़ा प्रयोग में लेते हैं। वट सावित्री की पूर्णिमा जो कि अभी आने वाली है, इसमें वट वृक्ष की पूजा की जाती है व परिक्रमा लगाई जाती है, जिससे पति व संतान की दीर्घ आयु होती है और ये अटूट प्रेम का प्रतीक है। वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़। बरगद का जो वृक्ष रहता है वो ऑक्सीजन अधिक मात्रा में उत्सर्जित करता है। आंवला नवमी, इसमें आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन किया जाता है और वहीं पर भोजन किया जाता है, जिससे परिवार में धन धान्य की वृद्धि होती है। आंवले में विटामिन सी, रक्तवर्धक, कफ नाशक, पाचन क्रिया को अच्छा रखने की क्षमता होती है। गंगा दशहरा, इस दिन गंगा जी में स्नान किया जाता है व अपनी क्षमता के अनुसार दान दिया जाता है, जिससे पुण्य अर्जित हो। नर्मदा जयंती के दिन नर्मदा जी का पूजन किया जाता है व दीपदान किया जाता है। हर पूर्णिमा व अमावस्या पर इन पवित्र नदियों में स्नान व दान पुण्य किया जाता है, परंतु उस समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि इन पवित्र नदियों में स्नान के पश्चात वस्त्र न छोड़ें, ना ही घाटों पर वस्त्रों को छोड़ें। उन वस्त्रों को किसी को दान देकर उसे खुश किया जा सकता है। साबुन का प्रयोग न करें, क्योंकि जो साबुन का पानी रहता है उससे उन पवित्र नदियों में अशुद्धता फैलती है और जो जीव रहते हैं उसके अंदर जीव जंतु वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और इसके अलावा नदियों में सिक्के भी ना डालें, क्योंकि जो सिक्के हम डालते हैं उससे उनकी पवित्रता जो रहती है पर्यावरण की वो समाप्त होने लगती है। पुरातन समय में चांदी व तांबे के सिक्कों को डाला जाता था, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक तरीका रहता है जल को शुद्ध करने का, जिससे कि उन पवित्र नदियों का मान सम्मान भी रहे और पवित्रता उनकी बनी रहे शुद्धिकरण की। और इस प्रकार हम उन पवित्र नदियों का जल का सम्मान करते हैं। प्रकृति और मानव का अटूट संबंध सृष्टि के निर्माण से ही चला आ रहा है। इस स्थिति में अगर हम प्रकृति के साथ उचित तालमेल बनाकर चलते हैं तो पर्याप्त शुद्ध वायु जल प्राप्त कर सकते हैं और अकारण वर्षा या सूखे से बचकर पर्यावरण सुंदर बना सकते हैं। हरे भरे खेत खलियान जंगल जब हम देखते हैं तो हमारे मन को बड़ा आनंद प्राप्त होता है और यही आनंद हम अपने आने वाली पीढ़ियों को भी दे

0: सकते हैं। पर्यावरण से हमें और भी कई लाभ हैं। हमें कई प्रकार की बीमारियां जो रहती हैं, जैसे त्वचा संबंधी रोग, श्वास संबंधी रोग, अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग आदि से भी हम बच सकते हैं। इन स्थितियों से दूर रहने के लिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता लाना अति आवश्यक हो गया है। इसी उद्देश्य से प्रत्येक 5 जून हर वर्ष को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ था, तब भगवान को बड़ा ही आनंद का अनुभव हुआ था, क्योंकि भगवान को प्रकृति के बीच में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था और भगवान का यही प्रेम व प्रकृति से संबंध प्रदर्शित होता है। वनवास काल में सीता जी एवं लक्ष्मण जी ने भी वृक्षारोपण किया। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए, धरती माता की करो रक्षा, यही है सच्ची शिक्षा। प्रकृति ने किया देखो धरती का श्रृंगार, हमको दिया अमूल्य प्रकृति का उपहार। कहीं हरियाले पेड़ कहीं विशाल पहाड़, कहीं रात के आंचल पे है तारे हजार। नदियों की है कलकल कहीं समंदर गहराता, कहीं रेगिस्तान पे तपता सूरज आ जाता। सावन की बूंदों से है मदमस्त नज़ारा, तपती धरती पर बाजे वर्षा की झनकार। आओ शपथ लें प्रकृति को ना हानि पहुँचाएंगे, ना नदियों को मैला करेंगे, ना ही पेड़ कटवाएंगे। जल ही जीवन है, हम जल को भी बचाएंगे, क्योंकि ये सब है अमूल्य प्रकृति का उपहार। घर में मनुष्य रहा तो प्रकृति हुई आज़ाद, उस समय में ही आया प्रकृति पर निखार। सारी प्रकृति झूम झूम के करती हमको प्यार, हम भी अपना फर्ज निभाएं, करें प्रकृति से प्यार, करें प्रकृति से प्यार। प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को बेहतर और गहरा बनाने के लिए हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाना मनुष्य का दायित्व है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में पृथ्वी को माता माना गया है, जो हमें जीवन देती है। प्रकृति का सम्मान करने से न केवल पर्यावरण सुरक्षित रहता है, बल्कि हमारा जीवन भी अधिक सुखी और स्थिर बनता है। प्रकृति के सानिध्य में रहने से मानसिक तनाव, डिप्रेशन और थकान कम होता है। हरा भरा वातावरण, पेड़ों की छांव और नदियों की कलकल ध्वनि हमारी रचनात्मक सोच को बढ़ाती है और एकाग्रता में सुधार करती है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम प्राकृतिक संसाधनों जैसे जंगल और जल का बुद्धिमानी से उपयोग करें। सतत विकास के सिद्धांतों को अपनाकर हम प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से बच सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में पृथ्वी का तापमान उच्च होता है, बढ़ता जाता है और जो ग्लेशियर यानी बर्फ के पहाड़ रहते हैं वो पिघलते चले जाते हैं। इसके लिए व्यक्तिगत स्तर पर पेड़ लगाना और पानी का बचाव बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधों की कमी के चलते अनावृष्टि, सूखा और भूमि कटाव की समस्या से हम बच सकते हैं। मत्स्य पुराण में प्रकृति की महत्वता को बताते हुए कहा गया है, 100 पुत्र एक वृक्ष समान। सचमुच प्रकृति से प्रेम हमें उन्नति की ओर ले जाता है। नमस्कार।
1: फिर बहनों, अभी हम सुन रहे था ये वार्ता पर्यावरण संरक्षण का बारे में जानकारी दे रहे थे प्रियंका अत्रे। अब आपको आज का मौसम न मंडी भाव की जानकारी दे देवन। तो आज सूर्योदय हुए प्रातः 5:39 पर, न सूर्यास्त हुए शाम 7:05 पर। आज का दिन को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहो, न रात को न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना छे। फिर बहनों, अब आपको खंडवा उपज मंडी से प्राप्त उपज का भाव की जानकारी दे देवन। सोयाबीन

को न्यूनतम भाव रहो 3,000 रुपया से लेकर अधिकतम 6,770 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूं को न्यूनतम भाव रहो 2,068 रुपया प्रति क्विंटल न अधिकतम 2,416 रुपया प्रति क्विंटल। चना को न्यूनतम भाव रहो 5,050 रुपया प्रति क्विंटल न अधिकतम भाव रहो 5,800 रुपया प्रति क्विंटल। मक्का को न्यूनतम भाव रहो 1,811 रुपया प्रति क्विंटल न अधिकतम 1,970 रुपया प्रति क्विंटल। तुअर को न्यूनतम भाव रहो 5,700 रुपया प्रति क्विंटल न अधिकतम 7,400 रुपया प्रति क्विंटल। मूंग को न्यूनतम भाव रहो 5,650 रुपया प्रति क्विंटल न अधिकतम 7,350 रुपया प्रति क्विंटल। डालर चना को भाव रहो 5,525 रुपया प्रति क्विंटल न अधिकतम 6,800 रुपया प्रति क्विंटल। न सरसों को न्यूनतम भाव रहो 6,601 रुपया प्रति क्विंटल न अधिकतम 7,700 रुपया प्रति क्विंटल। ई तो थी खंडवा कृषि उपज मंडी से प्राप्त उपजन का भाव की जानकारी। न अब चलान एक करोड़ निवाड़ी लोकगीत सुनी लेवाई जेक गायोज हेमलता उपाध्याय नारू साथी नना।

फेवरेट हॉट अभी हम सुनी लेता सुनी रहे था हेमलता उपाध्याय और साथी ना को गायो यो निमाड़ी लोकगीत फेवरेट हॉट। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। एकालैंड एक पेड़ लगाओ अपना जन्मदिन पर, अपना माता पिता की याद में, अपना घर परिवार का आगे बढ़ाने का लेन आप एक पेड़ जरूर लगाओ, क्योंकि हर पेड़ एम एक औषधीय गुण छे। जैसे कि तुलसी सर्दी न जोर में की पत्ती न को काढ़ो उपयोगी होज, आवड़ो जो पाचक कफ नाशक रक्तवर्धक विटामिन सी को प्रचुर स्रोत जो बाल न का लेन लाभप्रद रह। पीपल जो मुंह का अंदर होने वाली छाल में लाभकारी छे, रक्त विकार नष्ट करना में सहायक छे। बरगद को पेड़ इना वृक्ष का दूध घाव साफ करना न फोड़ा पंसी पर लगावना का लेन उपयोग में लायो जाए, न कान बहना न दांत दुखना में भी एको दूध लाभकारी रह के को बरगद को। साथ ज बबूल एक ही छाल चर्म रोग में उपयोगी होज, न एक ही फली खासी दुर्बलता न चर्म रोग का लेन औषधीय निर्माण में सहायक छे, न नीम जो चर्म रोग नाशक कृमि नाशक न वात रोग में उपयोगी छे। तो भाई बहन जरूर हम एक पेड़ लगावा। कार्यक्रम को समय हुई रोज कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे प्रश्न पूछो थो कि हरी खाद का लेन कौन सी फसल को प्रयोग करो जाए, तो एक उत्तर छे हरी खाद का लेन सनई ठेचा न लोबिया बरसीम न मूंग इन्हीं फसल को प्रयोग करो जाए। अब आज्ञा देव आपकी बहन मनीषा चौबे का राम राम।

0: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के संबंध में विभिन्न विषयों पर एनएसडी आकाशवाणी द्वारा एक विशेष श्रृंखला का प्रसारण किया जाएगा, महिला सशक्तिकरण। आप सुनिए, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर, मोहम्मद सईद, फरीब साबरी और उनके हमनवा, फिल्म का नाम है हिना, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन। ये है इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू

0: उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: हमारे विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि BSF जहां जहां है, SSB जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण कर।

0: सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना, और स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: The negotiating team which came from
4: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमरीकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: नेपाल के विदेश मंत्री

0: शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

इस समय रात्रि के ठीक 9 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए।

कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं नौशाद साहब का संगीत, शकील बदायूनी के बोल, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें। फिल्म का नाम है कोहिनूर।

0: कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म काला बाजार से लिया है। गायक स्वर मोहम्मद रफी का है, गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत SD बर्मन का है।
1: ओ हो खोया खोया चाह

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है चौदहवीं का चांद और स्वर मोहम्मद रफी का, शब्दकार शकील बदायूनी हैं और संगीतकार रवि हैं।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर और मुकेश को सुनिए, फिल्म का नाम है बरखा। राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओ, आज के फनकार में जहां हम बात करते हैं उन सितारों की जिन्होंने हिंदी सिनेमा को अपनी पहचान दी, एक नई चमक दी, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही अभिनेत्री की जिन्होंने फैशन और एक्टिंग दोनों को ही नया आयाम दिया।

सोनम कपूर, जिनका पूरा नाम है सोनम कपूर आहूजा, 9 जून 1985 को मुंबई में जन्मी बॉलीवुड के झकास हीरो अनिल कपूर की बेटी

0: My name is Lakhan, my name is Lakhan, sajnon ka sajan, mera naam hai Lakhan.
1: तो चलिए सोनम कपूर की इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत करते हैं। उनकी डेब्यू फिल्म थी सांवरिया, जो आई साल 2007 में। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में उनके साथ थे रणवीर कपूर। फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल न किया हो, लेकिन सोनम की मासूमियत ने सबके दिलों में अपना घर कर लिया।

इसके बाद सोनम ने दिल्ली सिक्स में काम किया, जहां मसक कली गाने ने तो जैसे हर गली मोहल्ले में धूम मचा दी थी। और इसी के साथ सोनम ने दिखा दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर की दुनिया में ही नहीं

अब बात करते हैं साल 2010 की, जब आई उनकी एक बेहद स्टाइलिश फिल्म आयशा। इस फिल्म को सोनम ने खुद प्रोड्यूस किया और इस फिल्म ने उन्हें फैशन आइकन बना दिया।

इसके बाद उन्होंने रोमांटिक और अभिनय शैली के तमाम अलग अलग फन को बारीकी से पर्दे पर उतारा। ये फिल्में थीं आई हेट लव स्टोरीज, थैंक यू और मौसम।

वैसे अगर हम देखें तो सोनम कपूर की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म है रांझना। रांझना की जोया ने हमें रुलाया, हंसाया और दिखाया कि सोनम कपूर एक सीरियस कलाकार भी हैं। धनुष के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। प्यार मोहब्बत और रोमांटिक कल्ट फिल्म में इस फिल्म का अपना एक अलग स्थान है।

इसके बाद आई खूबसूरत, एक हल्की फुल्की दिल को छू जाने वाली फिल्म। इस फिल्म में सोनम का क्यूट और चुलबुला अंदाज सभी को भा गया।

आई राशि प्रोडक्शंस की फिल्म प्रेम रतन धन पायो। यहाँ सलमान खान के साथ सोनम ने स्क्रीन शेयर की। भव्यता, संगीत और पारिवारिक भावनाओं से भरपूर इस फिल्म में सोनम की सादगी ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया।

भाग मिल्खा भाग में सोनम कपूर ने बीरो का किरदार निभाया, मिल्खा सिंह की पहली प्रेमिका, जो उसकी युवा उम्र की मासूमियत और भावनात्मक संघर्षों का अहम हिस्सा बनती हैं। ये भूमिका भले ही स्क्रीन पर सीमित समय के लिए थी, लेकिन इसके महत्व को बिल्कुल भी कम आका नहीं जा सकता। सोनम ने इस फिल्म में अभिनय के लिए सिर्फ 11 रुपए की प्रतीकात्मक राशि ली, न कोई फीस, न कोई स्टारडम की मांग। उनका ये फैसला इस बात का प्रमाण है कि सोनम केवल एक कमर्शियल एक्टर नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और जुनूनी कलाकार भी हैं, जो सिनेमा को उसके शुद्ध रूप में समझती और निभाती हैं। बीरो के किरदार में सोनम ने पंजाब की परंपराओं, संस्कृति और भावनाओं को बेहद सादगी और सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा। उनका अभिनय न केवल कहानी में गहराई जोड़ता है, बल्कि दर्शकों को ये महसूस भी कराता है कि अभिनय सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि समर्पण और संवेदना का भी नाम है। इस भूमिका के जरिए सोनम कपूर ने ये साबित किया कि जब कहानी दिल को छू जाए, तो कलाकार अपनी सीमाओं से परे जाकर सिर्फ कला के लिए काम करता है, बिना किसी भव्यता की अपेक्षा के।

और फिर आई फिल्म संजू, जहां रणबीर कपूर के साथ उन्होंने निभाया रूबी का खूबसूरत किरदार। ये रोल भी छोटा था, लेकिन फिल्म की इमोशनल गहराई को बढ़ाता है।

इसके बाद फिल्म मिर्जा आई। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत की वीर बेटी मिर्जा भनोट को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। सोनम ने इस किरदार को जिस संवेदना, साहस और सादगी के साथ निभाया, उसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। उन्होंने मिर्जा की निडरता, मानवीय संवेदनाएं और बलिदान को इस तरह पर्दे पर उतारा कि वो किरदार अभिनय से कहीं आगे जाकर एक जीवंत अनुभव बन गया। इस फिल्म में सोनम ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं है बल्कि एक गंभीर और समर्पित कलाकार भी हैं, जो सच्ची कहानियों को आत्मा से जी सकती हैं। मिर्जा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, स्पेशल मेंशन सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और प्रशंसा मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा में उनका स्थान सिर्फ एक स्टार के रूप में नहीं बल्कि एक सशक्त कलाकार के रूप में भी है।

अनुष्का जैसी संवेदनशील फिल्म के बाद सोनम कपूर ने वीरे दी वेडिंग जैसी मॉडर्न बोल्ड और फ्रेश कहानी के जरिए अपनी अभिनय रेंज का एक अलग ही रूप दर्शाया। इस फिल्म में उन्होंने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया जो आज की पीढ़ी की सोच और संघर्षों को ईमानदारी से सामने लाती है।

बाद 2018 में वो दिल्ली के उद्यमी आनंद आहूजा की शरीके हयात बनी, जो उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनकी शादी भी उतनी ही सरल, खूबसूरत और रियल थी जितना उनका व्यक्तित्व। आज सोनम कपूर एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक सोशल आइकन भी हैं। वो अक्सर महिलाओं के हक, फैशन और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखती हैं। वो अब एक बेटी की माँ भी बनी हैं, जिसका नाम है वायु, और इस नए फेज में भी वो उतनी ही ग्रेसफुल लगती हैं, उतनी ही खूबसूरत लगती हैं।

कपूर एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेती हैं। महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े टैबू हों, LGBTQ+ समुदाय की स्वीकार्यता या मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय, सोनम हर बार खुलकर अपनी बात रखती हैं। उन्होंने पैडमैन और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे फिल्मों में ऐसे मुद्दों को उठाया जिन पर बॉलीवुड अक्सर चुप्पी साध लेता है।

इसके अलावा सोनम जानवरों के अधिकारों की भी मुखर समर्थक हैं। वे पेटा की सदस्य रहीं और कई बार उन्होंने फर और चमड़े के उपयोग के खिलाफ अभियान भी चलाया। सोनम को पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर जैसे खिताब से भी नवाजा जा चुका है। उनके लिए सच्ची सुंदरता सिर्फ पहनावे में नहीं बल्कि संवेदनशीलता और करुणा में भी है। सोनम कपूर को उनके अभिनय और सामाजिक योगदान के लिए कई बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी

आवाजा गया है। फिल्म निर्जा में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मेंशन मिला। साथ ही फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड, आईफा और जी सिने अवार्ड्स में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब उन्होंने हासिल किया। उन्हें रांझणा, सावरिया और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों के लिए भी फिल्म फेयर में नामांकन मिला। फैशन और स्टाइल के क्षेत्र की जहां तक बात है, उसमें भी वे लगातार मोस्ट स्टाइलिश वुमेन और फैशन आइकन ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स जीतती रही हैं।

दोस्तों, ये थी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर के फिल्मी सफर की दास्तान। एक स्टाइलिश, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और संवेदनशील एक्ट्रेस। हम उम्मीद करते हैं कि सोनम आगे भी हमें ऐसे ही दिलचस्प किरदारों में दिखती रहेंगी।

0: था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर पर। स्वर संगीता श्रीवास्तव का, शोध आलेख और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। अमलतास की झालरों पर जब उतरती है चांदनी, हवा के झोंके कुछ और मुखर हो जाते हैं, ताल झूमता है, कुमुदनी हुलस जाती है, तब अचानक होठों पर कोई अधूरी सी बात चली आती है।

जोड़ता है टूटे हुए तार को, तो कहीं दिल मचलता है बस एक इकरार को। कभी तो मिलता नहीं जरा सा करार, और कहीं छाया है नाजुक एहसासों का खुमार।

राज हैं ऐसे जो सरेआम बताए नहीं जाते, ये नख़मे हैं दिल के जो हर सांस पर गाए नहीं जाते। इन्हें तो बस वही गा सकता है जिसके दिल में बेपनाह मोहब्बत हो और आवाज़ हो ऐसी पवित्र कि लगे स्वाति की कोई बूंद हो।

फासले कदमों के नहीं हो, बीच में कई बरस खड़े हो, रातों में जागी हुई आंखें हो, होठों पर खामोश हुए नगमे हो, तो भी कोई सुन ले तो ये नगमे फिर गा सकते हैं और उन आंखों में उतर सकती है नींद की।

टप टप कर स्मृतियों की बरसात होती है जब कभी, रात के आंगन का कोना कोना भीग जाता है, अंधेरे के सितार पर गूंज उठता है एक उदास राग, और चांद अपने ख्यालों में डूब जाता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में

प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।